0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:53 और 38 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

लीजिए श्रोताओं, आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में 6 बजे आप सुनेंगे समाचार। 6:02 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात। इसमें होंगी नूपुर आपके साथ।

श्रोता सुनेंगे गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर कार्यक्रम 7:02 पर सृजन राजपूत आपके साथ होंगे। 8:02 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर और इसके बाद होगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने 9:02 पर।

वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:02 पर लिपिका दास के साथ। बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन सकते हैं 11:02 पर कंचन कानन ये कार्यक्रम लेकर आएंगे और 12:02 पर होगा कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक का प्ले इट कूल। 1:02 पर आप सुनेंगे स्पेशल प्रोग्राम ऑन पीएम जनधन योजना पर ये कार्यक्रम कंचन आपके लिए कार्यक्रम लेकर आएंगी।

आप सुन सकते हैं 2:02 पर कार्यक्रम आशियाना, रेशमा फारूकी आपके साथ होंगी। शैली लेकर आएंगी रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम 3:00। इसके बाद होगा अल्फा जैन कार्यक्रम 4:02 पर। श्रोता सुनेंगे सिटी लाइट 5:02 पर। मैसेज मसाला मिक्स आप सुन सकते हैं 6:02 पर। हिना मौज ये कार्यक्रम लेकर आएंगी और देवाशी आपके साथ होंगी 7:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक में। म्यूजिक मस्ती होगा 8:02 पर। और इसके बाद आपकी याद आती रही विकास कौशिक ये कार्यक्रम आपके लिए लाएंगे 9:02 पर। आप सुन सकते हैं वेस्टर्न म्यूजिक 10:02 पर। और इसके बाद रंगे महफिल कार्यक्रम होगा 11:02 पर। विकास आपके साथ होंगे। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 MHz पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, नुपुर आपके साथ रहेंगी।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। मृतकों की संख्या 389 हुई। नेपाल में बाढ़ के बाद 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। एनडीआरएफ ने कहा नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परम्परा का अहम हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली कड़कने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हराया और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से जीती श्रृंखला। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहे हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी रेनबो के सफर में। तो कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे ये स्टार्स बस फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, यही दुआ रहती है। सिदुआ के साथ स्वागत कर रही हूँ मैं आप सभी का प्रोग्राम सुप्रभात में। मैं हूं आपके साथ नुपुरकुल श्रेष्ठ, और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना रहेगा 7 बजे तक। लेकिन अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा एक प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बीच में अपनी बातों को विराम देना होगा, रुकना होगा, लेकिन उसके बाद हम और आप करेंगे ढेर सारी बातें जुड़कर इसी सफर में जिसका नाम है सुप्रभात। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ इसी सफर में। अब वक्त है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन का, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
3: दोस्तों, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड।

तो पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता नामक पुस्तक में राजा दाऊद कहता है कि मैं जब जब मुश्किल में पड़ा तब तब मेरे यहोवा परमेश्वर ने मेरे हाथों को थाम कर मुझे चट्टान पर खड़ा किया और मेरे प्राणों की रक्षा की। इसीलिए मैं बिना शर्माए अपने खुदावन की आराधना ऊंचे स्वर से करूंगा।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को जरूर सुनता है और उसका जवाब भी देता है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम सबकी जिंदगी में गुनाहों की वजह से ही परेशानियां आती हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब तक हम अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं करते तब तक हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहते हैं। इसीलिए गुनाहों से तौबा करके प्रभु से अनुग्रह मांगें ताकि दोबारा गुनाहों में न गिर सकें।

दोस्तों, अगर आप हमारे महान सामर्थी प्रभु के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

और आप उसी रंग में खुद को रंग पाएंगे जिस रंग में ये मन आपको रंगना चाहेगा। ये मन ही तो है सब कुछ, है ना। भगवान बुद्ध ने भी क्या सुंदर कहा है ये सत्य कि मन ही सब कुछ है, जिसका अर्थ सिर्फ यही है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन फिर भी ना हम अपनी सोच पर नियंत्रण रख ही नहीं पाते। क्या कुछ नहीं चलता रहता पूरे दिन इस दिमाग में, मन शांत ही नहीं होता। मन शांत होना एक अलग बात है, लेकिन मन कैसा सोच रहा है, किस तरह के विचार खुद के लिए वो मन में ला रहा है, ये भी नहीं आप समझ पाते। कितनी बार कितना कुछ नकारात्मक है जो हम अपने लिए कह जाते हैं और हम समझते ही नहीं। सोच का असर कितना पड़ रहा है, हमारे विचार ही हमारे कर्मों और कार्यों की दिशा तय करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये जो मन है यही तो जीवन को आकार देता है। जैसा आप मन में सोचते हैं और महसूस करते हैं आपका जीवन वैसा ही रूप ले लेता है। चाहे सब कुछ अभी बहुत सुंदर है, सब कुछ आपका किसी के साथ रिश्ता, आपकी दोस्ती अच्छी है, लेकिन उसके बाद कई बार आप ऐसा सोचने लग जाते हैं, ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, ये चीज़ें हुई, नहीं अब मैं ऐसा करूँगी, ऐसा होगा, ये होगा, और वैसा ही होने लग जाता है। वहाँ से और चीज़ें, जिस तरह की दिशा, जिस तरह के भाव आपने मन में डाले, वैसा ही वो आकार लेने लग जाते हैं। तो ये जो शांत मन है ना, वो जीवन को सुखद बनाता है, जबकि ये जो बुरे नकारात्मक विचार हैं उससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। और ये सारी बातें हम सब समझते हैं, लेकिन इस मन को नहीं सुधार पाते। और ये बात कि मन के हारे हार, मन के जीते जी, तो इस मन पर अगर आपने काबू पा लिया, विजय पा ली, तो ये पूरी जो दुनिया है ना, उसे कहते हैं ना कि आपकी मुट्ठी में है, ये वाकई यकीनन सच।

तो इसलिए इतना कुछ जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, शुरुआत यहीं से होगी। तो शुरुआत करें, आपको अच्छा लगेगा, छोटे छोटे कदम उठाइए, आपको वाकई अच्छा लगेगा।

रिमझिम रिमझिम जब बारिश होती है ना, तो पूरी प्रकृति का कायाकल्प हो जाता है। धूल से ढकी जो ये सड़कें हैं, धुलकर एकदम साफ हो जाती हैं। पेड़ों के पत्ते गहरे हरे और चमकदार दिखाई देने लगते हैं, और हवा में गजब का सूंधापन और ताजगी खुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी दुनिया को धोकर नया कर दिया हो, है ना। इसी तरह जो भी मन में विकार है, जो भी मन में बुराइयां हैं, वो सारी धुल जाए इस बारिश के मौसम में, सावन में, है ना। ये सब कुछ हट जाए और आप भरपूर हो जाए, अपने मन को भर लें सकारात्मक सोच से, प्रेरणादायक विचारों से, मन को शांत रखने की कोशिश करें। समझते हैं कि मुश्किल है जब कुछ घटित होता है, उससे बाहर खुद को लाना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम जैसे मन में बात डाल देंगे, जो बीज बो देंगे, तो वैसे ही वो काम करेगा। उसको मुश्किल बात को भी आसान बनाया जा सकता है, है ना। इस मन को जिस दिशा में आप ले जा सकते हैं, उस दिशा में ले जाया जा सकता है। और ये मन का जो मैल है मिट जाए, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं और वहाँ किसी व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं दे रहा, ऐसे में आप क्या करेंगे? आप खुद आगे बढ़कर उनका सम्मान करें। यदि कोई उनसे ये कहने वाला नहीं है कि आइए बैठिए, तो आप कहेंगे कि कृपया आइए बैठिए। और कोई नमस्कार भी कहने वाला नहीं है, स्वागत नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे नमस्कार करें। और पता है इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप दूसरे को सम्मान देते हैं, दूसरे को सम्मान देते देते आपका जो मन है ना, वो निर्मल होने लगता है, वो शुद्ध होने लगता है। और हमेशा ना पाने की इच्छा ना रखें, बल्कि देने की जो भावना है ना, वो अंदर लाएं। और जब आप देना सीख जाते हैं ना, ये जो मन का मैल है ना, वो अपने आप मिटने लग जाता है। तो ये जो बारिश है ना, वो सारे आपके जितना भी मैल है अंदर, उन सबको दूर कर दे, और बस आप खुश रहें। और आज तो त्यौहार है रक्षाबंधन, और अगर अभी भी किसी के लिए कुछ भी मैल है, रिश्तेदारों में किसी से बात हो गई, कज़न से कुछ कह दिया, भाई से कुछ कह दिया, भाभी से कोई बात हो गई, तो ये सारे जो मैल है ना, जो मन में जो बातें हैं, उनको हटा दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। ये छोटी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में किस किस से नज़दीकियाँ अच्छी हैं, दूरियाँ दूर कर दीजिए। जुड़ रही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में, आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना हुआ है 7 बजे तक। तो बिल्कुल इस सफर में आप हैं हमारे साथ, तन्हा नहीं है। लेकिन गाना बड़ा अच्छा है, जरा सुनिए, लौट कर आते हैं, चलते हैं।

और वाकई तन्हा तो इस मन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब ये मन खाली हो जाता है ना, तो इधर उधर भटकने लग जाता है, गलत कामों की ओर भी जा सकता है। इसलिए जब कोई सार्थक काम ना हो तो समय को बेकार ना जाने दे। कहा गया है खाली खाली समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, जो भी आपको करना अच्छा लगता है आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। जब मन में खालीपन होना तो उसे प्रेम सेवा सम्मान से भर देना चाहिए, और दूसरे को सम्मान देने से ना मन में जो जमा मैल है ना वो हटता है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है। ये सच है कि आप कभी किसी को नहीं बदल सकते, ये शुरुआत तो आपसे होती है। आप खुद से एक नया रिश्ता जोड़ सकते हैं। आप ये तो कभी नहीं सोच सकते कि आपको किसी और को बदलना है। आप खुद को बदलें। देखिए देखिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस मन को शांत करने के लिए, मन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आप अपने विचारों का दर्शन करें, किसी भी विचार को रोकना नहीं है, सिर्फ उसे देखना है। आप शांत बैठकर आंखें बंद करें। अब ये जो विचार उथल पुथल बचा रहे हैं तो यकीनन ये आपको शांत तो नहीं बैठने देंगे, लेकिन एक दर्शक की तरह ये जो दिमाग में विचार

0: आ रहे हैं उनको देखें, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं वैसे ही विचारों को आने जाने दें। किसी भी विचार से जुड़े नहीं, ना ही उसे अच्छा या बुरा कहें, बस उसे देखकर जाने दें, जाने दें। हम पकड़ लेते हैं ना उस विचार के साथ साथ, उसी वक्त हम बोलना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हम ये कर सकते थे, हम वो कह सकते थे। नहीं, उन्हें लेट गो करना है और इसी से आप कर पाएंगे। रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूर करें इस मन को शांत करने के लिए। और एक बात और याद रखें कि ना हम ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते, इसको भी हम शांत ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप सोचिए आज आपने शुरुआत की है और एक हफ्ते में सब कुछ हो जाए, नहीं, थोड़ा समय लगता है। इसलिए खुद के साथ धैर्य रखें, खुद के साथ, जी हाँ, प्यार करें, खुद से प्यार करें और प्यार वाला बर्ताव खुद के साथ करें। हार्श ना हो अपने पर, ये बहुत ज़रूरी है। हर वक्त हर थॉट को जाने देने के लिए वक्त लगता है और नए विचार आने में भी वक्त लगता है, तो खुद को वक्त दें, खुद से मोहब्बत करें और खुद से एक बेहद खूबसूरत सा रिश्ता निभाएं और इस मन को उस ऊर्जा से भर दें। बहुत काबिलियत है आप में, आप कैसे भूल जाते हैं ये, मत भूलिए। कितना कुछ है भुलाने के लिए, वो कड़वी कड़वी बातें, वो कड़वी कड़वी यादें, जो नहीं अच्छा लगता, वो सब, वो नहीं बात अच्छी लगी उसको भुला दीजिए ना। खुद को क्यों भुलाना है, खुद के अंदर जो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं उन पर ध्यान दीजिए, उस ओर थोड़ा अपना ध्यान ले जाइए। और बहुत कुछ है आपके पास, है ना, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए और जीवन के सफर में गाते गुनगुनाते आगे यूं ही बढ़ते जाइए। और जुड़ रही है हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में, आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो के सफर में अभी आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और सुप्रभात के साथ साथ इस सफर में और भी कार्यक्रम हैं जो आपके साथ होते हैं, और हर कार्यक्रम में हर बात अलग होती है, और वो बात होती है जो आपके दिल को छू जाती है।

हर वो बात होती है जिस पर आप बात करना चाहते हैं। तो कुछ ही देर में आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर जानकारी से भरपूर ये कार्यक्रम लेकर आएंगे आपके बीच सृजन राजपूत। और उसके बाद उसके दूसरे सेगमेंट में एक बार फिर मेरी आपसे होगी मुलाकात, और उसके बाद समय रहेगा कार्यक्रम दिल की तरह ने गाने नए पुराने का, और इसमें भी आपका साथ देंगी सृजन राजपूत। इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर, इसमें आपके साथ जुड़ेंगी लिपिका दास, और बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी कंचन कानन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद प्लेट कूल में भी आपके साथ होंगी लिपिका दास, और उसके बाद आप सुनेंगे 1 बजकर 2 मिनट से लेकर 2 बजे तक स्पेशल प्रोग्राम ऑन पीएम जनधन योजना, और इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी कंचन कानन। और उसके बाद समय रहेगा आशियाना कार्यक्रम का, और आशियाना में आपके साथ होंगी रेशमा फारूखी, और उसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। इस प्रोग्राम में आज का टॉपिक रहेगा आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एंड डाइट। उसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम अल्फा चैन, इसमें भी आपके साथ होंगी रेशमा फारूखी, और उसके बाद सिटी की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी शैली भाषांजलि, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, और एक विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगी हिना मौज, और उस पर आप अपने मैसेजेस आप क्या सोचते हैं वो लिखकर बिल्कुल हमें भेज सकते हैं। उसके बाद देवर्षी रावत आपके साथ जुड़ेंगे, और फ्राइडे फीस्ता में आप जुड़ेंगे, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और हिना मौज आपके साथ होंगी म्यूजिक मस्ती में, विकास कौशिक होंगे आपके साथ आपकी याद आती रही कार्यक्रम में, और एक और बार फिर आपके साथ वीकेंडर में जुड़ेंगे देवर्षी रावत, और फिर आपके साथ होंगे रंगे महफिल में विकास कौशिक। तो कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी सफर में। जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो का ये जो सफर है बिल्कुल जारी रहेगा, लेकिन सुप्रभात में बस इतना ही, हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। रक्षाबंधन इस पर्व की आपको ढेर ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, और मन को चंगा रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपके अंदर बहुत कुछ है अच्छा करने के लिए, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि सोच ही है जो आपको बनाती है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। यूं तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन ये बात इसी से शुरुआत होती है, तो इसको अच्छा कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप निकल चुके हैं, आप ऑलरेडी एक सफ़र कर रहे हैं, और बहुत सारे काम कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पहुँचना है, यहाँ जाना है, आपकी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं, आपको अपने घर जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने अपनों के साथ। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। लीजिए प्रस्तुत है सुबह 7 बजे के मुख्य समाचार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों को पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। मृतकों की संख्या 389 हुई। नेपाल में बाढ़ के बाद 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। एनडीआरएफ ने कहा नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा

का अहम हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफरत मियोर्जिव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हराया। भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से जीती श्रृंखला। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी फिट एंड फाइन हैं और फेस्टिव मूड में हैं। तो चलिए आगाज करते हैं गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर कार्यक्रम का, मेरे यानी आपकी अपनी दोस्त सृजन के साथ। अगर आज के दिन की बात करें तो तोड़े से भी ना टूटे जो, ऐसा है ये स्नेह बंधन। इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षाबंधन है। आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन साल का 240वां दिन है और इस साल में अब बस शेष 125 दिन बाकी हैं। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है, शुक्रवार का दिन है और इस श्रावणी पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। आज के दिन से जुड़ी सारी अहम बातों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन आज के दिन के रियल सिनेरियो की बात करें तो क्या होता है? भागम भाग। हाँ सच है ना, आप कहीं राखी बांधने जा रही हैं, कोई आपके घर राखी बांधने आया है, आपका भाई जल्दी में है और आपके हस्बैंड को भी किसी को ड्रॉप एंड पिक करना है, तो रियल सिनेरियो भागम भाग। तो चलिए इसी के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: रेनबो दिल से दिल तक 102.6 की फ्रीक्वेंसी, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरे सृजन। आज मैं अति प्रसन्न हूं। जी हां, खुशी का दिन ही है। जब त्योहार होता है तो हम अपने आप में एक एनर्जी महसूस करते हैं, वो सकारात्मकता महसूस करते हैं जो पूरा दिन बरकरार रहती है, आना जाना और सबसे मिलना। और त्योहार ही तो वो मौका है हमें अपने उसे मिलने का, वरना कहाँ समय निकाल पाते हैं हम अपनी ऑफिस की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच में किसी से मिलने का।

तो त्योहारों का आना अपने आप में बहाना बन जाता है अपनों के साथ मिलने का, प्रेम साझा करने का। चलिए आज के दिन पर बात करते हैं और इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। अगर आज के दिन इतिहास में देखें तो 1986 में आज के दिन भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला के तौर पर अपनी जो है अपनी प्रविष्टि देती हैं और ये सीट अपने नाम कर लेती हैं। वे शतरंज में महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीतने वाली, ये मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुई। 4 अगस्त 1961 को मुंबई में जन्मी भाग्यश्री साठे, जी हाँ। और इनके अगर बात करें इनके पार्टनर की, तो वह भी प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रवीण थिपसे हैं। इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। इतिहास के पन्ने खंगालने पर आज के दिन ही 2018 में हमें एक दिन मिलता है, आज का दिन, जहां भारत के मंजीत सिंह ने जकार्ता एशियाई खेलों की पुरुष 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, मंजीत सिंह चहल जो कि एक धावक हैं और 800 मीटर 1500 मीटर की स्पर्धाओं में विशेषज्ञता रखते हैं, इनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें कि 800 मीटर जकार्ता 2018 में जो हुई उसका हमने जिक्र किया, वहीं 1500 मीटर पटियाला में हुई एक दौड़ में भी इन्होंने उपलब्धि हासिल की। पुरुषों की एथलीट्स में पदक रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम शामिल किया है। तो आज के दिन में ये मुख्य बातें जो 28 अगस्त के पन्ने खंगालने पर हमें मिलती हैं।

ये एक बेहद खूबसूरत गाना। मैं चाहूंगी श्रोताओं आप इस कहानी के बोलों पर ध्यान दें, कितनी खूबसूरती से लिखा गया और बेहद सटीक सही शब्दों का प्रयोग करके इस गाने को बुना गया है। एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन पर्व की एक बार फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से। आज का दिन बेहद खास है। हम विद्यालय में जब भी अपने कक्षा में, किसी भी कक्षा में जब आप रहे होंगे, आप रक्षाबंधन पर निबंध लिखते होंगे और वहाँ पहली पंक्ति क्या होती थी कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। जी हाँ, हमेशा ही हर साल जब श्रावणी पूर्णिमा आती है, तो वैसे इसके अपने भी महत्व हैं। इस दिन हम नारली पूर्णिमा भी मनाते हैं, विश्व संस्कृत दिवस के तौर पर भी मनाते हैं, उन पर भी बात करूंगी। लेकिन पवित्र स्नेह बंधन, रक्षाबंधन, जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और कलाई पर राखी, जिसे रक्षा सूत्र या सुरक्षा का बंधन कहा जाता है, वे देती हैं और उनकी लंबी उम्र की, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। और रक्षा बंधन केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं है, ये भाई बहन के बीच प्यार, अपनेपन, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को भी दिखाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार तो कई, अगर हम दशकों पे पहले, सालों पहले या इतिहास के पन्नों को भी खंगाल कर देखें, तो पता चलता है कि कितना धार्मिक बंधन, कितना स्नेह इस त्योहार, इस पर्व से जुड़ा हुआ है। और दिल से जो है अपने भाइयों के लिए बहनें इस तरह की प्रार्थना करती हैं। और इस रिश्ते की खूबसूरती तो देखिए, अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो श्री कृष्ण और द्रौपदी ने, एक बार ये दृश्य आता है जहाँ महाभारत काल में श्री कृष्ण की उंगली से खून बहने लगता है, तब द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनकी उंगली पर बांध देती है और इससे वे उन्हें रक्षा करने का वचन देते हैं। और एक और पौराणिक कथा हम देखें, भविष्यत्तर पुराण और भागवत पुराण के अनुसार तो माता लक्ष्मी ने असुरराज बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें भाई बनाया था। और अगर हम थोड़ा और पहले काल, इतिहास में जाएं, तो देखते हैं रानी कर्णावती, जो मेवाड़ की रानी थी, उन्होंने भी सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से चित्तौड़गढ़ अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे अपनी रक्षा के वचन के तौर पर इसे प्रदर्शित किया, इसे दिखाया। तो इस दिन का अपना महत्व है। हम अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से सभी श्रोताओं को, भाइयों को, बहनों को इस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आपके बीच ये रिश्ता इसी खूबसूरती से बंधा रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी।

0: गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और बेहद प्यारे संदेश हमारे श्रोताओं के आज के दिन की शुभकामनाएं देते हुए अनिल शर्मा वरिष्ठ श्रोता हमारे सरिता विहार से कहते हैं, भाई बहन रक्षा गारंटी सर्टिफिकेट है, रक्षाबंधन का त्यौहार हार्दिक शुभकामनाएं। और अपशा खानम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भेज रही है और हमारे परिवार को शुभकामनाएं भेजी है हमारे एक और मित्र जो बिहार से हैं, हालांकि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। जी ये शिव हैं, शिव शंकर कटिहार से श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन की शुभकामनाएं पंकज भी भेज रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से। तो लीजिए एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं इसी बात पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी और आपका हमारा साथ इस पावन दिन पर। आज श्रावणी पूर्णिमा है और इस दिन हम प्रतिवर्ष हर साल इस संस्कृतम विश्व संस्कृतम दिवस के तौर पर भी मनाते हैं, जिसका उद्देश्य है हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत का पुनरुत्थान, संरक्षण और प्रसार को प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके। यानी हर पूर्णिमा के दिन जब आप श्रावणी पूर्णिमा मना रहे हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, तब ध्यान दीजिए कि आज ही हम संस्कृत भाषा के प्रति अपने सम्मान कृतज्ञता को प्रकट करें, इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का जश्न भी मनाएं। और अगर कार्यक्रमों को देखें तो इस समय पर सप्ताह के साथ जोड़ते हुए स्कूलों कॉलेजों और सांस्कृतिक संस्थान हैं उनमें भी विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, संगोष्ठी और व्याख्यान भी आयोजित किए जाते हैं। एक नज़र डालें हम अगर आज के दिन पर विश्व संस्कृतम दिनम के नाम से भी हम इस वर्ष को मनाते हैं, जैसे मैंने बताया पुनरुत्थान और अनुरक्षण को, इस भाषा को यानी अपनी भाषा संस्कृत के अनुरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। संस्कृत हजारों वर्षों में सबसे पुरानी ज्ञात भाषाओं में से एक है, जिसे हम देववाणी यानी देवताओं की भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस भाषा को दिव्य ऋषियों से परिचित कराया था। जी हाँ, संस्कृत भाषा अपने आप में ऐसी भाषा है जिसमें कोई भी शब्द, जी हाँ कोई भी एक शब्द किसी अन्य शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। वेदों की भाषा हमारी अपनी संस्कृत भाषा, इसलिए आप भी प्रयास कीजिए कि इस भाषा के शुद्ध रूप में इसे सीखें, जानें, समझें और प्रयोग भी करें। जी हाँ, भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां पर संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, तो हम भी प्रयास करें और इस भाषा को अपनी प्रिय भाषा के तौर पर आगे बढ़ाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जरूर सौंपें। सुन रहे हैं आप रेनबो दिल से दिल तक।

आप जब भी क्राई करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जी हाँ, आंसुओं का संबंध देखिए। जब आप बहुत खुश होते हैं तो खुशी के आंसू छलक जाते हैं और कहीं दुखी होने पर भी ये नम हो जाती हैं, लेकिन जुड़े हैं आंखों से, हमारी नेत्रों से, जो कि बेहद खास है हमारे लिए, क्योंकि ये ही हैं जो हमें दुनिया से परिचित कराती है। हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हम राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं, जिससे कि सभी लोगों के बीच नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़े और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आंखें जीवित रहें और वो किसी और को दुनिया दिखा सकें। जी हाँ, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की बात करें, कॉर्नियल अंधपन से कई लोग पीड़ित हैं, ऐसे में उन्हें दृष्टि का उपहार देना एक अपने आप में नेक और बड़ा ही खूबसूरत काम है। नेत्रदान से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए इस पखवाड़े को, इस दिनों को मनाया जाता है, क्योंकि आप देखिए, यदि एक व्यक्ति नेत्रदान करता है मृत्यु पश्चात, तो दो जरूरतमंद लोगों को नई रोशनी मिल जाती है। इसमें आंख का जो मुख्य रूप से कॉर्निया पार्ट है, उसे डोनेट किया जाता है। कुछ और बातें जो इस पखवाड़े से जुड़ी है, देखिए, हम जागरूकता अभियान के तौर पर इन दिनों को मनाते हैं। नेत्रदान से जुड़ी जितनी भी भ्रांतियां हैं, मरणोपरांत नेत्रदान के लिए सभी को प्रेरित किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम बनाए जाते हैं, लेकिन असली जागरूकता जब प्रति व्यक्ति आएगी तो वो वाकई ही खूबसूरत होगी। और देखिए, अगर आप अभी ये डिसाइड करते हैं कि मेरे, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, मेरे जाने के बाद मेरी आंखें किसी और की आंखें बनकर इस दुनिया को देखती रहें, तो आज ही ये कदम उठाएं। मृत्यु के 6 घंटे के भीतर कॉर्निया निकाल लिया जाता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क होती है और इसके लिए स्टेप आपको अभी से, आज से लेना होगा। और देखिए, एक खूबसूरत संदेश के साथ आपके जाने के बाद भी आपकी आंखें इन खूबसूरत दुनिया को, इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं। इस प्रेरणादायक संदेश को अपने दिल में बैठा लीजिए और जब भी आप आज के इस सब पखवाड़े की हम बात करते हैं, नेत्रदान की हम बात करते हैं, तो देखिए, बहुत सी इससे भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी ओर ना ध्यान देते हुए एक सही कदम की ओर आप भी बढ़ चलिए और नेत्रदान के लिए आगे आए, ताकि कोई और भी इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। सुन रहे हैं आप

0: रेनबो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक बार फिर आती हूँ और अपने कार्यक्रम को रखते हैं जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: रेनबो सुन रहे हैं आप। आज के विशेष दिन पर बहुत सी हमने बातें की हैं, बहुत सी बातें करनी भी हैं और एक और आज हम क्योंकि श्रावणी पूर्णिमा बना रहे हैं और भारत की अगर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की तरफ रुख करें तो इसे नाली पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। स्पेशली महाराष्ट्र और कोंकण तट के जो मछुआरे हैं इसे एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण पर्व के तौर पर मनाते हैं। नाली पूर्णिमा यानी श्रावणी पूर्णिमा, ये पर्व जल और समुद्र के देवता वरुण देव को समर्पित है। इस दिन नारियल अर्पण करने का भी प्रचलन है। समुद्र को शांत रखने और उसकी आराधना करने के लिए जल में नारियल, फूल और चावल अर्पित किए जाते हैं और जो मछुआरे हैं जिनकी रोजी रोटी जो है समुद्र पर निर्भर है, मछली पालन से जुड़े हुए हैं, इस त्योहार के दिन मछुआरे जो है वरुण देवता से अपनी सुरक्षा का आशीर्वाद मांग कर एक बार फिर समुद्र में उतरते हैं। और इस समय अगर तटीय क्षेत्रों भारत के तटीय क्षेत्रों की तरफ देखें तो कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो आज के दिन की जो ये पूजा है अपने आप में मछुआरों के लिए और विशेष हो जाती है। इस दिन को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। नारली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा की एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को और वे भाईजन जो कि भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, मछुआरे के तौर पर मछली पालन और समुद्र से जुड़े हैं, उन्हें भी देना चाहेंगे। सुन रहे हैं आप रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन के साथ, और प्रोग्राम आपका अपना पसंदीदा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम है, यानी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके लिए वो सभी बातें जो आज के दिन को खास बनाती हैं उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। और आज बताने के लिए बहुत सी बातें, क्योंकि आज विशेष पर्व हम स्नेह बंधन रक्षा बंधन मना रहे हैं। हमारे बहुत से श्रोताओं के संदेश आए हैं, कोशिश करूंगी उन्हें शामिल करने की। लेकिन आज के दिन जन्मे व्यक्तियों पर अगर देखें तो 1975 में आज के दिन यानी 28 अगस्त को जन्मे अनुज नैयर की बात करें तो ये वे शख्स हैं जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये जो है जाट रेजिमेंट भारतीय सेना के मुख्य अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, और कारगिल युद्ध में कई अभियानों के दौरान इन्होंने अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सर्वसम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी के तौर पर ये आज के दिन जन्मे वे व्यक्ति जिन्हें हम याद करते हैं। जगदीश सिंह खेहर की बात करें तो 28 अगस्त 1952 को जन्मे भारतीय न्यायविद, जी हां, भारत के मुख्य 44वें न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने जो है इस पद को ग्रहण किया। इनकी

उपलब्धियों की तरफ नजर डालें तो ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर भी नियुक्त रहे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर, और इनका कार्यकाल जो है वो रहा कि ये 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते रहे। और इनके कुछ मुख्य निर्णयों की, ऐतिहासिक निर्णयों की बात करें तो जिनमें निजता का अधिकार, 3 तलाक और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का असंवैधानिक घोषित करने जैसे मुख्य निर्णय भी शामिल है। जगदीश सिंह खेहर भी आज ही के दिन जन्मे, और राजेंद्र यादव, जी हाँ, ये एक सुप्रसिद्ध सुपरिचित लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार और आलोचक के तौर पर नई कहानी के नाम से इनका जो हिंदी साहित्य है, नई विधा जो है, आपने जरूर पढ़ा होगा। राजेंद्र यादव 1929 को आज के दिन जन्मे, और 28 अगस्त 1928 को जन्मे एम गोविंद कुमार मेनन की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ये भूतपूर्व अध्यक्ष रहे, और इन्होंने इस क्षेत्र में बेहद सराहनीय काम किए और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खूबसूरत सा गाना जो इंतजार कर रहा है आपका, इसे सुनते हैं। और बोल बिल्कुल ठीक है, अधूरे हैं आपके बिना हम और हमारे बिना आप, यही तो है वो दोस्ती जो दिल से दिल तक निभाई जाती है। रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन के साथ।

बिन तुम्हारी सुन रहे हैं आप रेनबो, अधूरे हम अधूरे तुम, बिन तुम्हारे एक दूसरे के बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं। गौतम कुमार अररिया बिहार से ढेरों शुभकामनाएं भेजते हैं रक्षाबंधन की। संजय कुमार मंगोली एमपी से हमें संदेश भेज रहे हैं, रेनबो परिवार को हैप्पी रक्षाबंधन लिखकर भेज रहे हैं। हितेंद्र दास असम से हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। और जी हाँ, ये हैं उत्तराखंड गढ़वाल से और बलवंत सिंह जी हमारे श्रोता जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सभी के इन प्यार भरे संदेशों के लिए। बहुत सारे मैसेजेस जो आपके हमें मिले हैं ये प्यार झलकाते हैं आपको और हमारे रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं। शिव शंकर जी भी सुन रहे हैं कार्यक्रम को। राजकुमार जी जो कि अकोला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं, ढेरों शुभकामनाएं और कार्यक्रम की तारीफ भेजिए। वहीं अनिल शर्मा जो कि हमारे वरिष्ठ श्रोता हैं सरिता बिहार से, बेहद संयोजित और प्यारे तरीके से ये कविताएं रचते हैं और मेरी तारीफ में और आज के दिन की शुभकामनाएं इन्होंने कविता के माध्यम से भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी करते हैं। और श्रोताओं इसी तरह जुड़े रहिए आप हमारे साथ और वेलकम, यस वेलकम ऑफ द डे, आज के दिन को वेलकम करना बनता है।

वैसे आज का मेन्यू तो कुछ पनीर लबाबदार, पनीर मटर या फिर राजमा छोले चावल भटूरे ऐसा होना चाहिए।

कुछ और शुभकामनाएं स्पेशली नाली पूर्णिमा की हमारे श्रोता नंदुरबार महाराष्ट्र से भेज रहे हैं दिलीप मोहन चिंपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आपको भी शुभकामनाएं, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए भी धन्यवाद।

वेल वेलकम तो बनता है अगला प्रोग्राम. जी हाँ, प्रोग्राम यही रहेगा. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर. प्रोग्राम लेकर आएंगी नुपुर कुलश्रेष्ठ और मैं आपके लिए 9:02 पर लेकर आऊंगी दिल के तराने, गाने नए पुराने, और फिर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक आर लिपिका दास के साथ. तो बने रहिए पूरा दिन हमारे साथ और इस त्योहार की एक बार फिर से शुभकामनाएं. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेनबो. क्या कहना आज के दिन का, इस रिश्ते का, इस त्योहार का, क्या कहना.

नमस्कार, एआईआर एफएम रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 392 हुई। आपदा में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। भारत ने नेपाल से अपने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। एनडीआरएफ ने कहा, नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेंक और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन एचयूआईटी आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली यह यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने

आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पांचवें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हराया और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से जीती श्रृंखला। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहे, बस यही दुआ रहती है। उसी दुआ के साथ मैं बिल्कुल श्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।
2: Bellissimo.

अरे ये कुड़ी बिल्कुल जानी पहचानी है और शहर भी कहाँ अनजाने रह जाते हैं जब हम और आप मिलते हैं आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में, और ये सफर बेहद खूबसूरत बन जाता है आपके साथ जुड़कर और बहुत सारी बातचीत के साथ इस सफर को हम बनाते हैं अपने लिए और आपके लिए बेहद खास। और आज तो बेहद खास दिन है, आज है रक्षाबंधन, और एक ऐसा पर्व जिसमें बस सारी जो यादें हैं वो बचपन की ओर चली जाती हैं। हम खो जाते हैं कि किस तरीके से ये जो रिश्ता है भाई बहन का, बहन बहन का, कितना ही खूबसूरत है और अलग ही लाड प्यार दुलार होता है, और अलग ही आपकी अपने भाई से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आप बहुत ही उन एक्सपेक्टेशंस पे बोल भी देते हैं। हाँ, तो आप पूरी रक्षा का वादा करती हैं, दुआएं करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं अपने भाई के लिए, तो पूरा आप हक रखती हैं अपने भाई पर। और ये जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, चाहे कितनी भी कुछ भी बात क्यों ना हो जाए, लेकिन ये जो रिश्ता है वो कभी भी आप उन यादों से, उन बातों से दूर ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये और गहरा होता जाता है वक्त के साथ साथ। और साथ ही साथ जब भाई का जो प्यार है, बहन का जो प्यार है, कभी आपको पता ही नहीं चलता उनके आगे माता पिता का प्यार है ना, और जब कभी कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी सी दूरी आए तब आप समझ पाते हैं कि हाँ ये पिता का प्यार है, हाँ ये माँ का प्यार है, क्योंकि बचपन तक और आप जब तक थोड़ा सा अपने अपने रिश्ते में नहीं बिजी हो जाते तब तक आपको ऐसा लगता है कि ये बस कितना लड़ लें, घूम लें, यहाँ वहाँ चले जाए, लेकिन फिर वो जो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और उसके बाद आप जो बिज़ी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो सब कहीं ख़त्म सा हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हर रिश्ते को रिवाइव कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं बहुत ही बेहद खूबसूरत यादों के साथ, और बस करना होता है, बातें नहीं करनी होती हैं। तो बनाइए अच्छे से आज का ये जो पर्व है रक्षाबंधन का, और मिठाइयाँ आप और वो जो आपके शैतान से नीस नेफ्यू उनके साथ, ये आज का दिन बेहद खूबसूरत बीते आपका। और आज के दिन भी आप क्या कर सकते हैं इसको और

खास कैसे बना सकते हैं बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा आज का वेदर। तो वेदर की अगर हम बात करें तो बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश के साथ साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा लगभग 28 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे में अपना पूरा पूरा अच्छे से ध्यान रखें, आप ट्रेवल कर रहे हैं और आप कहीं भी जा रहे हों, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। और अभी आप जानते हैं कि किस तरह की कंडीशन है, किस तरह की सिचुएशन है, उसमें अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल रखें। थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नज़ला हो रहा है या बुखार है तो डॉक्टर से संपर्क करें, उनकी सलाह लें, खुद डॉक्टर ना बने, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें हर मौसम में और हर दिन। बस जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

यूं ही गाते गुनगुनाते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहना होता है और ये ज़िंदगी का सफ़र ना और भी खूबसूरत हो जाता है। और देखिए आज एक बहुत ही खूबसूरत सा ये जो पर्व है रक्षाबंधन, हम सब मिलकर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अलग अलग घर में पकवान बन रहे हैं किसी की पसंद की, और वो पसंद किसकी होगी, बहन की भी हो सकती है, भाई की भी हो सकती है, जो उसको पसंद है आज उसके लिए बना देते हैं, फिर भाई से एक बहुत ही प्यारा सा जो गिफ्ट है वो आपको मिलेगा। कैसे ना, कि क्यों, वो आपका हक है। और अच्छे अच्छे टेस्टी डिशेस भाई से ही बनवाइए, भाई से ही गिफ्ट लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपका भाई ऐसा करते तो आपका भाई जो बहुत अच्छी चीज़ बनाता हो वो आप उससे बनवा के खा सकते हैं और साथ ही साथ उसी की तारीफ करके उससे गिफ्ट भी ले सकते हैं। तो रक्षाबंधन के इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आज का दिन आप अपने अपनों के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और जहां आपका मन करता है वहां जाइए। वैसे आज फ्राइडे है और उसके बाद वीकेंड है और 3 दिन है आपके पास, वैसे तो आप किसी और शहर भी जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, और हो सकता है कि आप अभी राखी बांधने के लिए किसी और शहर में भी हों, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं और आज के इस दिन को ख़ास बनाना चाहते हैं तो आप के पास ऐसा मौका है, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं और वो सबके लिए हो सकती हैं, और आप बच्चों के साथ भी उन जगहों पर इंजॉय कर सकते हैं और आसपास हरियाली हो, मनोरंजन हो और परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए, तो फिर ऐसी जगह भी आपको पता हो तो फिर इसके क्या कहने। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं इंडिया गेट और चिल्ड्रन पार्क, यहाँ पर आप अच्छे आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका आनंद ले सकते हैं, और इंडिया गेट पर तो एक अलग ही आनंद आपको मिलता है, घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, और साथ ही पास में चिल्ड्रन पार्क भी है तो ये बच्चे भी वहाँ पर आनंद ले सकते हैं। आप जो है हुमायूं का मकबरा है वहाँ भी घूम सकते हैं, वास्तुकला अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने चारबाग शैली के बगीचों और जो वास्तुकला है उसके लिए प्रसिद्ध है तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। नेशनल साइंस सेंटर भी आप जा सकते हैं बच्चों के साथ, और आप उनको वहाँ विज्ञान से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको देखने और समझने का मौका मिलेगा। तो आप शुरुआत कर सकते हैं नेशनल साइंस सेंटर से, उसके बाद हुमायूं का मकबरा, नेशनल साइंस सेंटर आपने यहाँ पर गए, और उसके बाद शाम को आप इंडिया गेट जाने का प्लान बना सकते हैं, चिल्ड्रन पार्क में भी आप आनंद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज के दिन को आप अपने लिए बेहद खूबसूरत और यादगार बना सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप आज के दिन को किस तरीके से बिताते हैं, और वैसे ही आप बहुत ज़्यादा आप अपने अपनों के बीच में हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ आपकी लगी होती हैं, यहाँ जाना है, बहन को लेकर आना है, फिर वाइफ के साथ भी जाना है, फिर बहन को ड्रॉप करने भी जाना है, तो बहुत सारे काम आपके वैसे भी हो सकते हैं। तो व्यस्तता के बीच अगर थोड़ा सा मन करे कि बाहर प्लान करना है तो आप इस प्लान को भी आजमा सकते हैं। आप जुड़ रही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफ़र में, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और ये ख़ास रक्षाबंधन पे गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा।

और आप इस प्यार के धागे से हमेशा यूं ही बंधे रहें और बेहद खूबसूरत सा दिन आप अपने अपने परिवारजनों के साथ बिताएं। भैया भाभी बच्चे दादा दादी नाना नानी आपके मम्मी पापा आपकी बहनें भाई सब लोग शामिल हो जाते हैं और शामिल हो जाते हैं सब लोग तो बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। और अगर आपको आप आनंद लेना चाहते हैं एक और आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत आनंद आप ले सकते हैं इस उत्सव का इस महोत्सव का। और अगर आप दिल्ली में हैं और पहाड़ी जो सुर है उनका आनंद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा मौका है। 14 सितंबर तक चलने वाला है ये जो उत्सव है, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड लोक उत्सव की। उत्तराखंड लोक उत्सव की जो शुरुआत है 25 अगस्त से हो चुकी है, 14 सितंबर तक आप इस उत्सव का आनंद ले सकते हैं। 21 दिवसीय ये जो महोत्सव है यहाँ पर आपको देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक लोक संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक व्यंजन और हस्त शिल्प का आप आनंद ले सकते हैं। मानसून की शुरुआत और पर जो हरियाली है अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ, रामलीला मैदान, रोहिणी के रामलीला मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप भी यहां पर पहुंच सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। 500 से ज़्यादा जो कलाकार हैं आप उनकी प्रस्तुतियां देख सकते हैं। तो देव भूमि की संस्कृति परंपरा और विरासत का ये जो महापर्व है उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, आप परिचित हो सकते हैं संस्कृति से, तो ज़रूर पहुँचे वहाँ पे आनंद लीजिए। और जो पारंपरिक व्यंजन है उनको तो ज़रूर आप ज़रूर उसका स्वाद लीजिएगा। और साथ ही साथ जो कलाकार है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आपका वहाँ पहुँचना तो बिल्कुल

कुल बनता है, क्योंकि कलाकार जो होते हैं ना, उनके लिए उनके दर्शक ही सब कुछ होते हैं, उनके ऑडियंस से ही वो कलाकार हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आपकी जो तालियाँ हैं वही उनके लिए असली सम्मान है। तो आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, रामलीला मैदान, सेक्टर 16, रोहिणी, जी हाँ, दिल्ली। और 25 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 14 सितंबर तक इस पर्व का आयोजन किया जा रहा है। आप जुड़ रही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
5: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
4: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
5: हैं इतनी जल्दी?
4: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, और साथ ही साथ बहुत सारी बातें जो आपसे करनी होती हैं इस सफ़र में, और एक के बाद एक हम बातें आपके साथ करते जाएं। और कौन बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, और आप ये खूबसूरत सी दुनिया देखते हैं और देखते हैं इन खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लेते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ना। और कई बार जब अंधेरा होता है तो थोड़ी सी घबराहट भी होती है, लेकिन क्या हो कि आपके जाने के बाद भी ये जो आंखें हैं आपकी, इस खूबसूरत दुनिया को देखती रहें, और साथ ही साथ किसी के जीवन से आप अंधेरा दूर कर सकें। और ये जो आपकी आंखें हैं, आप की ये जो आंखें हैं वो दो लोगों को, जी हाँ, रोशनी दे सकती हैं, और उनकी ज़िंदगी को, इस खूबसूरत दुनिया को देखने का एक अवसर दे सकती हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके कि आप नेत्रदान करें और इससे जुड़ी जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जा सके। नेत्रदान के प्रति लोग जागरूक हों, और साथ ही साथ इसके लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं, सम्मेलन किए जाते हैं, रैलियां की जाती हैं, नेत्रदान संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो बात यह है कि आप भी प्लेज ले सकते हैं, नेत्रदान का संकल्प कर सकते हैं कि जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे लेकिन फिर भी इस दुनिया को देख सकेंगे। और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी जाती है, और इस पखवाड़े में परिवारों को सामाजिक कार्यकर्ताएं जो हैं वो जागरूक करते हैं, जानकारी देते हैं। तो फिर आप भी ये जो काम है वो कर सकते हैं, नेत्रदान आप कर सकते हैं। इसके लिए आप को पंजीकरण कराना होता है, और आप को सारी जो जानकारी है वो ज़रूर मिल जाती है। आप इन केंद्रों पर जा सकते हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। मृत्यु के 6 घंटे के भीतर जो कॉर्निया है उसको निकाला जाता है, और आपकी वजह से कोई है जो इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, ये काम आप भी कर सकते हैं। आप जुड़े हुए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। और साथ ही साथ कई बार कुछ न कुछ नाराजगी मनमुटाव कहीं ना कहीं भाई बहनों के बीच में भी हो जाता है। तो ये जो रक्षाबंधन का ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व है, ये जो उत्सव है ना, हमारी जिंदगी में उत्साह लाते हैं और इनको उत्साह के साथ ही बनाए। अगर कोई नाराजगी है भी तो उसको आज के दिन आप पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। ये जो रक्षाबंधन का ये जो बंधन है ना, ये जो धागा है ना, ये बहुत मजबूत होता है। तो आप अपनी बात को कह सकते हैं और कह नहीं पा रहे हैं तो एक मैसेज से तो शुरुआत कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिना कुछ कहे भी आप उनकी पसंद का कुछ बना दीजिए। कहते हैं ना, वो जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर जाता है। तो अपनी भाई के लिए, अपनी सिस्टर के लिए आप बहुत ही पसंदीदा जो उनकी खाने की चीज़ है वो बना सकते हैं, और फिर देखिए कैसा जादू चलता है। तो इसलिए कोई भी बात होती है ना, उसका ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, बातों के पीछे नहीं लगना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। तो जो भी बातें हैं, जो भी आपको बात करने से ही तो बातें सॉल्यूशन निकलता है ना, तो इसलिए बात करनी चाहिए। और आज के इस पर्व की, इस त्यौहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के इस पर्व की। और बहुत ही बेहद खूबसूरत सा ये जो गाना है वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्ले कर रही हूँ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप जुड़ रही हैं हमारे साथ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने पुराने। आपके साथ होंगी सृजन राजपूत। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अभी आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज से दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत हैं। लीजिए 9 बजे के मुख्य समाचार। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 392 हुई। आपदा में फंसे भारतीय नागरिकों को पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। भारत ने नेपाल से अपने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। एनडीआरएफ ने कहा, नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफाकत मियोजर्फ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण शिकागो में मुख्य प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसियंग और हॉल मार्किंग सेंटर्स के साथ HUID के आधारित हॉल मार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। अब खबर खेल जगत से। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हराया। भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से श्रृंखला जीती। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले वे पहले भारतीय बने।

0: वाणी आकाशवाणी
1: दिल से दिल तक एक बार फिर आपकी दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन आ चुकी है लेकर प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से हमारे श्रोता देश भर से नहीं दुनिया भर से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को। नॉनस्टॉप गानों के साथ साथ इस साल आपके लिए 3 ओल्ड एंड गोल्ड हिट सॉन्ग्स का तड़का लगाएंगे इस आर में। और भाई बहन के रिश्ते को अगर कोई नाम देना चाहे तो मुझे लगता है इसकी संज्ञा, इसकी उपमा, इसकी सर्वनाम और इसकी हिंदी की सभी भाषाएं परिभाषाएं कम पड़ जाती हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है ना, तो ये ठीक है कि तू भाई कश्मीर है और मैं तो कन्याकुमारी हूँ।

भाई बहन के रिश्ते की एक खूबसूरत बात तो ये भी है कि 50-50 हिस्सेदारी ना बाबा, अगर मम्मी ने पकड़ लिया कोई गड़बड़ करते हुए तो 100% दूसरे वाले का है। तो ऐसे में अक्सर रिश्तों में, इस रिश्ते में खासकर जो ये मीठी तीखी सी नोक झोंक है ना, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। और एक खूबसूरत बात और है कि हम आपस में भाई बहन एक दूसरे से कितना भी लड़ लें, लेकिन मजाल है कि बाहर वाला कोई कुछ कह जाए तो मौसम गर्मा जाता है। खैर, मौसम की भी बात कर लेते हैं। प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं, अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुरिस रजन को। अभी बिल्कुल आप फील कर रहे हैं 32 डिग्री सेल्सियस, और दिन चढ़ा चढ़ा है, मोस्टली सनी रहने वाला है। मिनिमम देखें तो इवनिंग तक आप फील करेंगे 28 डिग्री, और मैक्सिमम 35 तक ही जाने वाला है। थोड़ा कूल है, थोड़े से बादल जो है झाका झाकी कर रहे हैं, इस बीच आपको थोड़ा ह्यूमिड लगेगा। ट्रैफिक क्योंकि इधर से उधर आप जाने वाले हैं तो देखकर चलिएगा। फिलहाल आगे मैं आपको ट्रैफिक अपडेट देती हूँ, लेकिन एक और गाना जो आपके इंतजार में है। बड़ी बहन ने भाई को उसकी स्कूल परफॉर्मेंस के दौरान डांस ना सिखाया तो क्या सिखाया, और इस तरह से सिखाया तो क्या लाजवाब बात बन जाती है ना।

जब सबका घर में मिलना हो और नाचना गाना डांस मस्ती ना हो तो कहाँ बात बनती है। और हम दिल्ली वालों की तो खासियत ही ये है कि जो मौका लगे नाच लो भाई। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने अपनी दोस्त दिल की चाशनी कुड़ी सृजन के साथ। और जी हाँ, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे श्रोता गगन गुप्ता दिल्ली से कि कब वो ओल्ड एंड हिट ट्रैक उनके लिए प्ले होगा। हम सभी को इंतजार है, तो लीजिए ये स्पेशल सॉन्ग आप सभी श्रोताओं के लिए। लिसनर्स एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन को, इस स्नेह बंधन को।

0: फिल्म छोटी बहन, आवाज लता मंगेशकर की, म्यूजिक शंकर जयकिशन का और लिरिक्स शैलेंद्र के लिखे हुए, और ये एवरग्रीन सॉन्ग जब भी आप अपने बहन भाई कोई भी इस रिश्ते की एक तरफा दौर पर खड़ा होकर दूसरे को मिस कर रहा हो तो ये गाना तो जरूर गुनगुनाता है। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

देखिए लिसनर्स, मैंने तो ऐसा बहुत बार किया है कि दिल खोल कर पहले अपने भाइयों को नाराज किया है और फिर उन्हें टीज कर करके कहा है से ना, अब तो कुछ कह दो, से ना से ना। और उन्होंने जवाब में क्या कहा है कि तुम बहुत ड्रामा क्वीन हो।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: FM रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। एक ट्रैफिक एडवाइजरी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है रिलीज की गई है, जिसमें कि स्पेशली 27-28 आज के दिन की भी बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन के चलते है। आनंद बिहार ISBT रोड नंबर 56 NH9 विकास मार्ग काफी जाम रहते हैं, बहुत ट्रैफिक रहता है, तो इस रूट को अवॉइड करने के लिए कहा गया है और एडवांस में टाइम लेकर चलने के लिए भी कहा गया है। और साथ ही जो अल्टरनेटिव रूट यहां पर सुझाए गए हैं उसमें रोड नंबर 56 है, और यह भी कहा गया है कि आप पहले से जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सफिशियंट टाइम लेकर चले। देखिए, मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जो है रेगुलर चेक करती रहती हूँ।

0: हाँ, पर एक खूबसूरत सी एक पोस्ट देख रही हूँ, ये वाकई ही दिल छूती है। इस पोस्ट में बहन जो है अपने भाई को राखी के साथ हेलमेट गिफ्ट कर रही है। ये काफी मीनिंगफुल है। जब आप एक दूसरे की रक्षा का वचन देते हैं, तो आप अपनी बहन को ये वचन भी दीजिए कि जब भी आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर ट्रैवल करेंगे, तो सभी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखेंगे। आप ट्रैफिक लिमिट का ध्यान रखेंगे, सिग्नल्स का ध्यान रखेंगे, और सुरक्षित पहुंचना, ये कलाई के साथ साथ आप सुरक्षित रहें, आप जो भी आपके साथ रोड पर और वाहन चालक हैं वो भी सुरक्षित रहें। इस सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर आप उठा लेते हैं, तो ये वाकई ही रक्षाबंधन होगा। सुन रहे हैं रेनबो,
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: बेहद खूबसूरत पिक्चराइजेशन, ये गाना, ये लिरिक्स, ये बोल, फूलों का, तारों का, सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। हरे कृष्णा हरे रामा फिल्म और किशोर कुमार की आवाज, म्यूजिक आरडी बर्मन का, लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। पिक्चराइजेशन देखें तो यहाँ पर आपको देवानंद और चाइल्ड एक्टर के तौर पर, जैसे कि वो स्मृतियों में याद कर रहे हैं बेबी गीता, और बड़े होकर वो जीना तमान बनती हैं। और ये गाना वाकई टाइमलेस हम इस गाने को कह सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, रेनबो 102.6 से अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन के साथ।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
0: देखिए, नो डाउट इस दिन बहनों का स्वैगर ही अलग होता है, पूरी फुल ऑन डिमांड है उनकी, तो भाइयों को आज के दिन उन्हें मनाकर रखना चाहिए, स्पेशली खुश रखना चाहिए। और ये रिश्ता वाकई इतना खूबसूरत है कि नोक झोंक के साथ साथ प्यार बेशुमार है।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरेश रजन। और एक और बेहद खूबसूरत सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, ये दिल ही तो है।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

दिल ही तो है अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म द स्काई इज पिंक से एंजॉय कीजिए, बेहद खूबसूरत रिलैक्सिंग सॉन्ग है ये। इतना नाच गाने के बाद थोड़ी सी सांस तो ले लीजिए।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: बिल्कुल यही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, दिल के तराने गाने नए पुराने, अपनी दोस्त रजन के साथ। अगला आर लेकर वेस्टर्न म्यूजिक आपके साथ होगा, मैचलेस म्यूजिक आर लिपिका इस प्रोग्राम को लेकर आएंगी। और उसके बाद 11:02 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स कंचन कानन के साथ। एक बार फिर लिपिका आपके लिए 12:00 लेकर आएंगी प्ले इट कूल। 1:02 तक एक स्पेशल प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा पीएम जनधन योजना पर। हमारे अतिथि होंगे श्री विवेक गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ डीओ फाइनेंशियल सर्विसेज, और साथ ही श्री श्याम सुंदर सिंह जीएम पीएनबी से, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करेंगी कंचन कानन। तो आप इस विशेष कार्यक्रम से जरूर जुड़िएगा। आशियाना सुनेंगे आप 2:02 पर, रेशमा आपको रेनबो डेस्टिनेशन यानी कहीं घुमाने लेकर जाएंगी। रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम 3-4, टॉपिक है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एंड डाइट। और इसके बाद अल्फा जैन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे लेकर रेशमा आ जाएंगी एक बार फिर 4:02 पर आपके साथ। सिटी लाइट सुनेंगे शैली भाषांजलि के साथ, समय वही आप जानते हैं 5:02-6 तक का। हीना आपके लिए हीना मौज लेकर आएंगी मैसेज मसाला मिक्स। और 7:00 अगला कार्यक्रम 6:00 के बाद होगा ऋषि के रावत के साथ फ्राइडे फिएस्टा। म्यूजिक मस्ती 8:00 हीना मौज के साथ कीजिएगा। और विकास कौशिक आपके लिए लेकर आएंगे 9:02 पर प्रोग्राम आपकी याद आती रही। एक बार फिर वेस्टर्न म्यूजिक आर वीकेंड देवर्षि प्रस्तुत करेंगे 10:02 पर। और रंगे महफिल यानी आज की महफिल भी विकास सजाएंगे 11:02-08 तक। तो आपको कहीं नहीं जाना है, एक और खूबसूरत गाना।

कुछ गाने तो ऐसे हैं जो इस याद में जब आप अपने भाई या बहन से दूर होते हैं तो खास कर आपकी आंखें नम कर देते हैं। वो आपका हाले बयां होता है, दिले बयां होता है। ये गाना आपने सुना राखी धागो का त्योहार, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म, जी हाँ, फिल्म का नाम है राखी। और ये फिल्म जो है अशोक कुमार, वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार, महमूद, ये सभी इस फिल्म में नज़र आते हैं। म्यूज़िक जैसे मैंने बताया रवि का म्यूज़िक है, लिरिक्स राजेंद्र कृष्ण ने लिखे हैं और बेहद खूबसूरत ये फिल्म है। आप जितनी बार इसे देखें आपको वो रिश्ता, वो प्यार, आपको ऐसा लगता है कि इस समय मैं बस अपने भाई या अपनी बहन के साथ ही हूँ, तो कितनी खूबसूरत बात हो जाए। एक बार फिर आपको आज के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।

प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से और मैं दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन आपसे अब लेना चाहूंगी इजाजत इस प्यारे से मैसेज के साथ संदेश के साथ। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की खुशबू और बारिश की फुहार, मुबारक हो आप सभी को रक्षाबंधन का त्योहार। अपने भाई को कह दीजिए, भाई बहन हमारे बीच में कितनी भी नोकझोंक हो जाए लेकिन हमारा ये रिश्ता हमेशा अटूट है और इस रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। आप सभी खुश रहें, सुनते रहिए रेनबो दिल से दिल तक। नमस्कार।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: Welcome back to our listeners. Today is a Raksha Bandhan, and on a morning like this, there is always room for a little nostalgia from home, isn't it? So here's our first Hindi retro of the morning, a song that carries that old warmth beautifully. It's from a movie called Jawani Diwani, released in 1972. Singer here is Kishore Kumar. Music direction is by Rahul Dev Barman, and lyricist is Anand Bakshi. Here's the track.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: 10:37 by the studio clock. You are listening to the Matchless Music Hour on FM Rainbow 102.6 MHz with me, Lipika. Well, listeners, country superstar Shania Twain is turning 61 today. Here's wishing the queen of country music, Shania Twain, a year filled with happiness, good health, and more unforgettable music. Happy birthday, Shania Twain. Here is a track by the star, and it's called Man, I Feel Like a Woman.
3: Let's go, girls.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Welcome back, dear listeners. 10:45 a.m. by the studio clock, and time now to bring you the last Hindi retro for this morning session of the Matchless Music Hour. It's a song by Shailendra Singh from a movie called Khel Khel Mein. Music direction is by Rahul Dev Barman and lyricist Gulshan Bawra.

नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 392 हुई। आपदा में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। भारत ने नेपाल से अपने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है, जिसमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर सेइंग और हॉल मार्किंग सेंटर्स के साथ HUID आधारित हॉल मार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजस्व अधिसूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 तलाशी अभियानों में 76 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की गोलियां जब्त की। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हराया। भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से श्रृंखला जीती। और अंत में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ मैं कंचन। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए ना, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो बॉलीवुड में भी राखी का जो है ना उसकी धूम मची हुई है, तो इस पर हम बात करेंगे और कौन कौन सी फिल्में हैं आपके लिए इस पर भी बात करेंगे और बॉलीवुड के लिए जो सरताज बनने का क्विज होता है ना वो भी आपके लिए जरूर होगा। तो जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ ना लूँ। दोस्तों, इसी तरह की भावनाएं जो है ना उमड़ती हैं। और आज है रक्षाबंधन, प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और हम सभी हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मना रहे हैं। और आज का जो बॉलीवुड सरताज का सवाल है ना, वो भी भाई बहन की दिग्गज जोड़ी पर आधारित है। तो बॉलीवुड सरताज में आप कैसे बन सकते हैं? बॉलीवुड सरताज के लिए एक बहुत ही आसान सा सवाल होता है आपके लिए, और जो भी दोस्त इसका सही उत्तर हम तक सबसे पहले पहुंचाते हैं वो बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले जी के भाई कौन हैं। जल्दी से आप अपना उत्तर हम तक पहुंचाइए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और जो सबसे पहले सही उत्तर हम तक पहुंचाएंगे वो बन जाएंगे हमारे बॉलीवुड सरताज।

दोस्तों, बचपन में ऐसा लगता है कि सारी उम्र हमें संग रहना है, और वो बचपन की जो इतनी सारी यादें होती हैं ना भाई बहन के साथ, शायद भुलाए ना भूले। और बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब हम लोग अपने बचपन की यादों में जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के साथ, जब उन्होंने अपने भाई को याद किया और बहुत सारी प्यारी प्यारी तस्वीरें शेयर की। वो बहुत भावुकता से भरे पल थे उनके लिए, और उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी तस्वीरों को शेयर किया और कहा कि भाई, आप जहाँ भी रहें ईश्वर की गोद में वहाँ खुश रहें। अब सोचिए दोस्तों, एक बहन के लिए वो कितना कितना मुश्किल पल होगा, है ना। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं आपके साथ कंचन।

0: मोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
6: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
5: इम्पॉसिबल
6: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
6: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
5: इम्पॉसिबल
6: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

मणिक एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं कंचन। दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले जी के भाई कौन हैं, तो जल्दी से आप अपना उत्तर हम तक पहुंचा दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। वैसे बॉलीवुड में लता जी और दिलीप साहब का जो भाई बहन का प्यार था ना, रिश्ता था, वो दिल को छूने वाला है। हम सब के लिए एक मिसाल हैं दिलीप साहब और लता मंगेशकर जी।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और दोस्तों, हम सभी मना रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार, और बॉलीवुड में भी रक्षाबंधन

0: गए थे कि लता जी ने कितनी प्यारी आवाज दी है इस बच्चे के लिए, है ना। और बहुत अभी भी इस गीत को हमने प्ले किया तो कई बार हम सभी अपने बचपन में चले जाते हैं इस गीत को सुनकर। वैसे अंशुला कपूर और खुशी कपूर भी राखी जो है बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही हैं। और एक कलाकार अभय वर्मा जो कि किंग फिल्म में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे, वो भी गुड़गांव में अपनी बहन के साथ मना रहे हैं राखी का त्योहार। तो आप सभी कैसे मना रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे कभी आगे। सुनते रहिए फिल्म रेनबो, दिल से दिल तक।
1: Thank you.

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और दोस्तों, अगर बहन की शादी में कोई बहुत छुप छुप कर रोते हैं तो वो भाई ही होते हैं, है ना। प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, और करीना कपूर खान की आने वाली फिल्म है दायरा, जिसमें वो एसीपी अजूनी के किरदार में नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर विजय देवरकोंडा की नई फिल्म राणा बाली जो है वो रिलीज होने को है, लेकिन उसकी डेट जो है ना अक्टूबर में है, शायद 16 अक्टूबर को है। लेकिन देखिए, पर्व त्योहार एक तरफ, और उसके बाद अभी रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी, और ढेर सारे त्योहार के बीच फिल्मों की भी आपसी टक्कर जो है ना वो जारी रहेगी। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं आपके साथ कंचन। और मैंने आपसे पूछा था कि लता जी और आशा भोसले जी के भाई कौन हैं, तो जल्दी जल्दी बहुत सारे उत्तर जो है फटाफट पहुंच रहे हैं हम तक। तो जुड़े रहिए इसी तरह से, दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। और हमने पूछा था कि दिग्गज गायिका लता जी और आशा भोसले जी की के भाई कौन हैं, तो बहुत सारे उत्तर हम तक पहुंचे हैं और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं धमजा ग्राम खुकरी से उत्तम सिंह जंघेल जी और बहुत सारे इनके साथी। और साथ ही हृदयनाथ मंगेशकर कह रहे हैं प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, पंकज अमरावती से, उनका भी सही जवाब है, जयनंद त्यागी जी मोदीनगर से, कान्हा मेरठ से, और बहुत सारे निम्मी कह रही हैं पटना से, जो कि गलत जवाब है, वो कह रही हैं सुरेश वाडेकर, ये गलत जवाब है। सुरेश बदान जी लुधियाना से सही उत्तर हम तक पहुंचा रहे हैं। वैसे सही उत्तर ज़्यादातर हम तक पहुंचाए गए हैं। हरप्रीत रंगीला जी का भी सही उत्तर है, लता जी और आशा जी के भाई हैं। हृदयनाथ मंगेशकर किशनगंज से पहुंचा रहे हैं, विश्वजीत दास सही उत्तर। और देखिए इतने सारे उत्तर में मनीषा लातूर से सही उत्तर पहुंचा रही हैं, हरमनप्रीत कौर पंजाब से, राम लता जी और आशा जी के भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर, और ये उत्तर पहुंचा रहे हैं अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल धमधा से। और ये जो उत्तर तो कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन राखी की शुभकामनाएं दे रही हैं प्रीता। और बड़ा फिल्म तिरंगा से गाना सुनवा दीजिए जी, अभी कुछ थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। और व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो पहुंचा रहे हैं और कहते हैं कि उत्तर क्यों नहीं दे दे

जी उत्तर तो दे रहे हैं, तो जुड़े रहिए फिल्म रेनबो के साथ। अब देखिए, हमारे सबसे पहले जो है ना, विश्वजीत दास ने सही उत्तर पहुंचाया है, और वो है हमारे बॉलीवुड सरताज। वैसे आज हमारे जितने भी इच्छा ऐसी हो रही है ना कि जितने भी हमारे दोस्तों ने सही उत्तर या गलत उत्तर पहुंचाया है, वो सभी बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज, है ना। कई बार मन इस तरह से उल्लास से, हर्ष से भरा होता है कि लगता है कि बस सबको खुशियां बांटती जाएं, तो हमारे सभी श्रोता हैं बॉलीवुड सरताज। तो इसी तरह से जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

जी, लेकिन हर बहन की शिकायत होती है कि मेरा भाई जो है ना बिल्कुल बदल गया है, और शायद भाई भी कहते होंगे कि बहन जो है बहुत बदल गई है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जिंदगी की आपाधापी में थोड़ी सी दूरी बन जाती है, तो अगर भाई बहन में थोड़ी सी दूरी बन गई है ना, तो बिल्कुल अपनी हर ईगो को ताक पर रखिए और शिकायत को दूर कर दीजिए। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं कंचन।

सबसे ज्यादा लड़ाई जो है ना हम अपने भाई या बहन से ही करते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा बात ही शेयर करने के लिए उतावले भी उन्हीं से होते हैं। और बिल्कुल कुछ भी छोटी सी बात हो तो बिल्कुल उत्साहित होकर घर में जाते हैं, अरे पता है क्या हुआ, और अपने भाई या बहन से ही शेयर करने के लिए जो है ना मन छटपटाता रहता है। लेकिन समय के साथ थोड़ी सी दूरियां बन जाती हैं, लेकिन उन्हें दूर भी हम खुद कर सकते हैं। बहन जो है ना बिल्कुल पुलिसिया अंदाज में रहती हैं, और अक्सर भाई लोग कहते हैं बिल्कुल पापा की चमची है, और बहन भी कहती हैं बिल्कुल मम्मा के लाडले बन के रहते हो। और पता नहीं भाइयों को क्या होता है, बहन की लंबी सी जो चोटी है ना उसे खींचते रहते हैं, और इस तरह से खींचते हैं कि वो और उसकी लंबाई और भी बढ़ती चली जाती है। तो नोक झोंक जो है ना प्यार का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ही प्यार से उल्लास के साथ रक्षाबंधन मनाएं। और मैं कंचन फिर मिलूंगी, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: This is FM Rainbow 102.6 MHz and you are listening to the program Play It Cool. So to my question about your favorite person in your life, is a response from Karnal in Haryana. And this is from Sanjeev Kumar who writes, Good afternoon, ma'am. Happy Raksha Bandhan, Mrs. Lipika ji. Well, thank you for changing my marital status. I am Miss Lipika ji. Very happily single. And then Mr. Sanjeev Kumar adds that my answer is my favorite person is my younger brother Aman Kumar, who lives in village Kukhani, Tehsil Indri, district Karnal in Haryana. Thank you for letting us know. And for you and for Mr. Aman Kumar, your favorite person who happens to be a younger brother, here's a song by Sandro Cavazza. This is called Happy Now.

0: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, दोपहर के एक बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 392 हुई। आपदा में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। भारत ने नेपाल से अपने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें त्रिशूली

वन जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने कहा, नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्री सीतारमण शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज देकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। राजस्व अधिसूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 तलाशी अभियानों में 76 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की गोलियां जब्त की। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से श्रृंखला जीती। और अंत में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: शिवानी आकाशवाणी।
1: अब समय है प्रायोजित कार्यक्रम का।
2: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को इस रेडियो प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नलिनी वेमुरी। पिछले 9 साल

से इंडियन कैंसर सोसाइटी नई दिल्ली शाखा में वॉलंटियर हूँ। खास तौर पर मैं कैंसर जागरूकता वार्ता और अनुसंधान प्रोग्राम्स में शामिल हूँ। आज का रेडियो वार्ता ट्यूमर के प्रकार और कैंसर स्टेजिंग के बारे में है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर स्टेजिंग। ये रेडियो प्रोग्राम इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा प्रायोजित है। आप सभी जानते हैं कि कैंसर तब शुरू होता है जब कोशिकाओं या सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो खराब हो जाता है या उसमें बदलाव आ जाता है। इन बदलावों के कारण सेल्स असामान्य रूप से विभाजित होकर बढ़ती रहती हैं। समय के साथ ये एक जगह जमा होकर गांठ बन जाती हैं। सेल्स के इस जमाव को ट्यूमर कहते हैं। आम तौर पर ट्यूमर्स या तो प्री कैंसरस ट्यूमर होते हैं जो कैंसर युक्त नहीं है लेकिन उनमें ऐसे बनने की क्षमता होती है, या बिनाइन ट्यूमर जो कैंसर वाले नहीं हैं, गांठों के रूप में दिखाई देते हैं और इनसे जान को खतरा कम होता है, या मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसर ग्रस्त होते हैं, जान के लिए खतरा हो सकते हैं, तेजी से बढ़ते हैं और मेटास्टेसिस द्वारा दूसरे अंगों में भी पहुंच सकती हैं। अब सुनिए कैंसर के प्रकारों के बारे में। कैंसर के 200 से ज्यादा प्रकार और सब टाइप्स होते हैं। इन्हें जगह के आधार पर यानी अंग या टिश्यू जहां कैंसर बनता है, कैंसर बनाने वाले सेल्स और टिश्यू के प्रकार के आधार पर इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, सॉलिड या गांठ जैसा ट्यूमर और लिक्विड यानी तरल ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर तीन तरह के होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा और मेलनोमा। कार्सिनोमा कैंसर का सबसे आम प्रकार है। ये एपिथेलियल सेल्स या स्क्वामस सेल से बनते हैं। एपिथेलियल सेल्स आपके शरीर के अंदरूनी अंगों, ग्रंथियों और बाहरी शरीर को ढकते हैं। ये फेफड़ों, स्तन, पैनक्रियास, कोलन और प्रोस्टेट जैसे अंगों में होते हैं। इन्हें एडेनोकार्सिनोमा कहते हैं। और स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा त्वचा, फेफड़ों और भोजन नाली में होता है। कार्सिनोमा के जुड़े अन्य रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे उम्र बढ़ने के साथ रिस्क बढ़ता है, खासकर 65 साल के बाद। कुछ कार्सिनोमा जैसे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में ज्यादा आम है, लेकिन याद रहे ये पुरुषों में भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करते हैं। जीवन शैली से जुड़े रिस्क फैक्टर्स हैं धूम्रपान, ज्यादा शराब पीना, अस्वस्थ खानपान और व्यायाम की कमी। पर्यावरण भी कार्सिनोमा को बढ़ा सकता है, जैसे लंबे समय तक यूवी रेडिएशन, हानिकारक रसायनों के संपर्क में आना और एचपीवी से इन्फेक्शन, और जेनेटिक्स या पारिवारिक इतिहास। कार्सिनोमा के लक्षणों में हैं शरीर में बिना किसी स्पष्ट कारण के गांठ दिखाई देना, त्वचा में बदलाव जैसे तिल जो ठीक नहीं होते, असामान्य ब्लीडिंग या डिस्चार्ज, लगातार खांसी या सांस लेने में कठिनाई, मल या पेशाब की आदतों में बदलाव और बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना, भूख न लगना या थकान। कार्सिनोमा के जांच के लिए मुख्य टेस्ट हैं खून की जांच या कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, बायोप्सी जो ट्यूमर पहचानने में और सही इलाज के लिए सबसे भरोसेमंद टेस्ट है, और इमेजिंग टेस्ट। दूसरा सॉलिड ट्यूमर है सार्कोमा, जो कनेक्टिव टिश्यूज में शुरू होते हैं, जैसे कि मांसपेशियां, फैट, रक्त वाहिकाएं, लिम्फ वाहिकाएं, नसें और जोड़ों के आसपास के टिश्यूज जैसे टेंडन और लिगामेंट्स। उदाहरण है ऑस्टियोसार्कोमा जो हड्डियों का कैंसर है, कॉन्ड्रोसार्कोमा जो कार्टिलेज का कैंसर है, लिम्फोसार्कोमा जो फैट सेल्स में शुरू होता है, और रैबडोमायोसार्कोमा जो स्केलेटल मसल्स का कैंसर है। ये साफ नहीं है कि सार्कोमा किस वजह से होता है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपके परिवार में किसी को सार्कोमा हुआ हो, आपको हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी हो, आपको कोई जेनेटिक बीमारी हो जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, और पहले हुए किसी कैंसर के लिए रेडिएशन के संपर्क में आए हों। सार्कोमा का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये शरीर में किसी भी जगह पे हो सकता है। अक्सर इसका पहला लक्षण
बिना दर्द वाले

0: गांठ होती है। जैसे जैसे गांठ बढ़ती है, ये नसों या मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं, जिससे आपको बेचैनी या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा में शुरुआती लक्षण है हड्डी में दर्द जो रात में बढ़ सकता है, सूजन और लंगड़ा कर चलना। वयस्कों की तुलना में बच्चों और युवाओं में ऑस्टियोसार्कोमा ज्यादा होता है। तीसरा सॉलिड ट्यूमर है मेलानोमा। हमारे त्वचा का रंग मेलानोसाइट्स जैसे सेल्स से हैं, जो एक पिगमेंट मेलानिन बनाती हैं। मेलानोमा ऐसा कैंसर है जो मेलानोसाइट्स को प्रभावित करते हैं। ये त्वचा का सबसे खतरनाक कैंसर है। आमतौर पर ये त्वचा और आंखों में होता है, क्यूटेनियस मेलानोमा और ऑक्युलो मेलानोमा। मेलानोमा का खतरा बढ़ाने वाले रिस्क फैक्टर्स हैं परिवार में मेलानोमा का इतिहास, सूरज की यूवी किरणों के संपर्क में आना, ऐसे तिल होना जो सामान्य नहीं है, दवाइयों या बीमारी के कारण कमजोर इम्यून सिस्टम। मेलानोमा का डायग्नोसिस इन टेस्ट से है, डर्मोस्कोपी, जिसमें आपकी त्वचा पर किसी भी असामान्य दाग धब्बे को करीब से देखने के लिए एक खास मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग किया जाता है। स्किन पंच बायोप्सी, जो आम बायोप्सी की तरह ही है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसमें एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्ट करके ये पता लगाते हैं कि क्या मेलानोमा लिम्फ नोड्स तक फैल गया है, जो खतरनाक हो सकता है। मेलानोमा की मोटाई मापना, एक खास प्रकार का औजार इस्तेमाल होता है जिससे मेलानोमा की मोटाई का पता लगाते हैं। मेलानोमा जितना मोटा होता है, कैंसर उतनी ही गंभीर होती है। कार्सिनोमा, सार्कोमा, मेलानोमा और लिक्विड कैंसर्स के खास डायग्नोस्टिक टेस्ट के अलावा इमेजिंग टेस्ट के द्वारा भी डायग्नोसिस हो सकता है, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी और पेट स्कैन। और इन सब के इलाज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से होता है। अब सुनिए लिक्विड कैंसर्स के बारे में। लिक्विड कैंसर या ब्लड कैंसर हर साल 12 लाख लोगों को प्रभावित करता है। ज्यादातर ये कैंसर आपके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से शुरू होते हैं, जो आपकी हड्डियों के बीच में मुलायम स्पंज जैसे पदार्थ हैं। मुख्य रूप से ब्लड कैंसर तीन तरह के होते हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। हालांकि ये तीनों कैंसर कुछ मायनों में एक जैसे हैं, लेकिन ये आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं और कुछ का इलाज दूसरों की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। ल्यूकेमिया में ब्लड ऑन बोन मैरो में असामान्य व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। सामान्य ब्लड सेल्स की कमी के कारण शरीर के टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ब्लीडिंग को रोकना या इन्फेक्शन से लड़ना मुश्किल हो जाता है। लिम्फोमा एक तरह का कैंसर है जो आमतौर पर आपके लिम्फ नोड्स या लिम्फैटिक सिस्टम में शुरू होता है और जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। लिम्फोमा के दो प्रकार होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा, जिसमें खास रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ये आमतौर पर गर्दन, छाती या बगल में शुरू होता है और एक तरीके से फैलता है, इसलिए इसका पता लगाना आसान होता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं होती हैं और ये कैंसर शरीर में कहीं भी शुरू हो सकता है। अब माइलोमा क्या है? बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स बनती हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। आप सभी जानते हैं कि एंटीबॉडीज अन्य इन्फेक्शंस को नष्ट करने में मदद करते हैं। जब प्लाज्मा सेल्स में शुरू होता है कैंसर, उसे माइलोमा कहते हैं। मल्टीपल माइलोमा सबसे आम प्रकार है जो शरीर में कई जगहों को प्रभावित करता है। कई कारण हैं जो आपके ब्लड कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ आपका ब्लड कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है, धूम्रपान या सेकेंड हैंड स्मोक, लंबे समय तक जहरीले केमिकल्स जैसे बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड के संपर्क में आना, पहले हुई कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी और जेनेटिक फैक्टर्स, मेडिकल हिस्ट्री और कई ऑटो इम्यून बीमारियां। ब्लड कैंसर के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम लक्षण ये हैं, थकान, सांस लेने में तकलीफ, लिम्फ नोड्स में सूजन, बार बार इन्फेक्शन होना और लगातार बुखार या रात में पसीना आना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, लिवर या स्प्लीन का बढ़ना, बिना किसी वजह से वजन कम होना और असामान्य रूप से चोट के निशान या ब्लीडिंग। ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस कई टेस्ट से होते हैं। कंप्लीट ब्लड सेल काउंट और ब्लड केमिस्ट्री, ये जानने के लिए कि ब्लड सेल्स का लेवल ज्यादा या कम है। बोन मैरो बायोप्सी, इसमें आपके बोन मैरो से एक सैंपल लिया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आपके शरीर में सामान्य और असामान्य ब्लड सेल्स कितने हैं और साथ ही डीएनए में कौन सा बदलाव है जो कैंसर को बढ़ा सकते हैं। और इमेजिंग टेस्ट, ब्लड कैंसर के अन्य इलाज के अलावा एक है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें कीमोथेरेपी देने से पहले आपके शरीर या किसी डोनर से बोन मैरो स्टेम सेल इकट्ठा करते हैं। कीमोथेरेपी के बाद जब कैंसर सेल नष्ट हो जाते हैं तब हेल्दी स्टेम सेल्स दिए जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि कैंसर स्टेजिंग क्या है और इसका क्या महत्व है। हम सभी ने सुना है कि कैंसर के मरीज को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे कितने बीमार हैं। कैंसर स्टेजिंग आपके शरीर में कैंसर के फैलाव को मापने का एक तरीका है, जैसे ट्यूमर का आकार और जिस तेजी से बढ़ रहा है, ट्यूमर की जगह और क्या कैंसर अपनी मूल जगह से बाहर फैल गया है। ऑन्कोलॉजिस्ट इस कैंसर स्टेजिंग का इस्तेमाल बीमारी का पता लगाने, इलाज करने और इलाज के नतीजों को मापने के लिए करते हैं। अब ये अलग अलग स्टेजिंग क्या है। स्टेज जीरो, जब कैंसर सेल्स माइक्रोस्कोप में असामान्य दिखते हैं। स्टेज वन, जब छोटा ट्यूमर एक ही जगह पर सीमित है। स्टेज टू, जब ट्यूमर बड़ा हो गया है और हो सकता है कि आसपास के लिम्फ नोड्स में भी फैल गया हो। स्टेज थ्री, जब ट्यूमर आसपास के टिश्यूज में गहराई तक बढ़ गया हो और आसपास के लिम्फ नोड्स में भी फैल गया है। स्टेज फोर, जब कैंसर दूसरे टिश्यूज और अंगों में फैल गया है। ये सबसे खतरनाक स्टेज है। आम तौर पर स्टेज वन और स्टेज टू का पता लगाकर इलाज किया जा सकता है, लेकिन स्टेज थ्री और खासकर स्टेज फोर का इलाज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए स्क्रीनिंग और शुरुआती दौर में ही पता लगाना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से इन बातों को ध्यान में रखने का आग्रह करती हूँ। श्रोताओं, इंडियन कैंसर सोसाइटी के कुछ जरूरी फोन नंबर नोट करें। कैंसर डिटेक्शन सेंटर, जो 42 बाबर रोड बंगाली मार्केट के पास नई दिल्ली में है, 42 बाबर रोड नियर बंगाली मार्केट न्यू दिल्ली। फोन नंबर है 011-2371-6941, 011-2371-6941। किसी प्रकार की जानकारी या मदद के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी का हेल्पलाइन नंबर है 9910516562, 9910516562। श्रोताओं, आपकी सेहत आपके हाथों में है। खुशी से जिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद। नमस्कार।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक, और इस खास प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की 12वीं वर्षगांठ है, और इस अवसर पर हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं स्टूडियो में। हमारे मेहमान हैं श्री विवेक गुप्ता जी, आप निदेशक वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार में हैं। सर, आपका एफएम रेनबो पर बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं श्री श्याम सुंदर सिंह, आप जीएम हैं पंजाब नेशनल बैंक।
2: धन्यवाद मैम
0: जी। सर, आज है बहुत खास अवसर क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना की 12वीं वर्षगांठ है। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 12 वर्षों की यात्रा में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भारत में फाइनेंशियल तरीके से जो है वो किस तरह के बदलाव आए हैं?
1: जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जनधन योजना जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, वित्तीय समावेशन राष्ट्रीय मिशन के रूप में अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। So, इसका उद्देश्य जो था वो था कि प्रत्येक वयस्क जो भी है देश में उनको कम से कम एक बैंक खाता उनके पास हो, वित्तीय साक्षरता उनको मिले और सामाजिक सुरक्षा कवर उनको दिया जाए। सो जो पीएमजेडीवाई, जिसको प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई कहते हैं हम, उससे ना सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देने का एक प्रक्रिया है बल्कि लोगों को ऋण, बीमा, पेंशन और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं से जोड़ा गया है। आज देखा जाए तो 59 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते हैं जिनमें 3,17,000 करोड़ रुपया जमा है और 41 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड उनको दिए गए
0: जी। सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे होगा क्योंकि आप पीएनबी में जनरल मैनेजर हैं, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का महत्व क्या है और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकिंग सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पीएनबी की क्या भूमिका है?
2: जी, मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का को कैसे कंसीव किया गया था। उसमें यह था कि जिस समय 2014 में ये योजना आया था उस समय फाइनेंशियल इंक्लूसन का जो कंसेप्ट है वो तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी दशकों से किसी न किसी रूप में चला रही थी, बट एक सोच था कि जो भारत के लोग जो बैंकिंग सेवाओं से फॉर्मली नहीं जुड़े हुए हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव कैसे जोड़ा जाए, और उस संदर्भ में ये प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाया गया था जिसमें 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और इस 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स में उनके सारे फाइनेंशियल नीड को इसमें कैप्चर किया गया। तो जहां तक पीएनबी का सवाल है, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओरिजिनली ये इनवाइसेज किया गया था कि 7.5 करोड़ अकाउंट खोलने हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स, बट जैसा कि अभी डीएफएस के डायरेक्टर साहब ने बताया 59 करोड़ अकाउंट ऑलरेडी खुल चुके हैं। अच्छा, आप अभी आपने सवाल किया कि पीएनबी का क्या है, तो पीएनबी एज ए बैंक इसके सभी पिलर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और हम लोगों ने हमारे बैंक और हमारे स्पॉन्सर्ड आरआरबी ने मिलकर के हमने ऑलरेडी करीब 9 करोड़ खाते खोले हैं इसमें, और खाते खोले हैं उससे एसोसिएटेड सुविधाएं जैसे कि डेबिट कार्ड, सुरक्षा बीमा योजना इत्यादि इत्यादि जो इसके जो अदर्स पिलर्स वाली सेवाएं हैं वो सब भी हमने प्रोवाइड किया है
0: जी। दोस्तों, आज है 12वीं वर्षगांठ प्रधानमंत्री जनधन योजना की, इस बारे में अपने दोनों खास अतिथियों से बहुत सारी जानकारी लेंगे। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, और सर की पसंद के गीत हम सुनवाते रहेंगे इस प्रोग्राम में। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

0: जी, हमने भी देखी है और आज प्रोग्राम चल रहा है। बहुत ही खास प्रोग्राम है क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना की 12वीं वर्षगांठ है और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान श्री विवेक गुप्ता जी जो कि निदेशक हैं वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार में, और श्याम सुंदर सिंह जीएम पंजाब नेशनल बैंक हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। और सर विवेक गुप्ता सर, आपसे ये सवाल है कि जब ये योजना शुरू हुई थी तो आज की स्थिति में अगर तुलना करें तो आम नागरिक जो है वो बैंकिंग तक किस तरह से पहुँच पाया है बहुत ही सरलता से?
1: जी, अगर हम देखें सिर्फ तो जैसा जीएम साहब ने बताया अभी कि किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई स्कीम आती रहती थी, पर इस स्कीम ने इतने लोगों को, 59 करोड़ लोगों को एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा है। अगर हम देखें तो पिछले एक दशक में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों में 4 गुना वृद्धि हुई है। और अगर हम देखें तो इसमें 46 करोड़ जो अकाउंट हैं, जो खाते हैं, वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। तो जिन लोगों को फॉर्मल बैंकिंग से कोई नाता नहीं था, उन लोगों को इस योजना ने फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। ये सिर्फ एक खाता नहीं है, ये आपकी पहचान है, आर्थिक सुरक्षा है, आपकी सामाजिक एक स्थिति को ये उजागर करता है। महिला लाभार्थी 33 करोड़ से ज़्यादा इसमें आज की डेट में है, और इसमें जमा राशि 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, 20 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले अगर एक दशक में हम देखें।
0: जी सर, अभी आप ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जब ये योजना लागू होने को थी तो उसमें आपकी भूमिका थी, तो कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: हमारी भूमिका मैम कुछ इस प्रकार थी कि 2013 में डीबीटी लॉन्च हुआ था। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है कि उसमें तीन उसके जो पार्ट होते हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट जहां से फंड जाना होता है, दूसरा बेनिफिशियरी और तीसरा बैंक। तो डीबीटी की का स्टार्ट हुआ था मई 2013 में, बट किसी वजह से उसको फिर से बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेज आ रहे थे। तो उसके बाद में ये जो सरकार है, ये जब सरकार आई तो सरकार का एक परिकल्पना था कि फाइनेंशियल इंक्लूसन को हमें नए सिरे से देखना चाहिए। तो उन दिनों हमारा डीएफएस में आना जाना होता था क्योंकि मेजर बैंक है हमारा जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो हमें बोला गया कि आप इस पे कुछ काम करिए। तो हमने ग्लोबली पिछले 50 साल में अक्रॉस द ग्लोब, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशियन कंट्री, यूरोप में सब जगह फाइनेंशियल इंक्लूसन में क्या चीज़ें हुई थी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है और क्या हमें करना चाहिए सो दैट कि फाइनेंशियल इंक्लूसन के सारे डायमेंशंस को हम कैप्चर करें। तो इसके लिए हमने कंसेप्ट पेपर लिखा था, जो कंसेप्ट

0: पर डीएफएस के थ्रू और उच्च अधिकारियों को गया, तो प्रिंसिपली वो अप्रूव हुआ। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और फाइनली वो कल्मिनेट हुआ 28 अगस्त 2014 को, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इस उस बुकलेट को और पूरे स्कीम को लॉन्च किया विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली।
1: जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो आपने साझा की। सर, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जनधन योजना का सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब परिवारों और बैंकिंग से वंचित लोगों पर किस रूप में पड़ा है?
2: जी, जनधन खाता जो आपको एक बेसिक बैंकिंग सुविधाएं देता है, तो वो सुविधाएं ये है कि किसी भी न्यूनतम राशि को रखने की इसमें जरूरत नहीं होती है। आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। बैंक मित्र और हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं, दूर दराज के गांव तक उन्होंने बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाया है। 78% मैंने कहा, जैसे ये ग्रामीण शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। जैसा अभी जीएम साहब ने बताया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो भी होता है वो लाभार्थियों तक डायरेक्ट उनके खातों में पहुंचता है। रुपे कार्ड, बीमा, पेंशन, इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। महिलाओं को स्पेशली इससे इतना ज़्यादा लाभ हुआ है कि उन्हें एक ये दूर की सेवा से बदल कर ये बचत, कल्याण और वित्तीय सुरक्षा की एक स्कीम बन गई है,
1: जी
2: जिसने महिलाओं को और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी दी है।
1: बिल्कुल। जहाँ पहले इस तरह से लोगों में जागरूकता नहीं होती थी कि हम भी अपना खाता खोलें, हम भी कुछ बचत करें।
2: जी, असंगठित संस्थानों से निकलकर वो एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आए हैं, जहाँ जो कि इसका मेन उद्देश्य था।
1: जी सर, आप पीएनबी में जीएम हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद जो खाता खुले उसके बाद ग्राहकों के बैंकिंग व्यवहार में किस तरह से सकारात्मक बदलाव आए हैं?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बदलाव ऐसे है कि जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना जिस समय बना था, उसमें 54% के आसपास में इंडिया में हाउस होल्ड थे जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल से जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 43% फैमिली के पास में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था। तो एक तो ज़्यादातर उनका लेन देन कैश में होता था और वो कैश रखते थे जो रिस्की प्रपोजिशन भी था, उसके अलावा उस पर उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता था। उस पैसे को कहीं से मंगाना हो, उनको रेमिटेंस या कहीं भेजना हो, तो ये सब चीज़ें दिक्कतें आती थी। तो इन सब चीज जब बैंक अकाउंट खुले, तो सबसे पहले क्या है कि बैंक अकाउंट के अंदर उनको डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड दिया गया। रुपए कार्ड में तीन फीचर है। एक तो 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, पहले 1 लाख था जो बढ़ के 2 लाख हो गया, नंबर वन। नंबर टू, उन अकाउंट्स में कुछ सर्टेन शर्तों के हिसाब से उनको 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया, जिसको वो अपने डे टू डे रोजमर्रा कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं तो यूज किया जा सकता है। उसको बढ़ा के बाद में 10,000 कर दिए गए। तो एक तो उनके अंदर बचत की आदत आई, एक फॉर्मली बैंक से जुड़े, इंश्योरेंस का कवरेज आया, प्लस जिन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हुआ तो बैंक से उनके ट्रांजैक्शन बिहेवियर के हिसाब से उनको बैंक से ऋण प्राप्त हुए, जिससे लोगों ने छोटे मोटे व्यवसाय किए। अब तो जैसे एक छोटा सा देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने सुना ही होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री से 11 लाख करोड़ का फाइनेंस हो चुका है, 11 लाख करोड़। और उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं, उनका संख्या करीब 3-4 करोड़ के आसपास है जो इससे जुड़ी हुई है। मुद्रा लोन जैसे है उसमें हुआ है। उसके अलावा जो है, इन खातों से जुड़ने से फायदा क्या हुआ, जो बेनिफिशियरी थे उनको कहीं नहीं जाना, अब सीधे उनके अकाउंट में पैसा आ गया। अकाउंट में जब पैसा आ गया तो उस पैसे को डेबिट कार्ड के थ्रू वो एटीएम से निकाल सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं, बीसी एजेंट के आउटलेट से निकाल सकते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आपको पता होगा, वहां से भी निकाल सकते हैं। और उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए जैसे उनको अटल पेंशन योजना बहुत अच्छा स्कीम है, उसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है और उसका जो प्रीमियम है मात्र 436 रुपया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आप समझ लीजिए केवल 20 रुपये दे करके साल में आपको 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है या अदर डिसेबिलिटी वगैरह में भी सर्टेन अमाउंट मिलता है। तो लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है मैम इस स्कीम की वजह से।
1: जी सर, आपसे जानना चाहेंगे विवेक सर कि जनधन खाते के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के बाद जो लाभार्थी हैं उनमें कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं।
2: जी इसमें से जो काफी सारी सुविधाएं थी वो तो जीएम साहब ने बता ही दी हैं, जैसे कि उन्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है 10,000 रुपए की, रुपे कार्ड जो उसको मिलता है उन पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस उनको मिलता है, कवर मिलता है अगर किसी दुर्घटना का वो शिकार होते हैं। उसके अलावा ये उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इसमें ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये एक नींव बनाती है, आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनाती है, आपको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ती है, जिससे अगर आपने कभी कोई ऋण लेना हो जैसे मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना किसी कोलेटरल के आपने लोन लेना हो वो आपको सुविधाएं देती है। और ये एक महिला सशक्तिकरण और एक ये हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में सशक्तिकरण का एक मेजर सोर्स है।
1: जी तो बहुत सारी बातें हम जानेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस तरह से हमें लाभान्वित कर रही है इस बारे में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की 12वीं वर्षगांठ है। और सर की ही पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। मैं आपके साथ कंचन।

0: सन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
6: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
5: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
8: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: दोस्तों, ये है आपका आकाशवाणी एफएम रेनबो, 24 घंटे आपके साथ, आपका साथी, आपका हमसफर। और आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की 12वीं वर्षगांठ है और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं श्री विवेक गुप्ता जी, निदेशक वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार, और जीएम पंजाब नेशनल बैंक श्री श्याम सुंदर सिंह सर। सर, बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अक्सर फाइनेंस के मामले में लोगों की जानकारी जो होती है ना, बड़ी आधी अधूरी सी, कच्ची पक्की सी होती है। तो बहुत सारी सटीक जानकारी जो है आप लोगों के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंच रही है। तो विवेक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनधन योजना में देश में वित्तीय साक्षरता जो है उसे बढ़ाने में कितना योगदान दिया है इस योजना ने।
1: जी, जनधन योजना जो है वो वित्तीय साक्षरता केंद्र जो होते हैं, बैंक्स में हर जगह रहते हैं, बहुत से जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं जिससे बैंकिंग, बचत, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान या और भी कोई वित्तीय सुरक्षा स्कीम या वित्तीय सेवाएं होती हैं उसके बारे में इन स्कीम्स के माध्यम से बताया जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ नंबर्स में या अंकों में नहीं मापा जा सकता। ये चीज़ सिर्फ बैंक खाता खोलना ही पर्याप्त चीज़ नहीं है, इसका सक्रिय उपयोग करना, वित्तीय जो विभिन्न वित्तीय उत्पाद हैं उनको समझना और वित्तीय निर्णय लेना, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को कम पता होता है, तो जितना हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का उतना हम उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सिर्फ बैंक खाता होना ही नहीं बल्कि बैंकिंग सेवाओं का आत्मविश्वास और जिम्मेदारी से उपयोग करना ये स्कीम का उद्देश्य है।
0: जी सर, बहुत सारे खाता जो है वो खुल जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें चुनौतियां भी आती होंगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो है किस तरह की चुनौतियां हैं।
2: जी

0: एक थोड़ा मैं सप्लीमेंट करूंगा। अभी डायरेक्टर सर ने जो बोला था, बोले फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपने सवाल
1: जी
0: किया था ना, तो जनधन का जो स्कीम था उसका पार्ट वन, फेज वन और फेज टू दो थे ब्रॉडली। लेकिन जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाला जो पिलर है, इट इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस।
1: जी
0: तो इसमें आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासतौर पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नाबार्ड, सारे बैंक्स मिल करके कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो जनधन के अकाउंट होल्डर हैं या जो अभी भी लोग हैं जो अकाउंट होल्डर नहीं हैं, उनको सेफ और सिक्योर बैंकिंग, बैंकिंग के क्या क्या लाभ हैं उसके में कॉन्टिन्यूस काम चल रहा है। और ये बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस है जिसमें जो CFL है, FLC है, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है, बैंक के ट्रेनिंग सेंटर्स है, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है, RCT है, सभी मिलके काम कर रहे हैं।
1: जी
0: दूसरा आपका सवाल था, अभी जो मेरे लिए जो सवाल था वो था कि चैलेंजेस क्या है। तो देखिए, पहला चैलेंज तो क्या है कि जो इसका जो पहला पिलर था कि इंडिया के हर कॉर्नर में, हर कोने में, सभी लोगों के पास में बैंकिंग का आउटलेट है या नहीं है। तो अभी तो बैंकिंग का आउटलेट ऑलमोस्ट 100% सैचुरेट हो गया है, बट कई लोकेशंस पे अभी थोड़े कनेक्टिविटी का इशू होने की वजह से, दूर दराज का लोकेशन होने से कनेक्टिविटी वाले इशूज थोड़े रहते हैं। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, अकाउंट खुल गए हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ, चूंकि ये जीरो बैलेंस का अकाउंट है, डेबिट कार्ड दिया जाता है, तो कई अकाउंट्स में फंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लोगों के पास इनकम नहीं है, सेविंग नहीं है, तो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दिस नंबर हैज रिड्यूस्ड, ये बहुत कम हो गया। किसी जमाने में ये 60-70% होता था, अब
1: जी
0: 10% के नीचे है। और कई लोग ये है कि अपना एक अकाउंट खोलने के बाद में रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, तो जिसको इनऑपरेटिव अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट कहते हैं, इसका परसेंटेज भी सतत कम हो रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बैंक्स, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, भी जो बीसी वाले कॉरपोरेट बीसी के कंपनी है, सब मिल करके इन सब चैलेंजेस के ऊपर में लगातार काम कर रहे हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि चैलेंजेस हैं, लेकिन उसका निराकरण भी लगातार हो रहा है। तो जो चैलेंजेस आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले थे, उसके कंपेरिजन में आज बहुत कम है, और जो कुछ भी है वो आने वाले समय में सुदृढ़ हो जाएंगे।
1: जी बहुत खूब सर विवेक सर
0: जी
1: आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल भुगतान जो है वो बहुत आसान हो गया है, तो इसके डिजिटल भुगतान के विस्तार से खाता धारकों के लिए बैंकिंग को किस तरह से और भी आसान बनाया गया है?
2: जैसा अभी आपने कहा कि डिजिटल भुगतान जो है आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है।
1: जी
2: कहीं भी हम जाएं, हम यूपीआई से पेमेंट करते
1: बिल्कुल
2: हैं, डिजिटल भुगतान के अन्य माध्यमों से हम करते हैं। तो पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसके लिए आपका अकाउंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी
2: तो एक जो नींव बनाई गई जनधन द्वारा, जनधन अकाउंट के द्वारा, उस पे हम बाकी सारी चीज़ों पे आगे काम कर पाए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि यूपीआई ने बैंकिंग को तेज, आसान और सुविधाजनक बना दिया है, खासकर ग्रामीण लोगों को और उन लोगों को जिनकी आय इतनी अधिक नहीं है। तो खाकता आज आपको किसी भी बैंक में नहीं जाना पड़ता। जो लोग थोड़े ज्यादा उम्र के हैं उनको याद होगा कि कुछ भी पैसे निकालने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। आज के युवा शायद उस चीज को इतनी इमेजिन नहीं कर पाएंगे,
1: जी
2: क्योंकि एकदम से आपको मोबाइल फोन के यूज से पेमेंट हो जाती है, आप
1: जी
2: किसी से
1: और कुछ
2: पैसे मांग
1: ज्यादा
2: पाते हैं।
1: खर्चीले भी हो गए हैं इस वजह से युवा, कि वो फोन से पेमेंट करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि अकाउंट में कितने पैसे हैं।
2: हाँ, जरूर होता
1: जी
2: है,
1: जी
2: परंतु उनके पास सुविधा है तो उसका वो यूज करते हैं
1: बिल्कुल
2: ना। आई एम श्योर एक आधे ऐसे के बाद वो भी ज्यादा जिम्मेदार आगे
1: बिल्कुल
2: बिहेव
1: हो
2: करना शुरू
1: जाएंगे
2: करते
1: बिल्कुल।
2: हैं।
1: सर श्याम सुंदर सर आपसे जानना चाहेंगे कि पीएनबी जो है वो बैंकिंग सेवाओं का नियमित उपयोग करने के लिए किस तरह से खाता धारकों को जागरूक करता है?
0: जी अभी आपके पिछले प्रश्न में मैंने बताया था, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज भी है और ऑनगोइंग बेसिस पे हम करते भी हैं। जैसे एक तो हमारी ब्रांचेज होती हैं, तो ब्रांचेज में हम कस्टमर्स के साथ मीटिंग रेगुलर करते हैं और आउटरीच प्रोग्राम करते हैं। आउटरीच प्रोग्राम में हम बैंक के उत्पाद के

0: बारे में और जो सिक्योरिटी फीचर्स जो उनको सुरक्षित बैंकिंग करने के लिए जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनके बारे में बताते हैं।
1: जी
0: दूसरा हमारा चैनल है जिसको CFL या FLC बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स। ये नाबार्ड के साथ मिल करके हमारे पैन इंडिया में हजारों इस तरह के सेंटर्स हैं, जो सेंटर्स का एक मुख्य काम है लोगों को जागरूक करना,
1: जी
0: वो करते रहते हैं। हमारे बैंक के पैन इंडिया में 78 RCT है और 12 ये FTC है, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ भी हम लोगों को बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग उत्पाद के बारे में, बैंक से किस प्रकार से वो ऋण ले सकते हैं, खातों को कैसे चला सकते हैं, इस प्रकार से हम उनको करते हैं। तो हमारे बहुत सारे चैनल हैं और ये कार्यक्रम हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी को डिसेमिनेट करने का और लोगों को बताने का, सुरक्षित बैंकिंग करने का। और हमारे टोल फ्री नंबर ही है, टोल फ्री नंबर भी हमारे ब्रांचेज में डिस्प्लेड होते हैं। किसी कस्टमर को किसी भी क्षण कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे टोल फ्री नंबर से बात करके अपने अकाउंट के बारे में वो जानना चाहे तो वो जान सकता
1: जी
0: है।
1: सर, अभी हम बैंकिंग फ्रॉड के बारे में भी बात कर रहे थे कि लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, तो किस तरह से लोग सुरक्षित लेन देन करें ताकि उनका जो धन है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है और आज के संदर्भ में इस बात का बहुत ज़्यादा रिलीवेंस भी है। जैसा कि आप डायरेक्टर साहब से बात करी थी तो उन्होंने बताया भी। एक तो क्या होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है, बट हमारे लिए रिस्क भी बढ़ जाता है, और ये बात फाइनेंशियल सेक्टर में भी लागू होता है। और इस कारण से ये फ्रॉड के ऊपर में बैंक बहुत काम कर रही है, RBI बहुत काम कर रही है, लेकिन फ्रॉड बढ़ भी बहुत गया है। जनरली ये देखा गया है कि जो फ्रॉड हो रहे हैं उसमें फ्रॉड में कस्टमर के लेवल पे जो सावधानी होनी चाहिए उसकी थोड़ी कमी है, उनके अवेयरनेस की कमी है।
1: बिल्कुल।
0: तीन चार पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। जैसे नंबर वन, जैसे अपना OTP कभी किसी हालत में किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, और कभी भी ऑथोराइज्ड बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कभी भी किसी कस्टमर को फोन करके कभी नहीं बोला जाता है कि आप अपना OTP हमें दे दीजिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। लोगों को खासतौर पे बहुत बुजुर्ग लोग हैं, अपने नियर एंड डियर को भी उसको अपना OTP या आधार, ये डेबिट कार्ड, ATM कार्ड देने से बचना चाहिए, नंबर वन। दूसरा है कि कोई मेल आपके पास में आता है जिसका कि उसका सोर्स आपको ठीक से पता नहीं है, उस मेल को कभी मत क्लिक करिए। कोई भी फंड रिसीव करने के लिए आपको कोई QR कोड भेजता है तो जनरली उससे बचना चाहिए, वो सब फ्रॉडलेंट लोग होते हैं। तो ये सब मेजर मेजर कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे अभी कस्टमर को डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। और किसी से बात करने में, जैसे बैंकिंग चैनल से कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो उसको बात करने पे उसका सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आगे का कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना
1: जी।
0: चाहिए।
1: सर विवेक सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं आने वाले सालों के लिए?
2: हम अभी जो हमारा अभी तक का डिस्कशन हुआ है उसमें जो हमारा है बेसिकली, GM साहब ने भी अभी बताया कि काफ़ी ऐसे निष्क्रिय खाते हैं जिनमें लेन देन कम होता है, तो उन अकाउंट्स को सक्रिय करने के लिए, ज़्यादा उनका उपयोग करने के लिए आगे हम कदम ले रहे हैं। जो विभिन्न स्कीम्स हैं, चाहे वो बीमा योजना है या पेंशन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी योजनाओं के माध्यम से नामांकन करना, उसमें उनकी नॉमिनेशन के लिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना, निरंतर ग्राहक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी फॉर्म में हम सभी साइबर फ्रॉड का कभी ना कभी शिकार ज़रूर हुए हैं। अभी आपसे बातचीत में आपने बताया आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सभी के साथ हुआ है, तो हम औरों के एग्जाम्पल से ही समझकर उससे सीख लें। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बैंक खाता खोलने से आगे बढ़कर इसे हम सक्रिय और सार्थक वित्तीय समावेशन की ओर ले जाएं, ये हमारा एक उद्देश्य है।
1: जी सर, 12वीं वर्षगांठ है प्रधानमंत्री जनधन योजना की, क्या संदेश हमारे श्रोताओं को देंगे?
0: मैं सिंपल में ऐसा बोलना चाहता हूं कि जो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये स्कीम है बैंकिंग फॉर अनबैंक्ड, जो लोग बैंकिंग की सेवाओं से वंचित थे उनको बैंकिंग में शामिल किया जाना। अब ये बैंकिंग के साथ में फॉर्मली सिस्टम से जुड़ चुके हैं, तो अब उन्नत बैंकिंग क्या होना होता है और उससे अपने आर्थिक जीवन को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में उन्नत सर्विस

0: ले, डिसिप्लिन के साथ ले, और बैंकिंग करते करते में सिक्योरिटी पे, फीचर्स पे ध्यान रखें और अपने जीवन को और आगे लेकर के जाएं। ये हमारा संदेश रहेगा
1: जी। विवेक सर, आप
0: जी।
1: क्या संदेश देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है जिंदगी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती भी हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और इतने सारे खाता धारक हैं, तो क्या संदेश इस अवसर पर?
2: सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि जनधन योजना एक खाता नहीं है, ये आपका सुरक्षा है, ये आपके आर्थिक अवसर का एक प्रवेश द्वार है। ये आपको सिर्फ एक खाता नहीं खोलता है, आपको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है। चाहे आपको आगे ऋण लेने की जरूरत हो मुद्रा योजना के लिए, जहां पे आप कलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं, चाहे आपको बीमा की जरूरत है, सुरक्षा बीमा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस चाहिए, या पेंशन योजना, इन किसी भी तरह से जुड़ने के लिए, तो इनके सुरक्षित उपयोग से एंड इनके माध्यम से सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि लोग वित्तीय रूप से जागरूक हों, सशक्त हों और आत्मविश्वास से वो अपने खातों को संचालित करें।
1: जी सर, इस अवसर पर आप लोग आए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप आए, श्रोताओं के साथ इतनी खास जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: बहुत बहुत
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: मैम।
1: जी
0: और मैं 59 करोड़ खाता धारकों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम 2047 में जब विकसित राष्ट्र बनने के बारे में जा रहे हैं, तो इन 59 करोड़ लोगों का बहुत अच्छा रोल है, तो अपने रोल को इन्हांस रूप में वो निभाएं कि हम देश को अगले आने वाले कुछ वर्षों में पूरे विश्व में एक अग्रणी देश के रूप में देख सकें। धन्यवाद।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, और अगला प्रोग्राम लेकर हमारी दोस्त रेशमा आ चुकी हैं, जो कि होगा आशियाना। दीजिए विदा मुझे, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक दीजिए विदा मुझे। अपने बुजुर्गों का बहुत अधिक ख्याल रखिए। नमस्कार।

और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। नेपाल के विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 392 हुई। आपदा में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में

290 भारतीय पर्यटक भी शामिल। भारत ने नेपाल से अपने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने कहा, नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। रक्षाबंधन के त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनके खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्री सीतारमण शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 तलाशी अभियानों में 76 किलोग्राम मेथामफेटामाइन गोलियां जब्त की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर अमरीका अपना रुख बदलता है और दबाव बनाना छोड़ देता है तो अमरीका के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में मूसलाधार बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच 2रा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से श्रृंखला जीती और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है आशियाना। तो चलिए आशियाना की शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन के साथ। जी हाँ, आज रक्षाबंधन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बहनों की जो आंखें हैं उसमें अपने भाइयों के लिए ढेर सारा प्यार है, और भाई तो बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि खुशी के साथ आज का त्योहार मना रहे हैं। आखिरकार उनकी बहनें उनके पास आ रही हैं, अपना प्यार लुटा रही हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत बंधन के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आशियाना की।

कितना प्यारा गीत है ना। और वाकई जब भी इस गीत को सुनते हैं तो लगता है कि रिश्तों की भीड़ में भाई बहन का रिश्ता कुछ खास होता है। कभी नोकझोंक, कभी शिकायतें, तो कभी बिना कहे एक दूसरे का साथ। और रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि उस भरोसे का नाम है जो हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा करता है। वाकई आज का दिन बेहद खास है सभी भाई और बहनों के लिए, तो आप सबको रक्षाबंधन की मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज प्रोग्राम आशियाना, जिसमें हम बात करते हैं कैसी डेस्टिनेशन की जो बेहद खूबसूरत हो, दिल्ली के भी करीब हो, तो चलिए जरा सोचिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों से आती ठंडी हवा, बादलों की चादर और दूर तक फैली हुई खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें प्रकृति की अपनी एक आवाज सुनाई देती हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं आपके साथ उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ी वादियों में बसे लेंस टाउन की। समुद्र तल से करीब 1700 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ अपने शांत और सुकून भरे माहौल के लिए जाना जाता है। और जो लोग शांति प्रिय होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते, सिर्फ प्रकृति की गोद में थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें लेंस टाउन एक बार जरूर जाना चाहिए। कुछ और बातें करूंगी आपके साथ, फिलहाल ये गीत सुनते हैं

0: अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आकाशवाणी का इस वक्त आप सुन रहे हैं रेनबो चैनल और हम बात कर रहे हैं डेस्टिनेशन। जी हाँ, उस डेस्टिनेशन की आशियाने में बात हो रही है जो बेहद खूबसूरत है और जिसे हम लेंस टाउन के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि लेंस टाउन में रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर हम उसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो कोटद्वार है, और अगर आप दिल्ली से कोटद्वार तक जाएंगे ट्रेन से तो वही बड़ा

0: अच्छा आपको एक सफर लगेगा। और साथ में हम तो बस इतना यहाँ ये कह सकते हैं कि दिल्ली की भागदौड़ से निकलकर अगर पहाड़ों की शांत वादियों का आप रुख करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो सड़क आपको कोटद्वार के रास्ते सीधा लेंस टाउन तक ले जाती है और रेल का सफर भी कोटद्वार तक जाकर आगे पहाड़ी रास्ते में तब्दील हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे लगता है आपको ज़रूर जाना चाहिए। और कोटद्वार से आपको टैक्सी या फिर बस लेकर आप लेंस टाउन तक जा सकते हैं। वहाँ से कोई तकरीबन 40 किलोमीटर का, जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये रास्ता हो सकता है। आप जाएं और आपको बेहद अच्छा वहाँ जाकर एहसास हो सकता है अगर आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हर मोड़ पर आपको एक नया दृश्य वहाँ सामने आता है और घुमावदार सड़कें, देवदार के जंगल और पहाड़ी ढलानों पर बेहद एक खूबसूरत दुनिया वहाँ आपको नज़र आ सकती है। और अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो लेंस टाउन आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर घूमना, प्रकृति के बीच ट्रैकिंग करना अगर आपको पसंद है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक नज़ारे आपको यहाँ कई जगह से देखने को मिल सकते हैं। या मतलब ये कह सकते हैं यहाँ हर अनुभव अपने आप में एक यादगार बन जाता है और यहाँ का मौसम बेहद खूबसूरत लगता है। और यकीन मानिए, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको भी बेहद अच्छा एहसास होगा, क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी और शांति वहाँ इतनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी वहाँ आपको नज़र नहीं आएंगे, आप वहाँ सड़कों पर बहुत अच्छे से वॉक कर सकते हैं और साथ साथ अपनी सेहत का भी आपको ख्याल तो आप रखते ही हैं, लेकिन वहाँ जाकर आपको और अच्छा एहसास हो सकता है। तो खूबसूरत मौसम का अगर आपको मज़ा लेना है तो आपको वहाँ, मुझे लगता है, एक बार ज़रूर जाना चाहिए।
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

और जनाब लैंसडाउन की शांत हरी भरी वादियों और चीड़ देवदार के जंगलों को पीछे छोड़ते हुए सफर को चलिए आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और प्रकृति का एक और रोमांचक रूप सामने आता है। जी हाँ, रास्ता हमें ले जाता है वतनवासा की ओर, जहाँ पहाड़ों की खामोशी धीरे धीरे घने जंगलों की जो सरसराहट है उसमें बदल जाती है। यही इलाका कालागढ़ टाइगर रिजर्व और सोना नदी जोन की तरफ जाने का रास्ता है। जंगल की पहाड़ियों और हरियाली के बीच सफारी का रोमांच इस सफर को और ज्यादा खास बना देता है। और अगर आप रिज वाले ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ते हैं, जो रिज एरिया कहलाता है, तो सामने खुलते पहाड़, नज़ारे, गहरी घाटियां और दूर तक फैली हरियाली, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महज ये एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने का एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। और यानी एक तरफ लैंसडाउन की ठंडी हवा और साथ में कह सकते हैं कि वहाँ की जो एक विरासत है, जो एक लंबी कहानी है, जो वक्त नहीं है वरना मैं आपको ज़रूर सुना देती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको बहुत रोमांच लगेगा और आप ज़रूर जाना चाहेंगे। तो लैंसडाउन की ठंडी हवा और खूबसूरत पहाड़ियों की तरफ जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वतनवासा नज़र आता है। वतनवासा के घने जंगल और वन्य जीवन, एक ही सफ़र में पहाड़, जंगल और रोमांच, यानी सब कुछ। अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई हम तो आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। फ़िलहाल अब मुझे लगता है एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, क्योंकि जनाब गीत बहुत ज़रूरी है, संगीत साथ हो तो जो एक सफ़र का मज़ा है वो दोबाला हो जाता है और सफ़र अपने आप में यादगार बन जाता है। तो हमने बहुत कोशिश की कि इस छोटे से सफ़र में आपको लैंसडाउन और वतनवासा के बारे में बता सकें, क्योंकि जब भी आप अगर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और अब आप बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि थोड़ी देर के बाद आपको हम एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनवाएंगे NCERT का, तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा क्योंकि वो भी बेहद अच्छा कार्यक्रम होगा और जानकारी से भरपूर होगा। हम सबको जीवन में जहाँ रोमांच ज़रूरी है वहीं हमें जानकारी भी ज़रूरी होती है। तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत मेरे पास है जो मैं आप तक इस वक्त पहुँचा रही हूँ और हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे मिल जाऊंगी। तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और जिंदगी में ऐसे ही घूमने फिरने का जब भी मौका लगे तो आपको जरूर जाना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्य

0: नेता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
0: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और CIT NCERT को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
0: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
0: जी
1: तो बिमलेश जी, शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
0: जी,
1: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
0: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
1: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
1: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
0: जी,
1: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
0: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
1: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
0: जी,
1: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
0: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
1: जी हाँ, तो विमलेश जी, जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
0: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
1: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
0: जी,
1: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
0: जी,
1: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
0: जी,
1: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
0: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी,
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
0: जी,
1: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता।
0: जी,
1: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
0: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
1: जी।
0: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार

0: जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए,
0: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
1: क्या सीख विमलेश जी?
0: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता
1: जी।
0: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे, लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
1: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
1: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
4: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
5: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
4: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत है और ना कोई दूसरा काम।
5: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं
4: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
4: जी पिताजी।
3: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
4: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया,
6: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
4: हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
6: भला वो क्या? चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को, स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
4: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
2: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
6: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
7: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेन्द्र?
8: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
6: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
0: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
6: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
7: हाँ, आपका ऊंट खो गया है ना?
8: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
9: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
6: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
9: है?
6: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
9: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
4: नहीं नहीं,
9: अरे
4: नहीं,
9: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
4: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
9: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
4: नहीं
9: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
6: वो
9: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
4: लेकिन
9: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
4: क्या?
9: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
0: भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
9: मुझे कुछ नहीं सुनना।
4: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
9: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, आप चलो मेरे आगे, चलो चलो चलो।
0: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
9: अब तुम सब राजा के पास चलो।
4: महाशय, महाशय,
9: चलो तो काट के रख दूंगा। चलो।
10: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
11: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
3: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
10: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
3: तुम लोगों को कुछ कहना है?
12: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
3: अच्छा, तो ये बात है
12: जी।
3: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
13: जी। महाराज।
0: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
3: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
6: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
4: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
0: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
14: खाइए खाइए, लीजिए।
6: महाराज,
14: धन्यवाद।
0: फिर पूछा,
3: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
12: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
7: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
11: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
3: वाह, बहुत खूब।
0: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
13: तो अब ये बताओ कि तुमने

0: ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
1: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
0: क्या बात है
2: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
0: अच्छा,
2: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
0: जी बहुत खूब, लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
3: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
0: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
4: धन्यवाद महाराज।
2: महाराज, शुक्रिया महाराज।
0: मैं सचमुच चकित हूँ।
4: जी महाराज।
5: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला, सरला बेटी, सरला बेटी।
3: अरे बाबूजी, आप
2: कहाँ खोई हो बेटी? जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूँ?
3: जी
2: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
2: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
2: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
2: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
3: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
2: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री

0: शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
1: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
2: धन्यवाद सर।
1: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
3: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
1: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
4: सर, मैं बताऊं सर?
1: हाँ, कहो।
4: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
1: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
4: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
1: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
5: हाँ, जी सही बात।
1: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
5: सर, मैं बताऊँ?
1: हाँ, सरला तुम बताओ।
5: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
1: बहुत अच्छे सरला।
5: धन्यवाद सर।
1: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
5: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
6: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
7: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
5: I'm so excited.
7: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: 랜딩 피.
1: 정말.
2: 정말.
3: 수고하셨습니다.
2: 땡큐.
3: 아, 기쁜 날 체드릴게요, 세자리. 감사합니다.

0: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
1: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
0: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
1: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
0: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
1: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
0: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
2: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
0: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
3: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आदाब एंड गुड आफ्टरनून। स्वागत करती हूं आपका, मैं यानी नाज, आपके पसंदीदा शो नाम है जिसका रेडियो डॉक्टर, जहां डिस्कस होता है आपकी सेहत से जुड़ा हर जरूरी मैटर। दोस्तों, कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन इसके लिए क्या करें क्या ना करें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। कैसे सुधारें अपना बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और लाएं सुधार अपने डाइट प्लान में भी, हमें तफसील से बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर टी दिवाकर राव,

0: आज है हमारे साथ, जो कि CGHS में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और साथ ही आयुर्वेदिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार मैडम।
0: तो आयुर्वेद में छिपे सेहत के मंत्रा को हम समझें डॉक्टर दिवाकर सर से, उससे पहले अपने लिसनर्स को याद दिला दें कि प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, जिसे आप सुनते हैं हर दोपहर 3 बजे आपके फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। तो सर, शुरुआत उसी बेसिक सवाल से करेंगे जो आज शायद हर किसी के मन में है, एक हेल्दी बॉडी के लिए लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखें, कितना बड़ा रोल है उसका और खान पान का ध्यान रखना कितना जरूरी है।
1: सबसे पहले तो सबको नमस्कार। इस शो में जब भी मैं आता हूँ ये पहला सवाल ही होता है। हेल्थ को आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब ही है जो रोग है उसको दूर करना, और जो हेल्दी है ऑलरेडी या हेल्दी के आसपास है
0: जी,
1: उनको हेल्दी रखना, टू मेंटेन द हेल्दीनेस जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिया है कम से कम 3000 साल पहले। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आहार और विहार। आहार का मतलब है आपका फूड हैबिट्स या वैरायटी ऑफ फूड विच यू टेक, एंड विहार का मतलब आपका रहन सहन, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, आप सवेरे कितने बजे उठते हो, आपका दिनचर्या क्या है, ये सब विहार में आता है। ये दोनों बेसिक इम्पॉर्टेंट पिलर्स है आपको हेल्दी रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप खाना ही आप देख लीजिए, साल में हमारे यहाँ 6 ऋतु होते हैं, ऋतु हर 2 महीने में एक बार आता है, हमारे यहाँ 6 ऋतु है, तो 12 महीने में ये 6 ऋतु मतलब 2 महीने में एक बार आता है। तो ये ऋतु चेंज होने के एक समय होता है, जैसे पहला ऋतु है, जैसे इससे पहले ग्रीष्म ऋतु था विच इज समर, अब जो है वर्षा ऋतु है विच इज रेनी सीजन। तो ग्रीष्म ऋतु का जो आखिरी 7 दिन, वर्षा ऋतु का पहला जो 7 दिन, ये 14 दिन हो गए। ये जनरली क्या करता है, बीमारियां पैदा करने के लिए वो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक ऋतु जो है ढल रहा है धीरे धीरे, दूसरा ऋतु आ रहा है। जैसे अभी वर्षा ऋतु है, इसमें सबसे ज्यादा गंदा क्या होगा आपका, पानी। तो पानी से रिलेटेड जितने भी सावधानी बरतना चाहिए वो सबको ध्यान रखना चाहिए। और जनरली रेनी सीजन में या वर्षा ऋतु में आपका डाइजेशन, डाइजेस्टिव पावर होता है ना, जिसको अग्नि बोला गया आयुर्वेद में, वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव पावर ही 50% हो गया, पहले 100 था, वर्षा ऋतु में वो 50 हो गया, मगर आपने खाना जो है वही 100% खा रहा है। मतलब आप ले लीजिए 4 रोटी आप खा रहे हैं, जो आपको ग्रीष्म ऋतु में, जैसे समर में तो वो हजम हो रहा है, जैसे आपका रेनी सीजन आएगा वो आधा हो जाएगा। आप 4-5 रोटी खाएंगे तो उसका बाकी 2 रोटी पचेगा कब।
0: तो सर, इसके लिए कोई फॉर्मूला आप बता सकते हैं जो आसानी से याद रखा जा सके कि किस मौसम में कितनी डाइट सही है और किस मौसम में कम कर देना चाहिए उसे?
1: इसके लिए आयुर्वेद में बहुत बढ़िया 2 चीज बताया, तो वेरी सिंपल है। एक होता है आदान काल, एक होता है आपको उसको क्या बोलते हैं, जो बल पैदा होता है एक काल में। जैसे आदान काल है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, इसमें क्या है, देखिए आप बाहर जाएंगे तो स्वेट निकलेगा जो कि गर्मी, तो आपके जितने भी जो सॉल्ट्स है बॉडी के वो बाहर निकल रहा है, आप जल्दी थक जाएंगे। तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, सॉल्ट इनटेक और पानी और बहुत सारी चीज आपको करना है। जैसे आप करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आपको भूख कम हो जाएगा, जितना आप पानी पियेंगे तो भूख कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें बैलेंस रखना पड़ेगा
0: जी, वाटर इनटेक।
1: हाँ, वाटर इनटेक का बैलेंस रखना
0: जी,
1: पड़ेगा
0: बिल्कुल, इस पर बात आगे भी करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार सभी को, मेरा क्या नाम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। अमित शाह जी नाम मेरा, ग्राम नंगोला पुलिस से बात कर रहा हूँ
0: जी।
2: सर, मेरा सवाल ये है कि जो खाना रखा हुआ होता है और जो ताजा होता है उसका सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है?
1: बहुत सही सवाल पूछा आपने अमित जी। देखिए, ये जो ऋतु है जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, इसमें खाना जितना फ्रेश खाना आप खा सकते हो वो खाना बेहतर होता है, क्योंकि इस ऋतु में मॉइस्चर बहुत होता है, उसमें फंगस लगने का, कुछ और इन्फेक्शन होने का चांसेस होते हैं, इसलिए खाना हमेशा इस ऋतु में खासकर फ्रेश लेना ही सही है।
0: एक और सवाल हमारे पास आया है सर, कर्नाटक से आया है ये सवाल। सागर जी ने पूछा है कि 26 साल इनकी उम्र है, सुबह उठने के बाद बहुत थकान महसूस करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या करूं?
1: 26 साल की उम्र में अगर थकान है तो बाकी पैरामीटर्स उनका देखना पड़ेगा, लाइक हो सकता है इनको विटामिन डी, कैल्शियम या विटामिन B12 की कमी होगी, उसकी जाँच करानी पड़ेगी।
0: और इसके साथ ही सर, जोड़ों की सूजन को खत्म करने के लिए आयुर्वेद में क्या तरीका है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश से अमित कुमार वर्मा जी पूछ रहे हैं।
1: वर्मा जी ने शायद उम्र नहीं बताया,
0: उम्र नहीं लिखी है।
1: मैं ये सोच के चल रहा हूँ ये मिडिल एज के होंगे, तो जनरली

0: मिडिल एज में जो आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं वो दो तरीके के होते हैं. वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस विच इज एज रिलेटेड, और दूसरा है वो थोड़ा अलग है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं. तो हम ये मान के चलेंगे इनको एज रिलेटेड आर्थराइटिस है. तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस के लिए महायोगराज गुग्गुल या योगराज गुग्गुल, दो गोली दो बार सवेरे शाम ले, ये प्रिलिमिनरी एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है. इससे जनरली ठीक होता है, अगर नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाए.
1: जी सर, एक सवाल और आया है इसी से रिलेटेड। 37 साल इनकी उम्र है। सरिता विहार से अनमोल जी लिख रहे हैं कि डेली 50 किलोमीटर साइकिल में चलाता हूं, क्या आयुर्वेद इसे सही मानेगा?
0: ये बल के ऊपर डिपेंड करता है. आयुर्वेद ने ये कहा है कि हर इंडिविजुअल अलग है.
1: अच्छा।
0: कोई 2 कदम चलने से थक जाता है, उसको 10 कदम नहीं चलना चाहिए. जितना वो चल सकता है उतना चले, आपके बल के हिसाब से सारा काम करे. तो उनको अगर 50 किलोमीटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं, वो चला सकते हैं.
1: अच्छा सर, तो अगर किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप साइकिल चलाते रहिए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत ही खूबसूरत गाने को सुनने का, उसके बाद लौटेंगे और फिर बात करेंगे सर से।

0: तो सर थकान की हम बात कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस भी उसी से आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि थकावट शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल आया है हमारे पास। बलजिंदर सिंह पूछ रहे हैं, उम्र इनकी 31 साल है, 5 साल से ज्यादा वक्त हो गया इन्हें वर्क फ्रॉम होम करते हुए, घर से बाहर कम निकल पाते हैं क्योंकि काम के बाद काफी हद तक थक जाते हैं, तो अकड़न भी महसूस करते हैं शरीर में। तो पूछना चाह रहे हैं कि लाइफस्टाइल में क्या ऐड करना चाहिए या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे इन्हें अच्छा महसूस हो।
1: हमारे जो लिम्ब्स है ना, अपर लिम्ब्स, जैसे हाथ हैं, जैसे पैर को लोअर लिम्ब्स बोलते हैं, इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स को अगर काम नहीं देंगे तो उसमें अकड़न या स्टिफनेस आ जाता है, विच इज वेरी कॉमन नेचुरल। और ये काफी साल से, बल्कि वो घर पे है क्योंकि काम उनका ऐसा है, तो हो सकता है विटामिन डी की कमी भी होगी। तो विटामिन डी की कमी होती है तो साथ साथ कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। और वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने बताया नहीं, हो सकता है विटामिन B12 की कमी होगी और भी बहुत सारी कमियां होंगे। तो एक बार इन चीज को टेस्ट कराना पड़ेगा और सवेरे उठ के कम से कम बाहर निकले, 1 घंटा घूमे, फिर आए, फिर अपना काम कर ले, इतना टाइम तो मिलता होगा इनको
0: जी। और सर एक और सवाल है, उम्र है 40 साल, मोहम्मद इम्तियाज साहब का ये सवाल है कि ना तो बीपी की प्रॉब्लम है इन्हें और ना ही शुगर की, लेकिन कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो क्या करें।
1: इनको बीपी शुगर नहीं है तो थकान नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। इनका वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस होगा या कोई और कारण होगा, उसके लिए रूटीन ब्लड टेस्ट इनको कराने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा क्या है।
0: जी सर, जैसा कि डिजिटल दौर है आज का, तो स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही रहा है, साथ ही नए नए कल्चर्स भी हम फॉलो करने लगे हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के देखा गया है कि अक्सर सप्लीमेंट्स या फिर कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की भी अगर हम बात करें तो लोग बिना किसी सलाह के लेने लगते हैं, ये किस हद तक सही है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए।
1: आप अगर अपने खाने में वो चीज नहीं यूज कर रहे जो यूज करना चाहिए, जो पालक से मैं शुरू करता हूँ, जैसे पालक है, बहुत लोग नहीं खाते आजकल, पहले हम लोग खाते थे, वैसे ही जो है ड्रम स्टिक्स है, ड्रम स्टिक्स भी लोग नहीं खाते हैं। और बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो खाना लोगों ने बंद कर दिया, तो इसलिए जो है ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ऊपर से आप रोज फोन देखते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आप कितने करेंगे, हर रोज एक आता है नई चीज। और उस सप्लीमेंट्स का क्या रिसर्च हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सी कंपनी बना रही है, ये किसी को नहीं पता है। वो बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए वो तैयार करते हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा
0: जी। सर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एसिडिटी और ब्लोटिंग की हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है आजकल, तो रसोई की तरफ अगर हम रुख करें तो वहां ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें आसानी से मिल सकती हैं वहां से और जिनसे हम अपनी तकलीफ दूर भी कर सकते हैं।
1: आजकल के दौर में एसिडिटी का वैसे बहुत सारे कारण है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो कारण है दो ही है, 1 इज स्ट्रेस, वेदर इट इज मेंटल और फिजिकल, और दूसरा जो है टाइमली नहीं खाना, आपका टाइम जो है मेंटेन नहीं हो पाता है, ये दोनों रीजन से एसिडिटी बढ़ाने के लिए। तो एसिडिटी कम करने के लिए आपका घर ही एक फार्मेसी है, उसमें सब कुछ है। सबसे बढ़िया जो है मैं मानता हूँ कि जैसे ये मौसम है, आप मट्ठा, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, जो छाछ होता है उसमें और थोड़ा पानी मिला के आप लेते रहिए, आप अजवाइन उसमें छोंक लगा के भी ले सकते हैं, ये सबसे बढ़िया है, इवन कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं
0: जी।
1: तो ये सबसे बढ़िया एक औषधि है, उसको औषधि की तरह लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा।
0: करमपुरा दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना।
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है
0: जी।
2: तो पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून जी।
2: जी जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था डॉक्टर सर की, जिसको जॉइंट प्रॉब्लम है उसको योगराज गोगल खाने चाहिए। अब मेरे को ये प्रॉब्लम 2004-05 से है, तो मैंने इसके ना वो ऑयल लगाया और तो मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। तो अभी मेरी ये प्रॉब्लम जो की तो बनी हुई है ना कि गुलाइटिस एप्लिशिया कोई बीमारी होती है, तो इन दोनों में मैं अपमंजल से पड़ गया हूँ कि मेरे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ग्लोटिस एपिलिप्सिया की बीमारी है, पता नहीं क्या है। तो इसके लिए मुझे मतलब क्या करना चाहिए, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा

0: ये है कि पिछले 6 महीने से मेरे लीवर के आसपास जो है ना गर्मी जलन गैस की हो रही है। तो अगर मैं एक फुल्का खाऊं तो मुझे लगता है कि मैंने 4 फुल्के खा लिए। तो पिछले हफ्ते से मैंने आयुर्वेदा का एक मतलब लिक्विड आता है जिसे हम सिरप कहते हैं, उसका सेवन कर रहा हूँ, तो उससे मुझे कुछ फर्क तो है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मेरे को ये लीवर अल्सर है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। तीसरा सवाल, मुझे स्किन एलर्जी है, श्वसन एलर्जी है, इसका कुछ घरेलू उपाय बताओ, अगर आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे?
1: राजेंद्र जी, सवाल का जवाब अब ले लीजिए।
2: इनके बेसिकली 3 सवाल है, एक आर्थराइटिस रिलेटेड है और दूसरा लिवर रिलेटेड है और तीसरा स्किन रिलेटेड है। हो सकता है ये सारे इंटर रिलेटेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दवाई लिया है वो आर्थराइटिस के लिए लिया, तो उसके वजह से क्या पता लिवर की समस्या शुरू ना हो गया हो, उनकी वजह से स्किन की समस्या भी, क्योंकि आजकल जो दवाएं आते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो इनका बढ़िया ये है कि आसपास जो है, जो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जैसे चरक आयुर्वेद संस्थान है, वहाँ ये जा सकते हैं। इनकी एक्चुअली थरो जो है चेकअप होना चाहिए और बाकी अल्ट्रासाउंड की जरूरत भी है, ये सब होने के बाद ही पता लगेगा कि क्या बीमारी है और इलाज कैसे करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सर, डाइट को लेकर आजकल हर कोई कॉन्शियस है, बहुत ध्यान से सोच समझकर ही कोशिश सभी की रहती है कि खाएं। तो सर, बीटरूट को लेकर एक सवाल आया है, चुकंदर को लेकर, उम्र बताई है 75 साल। मनीषा जी का ये सवाल है रांची से कि शुगर की अगर प्रॉब्लम है तो बीटरूट को किस तरह से देखना चाहिए, क्या उसका सेवन किया जाना चाहिए?
2: बीटरूट का सेवन मैडम कर सकती है, बीटरूट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है
1: जी,
2: बीटरूट उनके लिए अच्छा ही है।
1: अच्छा, शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं?
2: ले सकते हैं। एक्चुअली एक और टॉपिक हमें एक बार दोबारा रखना पड़ेगा, बहुत सारे मिथ्स है शुगर के बारे में, तो इस कम अंतराल में तो बोलना मुश्किल है, मगर एक प्रोग्राम हम रखेंगे आगे, केवल शुगर के लिए बात करेंगे
1: जी। और सर, पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड की भी हम बात करेंगे, गलत है ये सभी जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमें क्या सुझाता है कि इनसे बचते हुए हम नेचुरल इम्यूनिटी को कैसे हम अपनी बूस्ट कर सकते हैं? मतलब मार्केट में जो मिल रहा है वो सही है या गलत है, इसका फैसला कैसे हो?
2: देखिए, जो पैकेज्ड फूड्स है उसमें नेचुरली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, कुछ ऐसे चीज डालते हैं जिससे आपको पेट की समस्या शुरू होगी, कुछ भी समस्या हो सकता है। तो आयुर्वेद में उस जमाने में तो इसके बारे में नहीं बताया, मगर आयुर्वेद में जो बताया है वो ये है कि जो भी सीजन के अनुसार आपको खाना खाना चाहिए, जैसे मैंने वर्षा ऋतु के बारे में बताया, फ्रेश फूड आप ले वो सबसे बढ़िया है, और आपके आसपास जो अवेलेबल फूड है जो वेजिटेबल्स है वो खाए वो अच्छा है। और तीसरी बात, पानी का ध्यान रखें, पानी को बिल्कुल गर्म करके या ठंडा करके आप लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं
1: जी। प्रोटीन और विटामिन B12 ये बहुत एसेंशियल चीजें हैं और देखा जा रहा है कि लोगों में बहुत गिर रहा है इनका स्तर, तो इसके लिए बेस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज बता दीजिए, ये सवाल भी हमारे पास आया है, बलजिंदर सिंह जी ने पूछा है दिल्ली से।
2: देखिए, वेजिटेरियन है तो ज्यादा अल्टरनेटिव्स उनके पास नहीं हो गए, तो पनीर डेयरी प्रोडक्ट्स वो लोग ले सकते हैं। जिसके पास नॉन वेजिटेरियन का ऑप्शन है वो नॉन वेजिटेरियन अपना सकते हैं, जैसे बहुत सारे वेराइटीज है आजकल अवेलेबल है, आप खरीद के ले सकते हैं
1: जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं जी। हेलो
3: मैम, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून सर, अपना नाम बताएं।
3: मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी मुजाहिद जी, आप बताएं, पूछें अपना सवाल।
3: डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून जी।
3: डॉक्टर साहब, मैं जो गोलवेटर में स्टोर है 70 mm
2: किडनी में स्टोर।
3: हेलो जी, गोलवेटर में
1: गॉल ब्लैडर
3: 70 mm का है, तो क्या आयुर्वेदिक में इसका कुछ है ट्रीटमेंट? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि बेटे का वो है CGHS कार्ड बनावा मेरा, तो अगर इससे अगर सर्जरी कराए तो इसका क्या सिस्टम है?
2: इनके बेसिकली 2 सवाल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक बीमारी का। देखिए, गॉल ब्लैडर का सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके लिए कोई दवाई, देसी दवाई ट्राई ना करें, क्योंकि आपका जो उसका जो साइज है बहुत बड़ा है, 70 mm विच इज ए ह्यूज वन, तो वो ना ट्राई करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे दवाई होते हैं जो आपकी बाकी लिवर भी खराब कर देंगे। तो दूसरी बात यह है, CGHS कार्ड है तो आप किसी भी CGHS वेलनेस सेंटर में जाके अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाइए, वो अपने आप आपको सजेस्ट करेंगे सर्जरी के लिए
1: जी। सर, आयुर्वेद के नजरिए से हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना कितना फायदेमंद है और इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? मतलब क्या हम खा सकते हैं और क्या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए?
2: ये इतना बढ़िया टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर एक, शायद आपको पता है कि नहीं, वो एक जापानीज एक साइंटिस्ट ने काम किया है।
1: अच्छा,
2: उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो हर चीज के लिए रेस्ट चाहिए। हमारे जो गट है एक तरह का इंजन है, मशीन चलती है, तो मशीन को भी रेस्ट चाहिए। उसके साथ साथ जुड़े हुए आपके लिवर है, किडनी है, बहुत सारे अलग सिस्टम से उसको रेस्ट चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। आप शुरू करिए एक वक्त से, जैसे नाइट आपने नहीं खाया, संडे का रात को मत खाइए। अगर आपको अच्छा लगता है फिर नेक्स्ट दो चार हफ्ते के बाद आप दोपहर का भी खाना छोड़ सकते हैं, मगर पूरा दिन छोड़ना उतना अच्छा नहीं है क्योंकि एसिडिटी होगी, शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप एक एक वक्त छोड़ के आप ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है।
1: सर बातचीत का जो सिलसिला है उसे इसी तरह से जारी रखेंगे, फिलहाल एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं।

0: परेशानियों की भी। आयुर्वेदिक खान पान और जीवन शैली पर आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टी दिवाकर राव सर, जाने माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और CGHS में CMO यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। तो सर, बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी।
1: हेलो, मैं रक्त बोल रहा
0: हूं। जी, आपका नाम बताइए प्लीज।
1: जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात को ना मेरी मम्मी जी के जो पैर की नसें अचानक से खड़ी हो गई थी।
0: ओके,
1: ऐसा क्यों होगा?
0: पैरों की नसों में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, रात में अचानक से अकड़ गई हैं शायद, ऐसा कुछ कह रहे हैं।
2: मैडम की उम्र तो नहीं बताई होगी। वैसे इसमें जनरली जो है, ये जो थकावट होती है लोगों को, तो मसल्स के अंदर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है वो कम हो जाता है, तो अचानक जो है पिंडली पकड़ना बोलते हैं ये लोग, उसके लिए जो है कोई भी घर पे अगर मसाज वाला तेल है उसको लगाए और थोड़ा सा सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी लेते रहे, वो उससे छुटकारा मिलेगा उसे।
0: जी, इसके साथ ही सर एक और सवाल आया है गुजरात से, ज्योति पूछ रही है कि 72 किलो इनका वजन है, शुगर बंद कर दी है, फ्राइड फूड भी नहीं लेती है, डेली 20 सूर्य नमस्कार भी करती हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है?
2: 20 सूर्य नमस्कार करना ही बहुत बड़ी बात है।
0: जी बिल्कुल।
2: और वेट कम नहीं हो रहा है और शुगर चीजें जो बंद कर दी मैडम, हो सकता है इनको कुछ और टेस्ट कराने पड़ेंगे, एक बार थायराइड का टेस्ट करा ले उसके बाद फिर संपर्क करें।
0: अलका जी का भी एक सवाल है, दिल्ली से है और उम्र है 46 साल, रिपोर्ट्स बता रही हैं इनकी कि स्लाइटली एनेमिक है और एज अ वेजिटेरियन कौन से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए?
2: ड्राई फ्रूट्स जितने भी है, डेट्स वगैरह अच्छा है, इवन ड्रम स्टिक्स मैंने कहा वो अच्छा है, पालक भी अच्छा है, ये ले सकते हैं, इसी से बहुत हद तक सही हो जाए, ड्रम स्टिक्स जरूर ले।
0: बढ़ता वजन सर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है जिससे लोग आजकल परेशान हैं, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए सबको, तो क्रैश डाइट का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, मतलब कैलोरीज इनटेक बहुत तेजी से कम कर देते हैं, तो आयुर्वेद इसे सही मानेगा या गलत?
2: बिल्कुल नहीं मानेगा। पहली बात तो यह है कि सीधा सीधा मैं नकारता हूँ। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना, पर्टिकुलर बायोलॉजिकल क्लॉक हम बोलते हैं, उससे चलती है, क्रैश कोर्स से नहीं चलती है, क्योंकि आपको हर दिन कुछ अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, कुछ अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो डेली वर्क करने के लिए चाहिए, और कुछ स्टोरेज के लिए फैट भी चाहिए, ये तीनों जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि किसी एक को बंद कर दिया या बिल्कुल खाना ही बंद कर दिया, तो बॉडी का जो है ना नेगेटिव रिएक्शन शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने खाना ही बंद कर दिया तो सबसे पहले स्टमक में ही आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, एसिडिटी शुरू होगी, उसके साथ साथ आप भूख ना लगने का एक कारण भी आप ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो उससे और एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो ये विशेष साइकिल होगा, तो इसको जितना हो सके अवॉइड करें। जो रूटीन है वो हमारा रूटीन सही है। रूटीन क्या है? टाइमली खाना और नियमित रूप से और जितना जरूरी है आपको उतना ही खाना।
0: जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए सवाल।
3: कस्बा किठौर, जिला मेरठ से। जी
0: जी
3: सर, तो हमारे जो हैं घर से उनके गुर्दों में पथरी आई है, दोनों गुर्दों में 8-8 mm।
0: जी
3: सर, उसके बारे में ही पूछना था जी, आयुर्वेद में क्या है इसके बारे में कुछ?
2: नहीं देखिए, 0-5 mm एंड 5-10 mm, ये 10-15 mm तो वो सर्जिकल हो जाएगा। 0-5 एंड 5-10, 0 मतलब 1-5 आप मान लीजिए, तो इसमें ये लोग ट्राई कर सकते हैं दवाई, और मगर एक ही चीज है, वो कहाँ पर है वो डिपेंड करता है कि किडनी के किस जगह पर है किडनी में। अगर मान लीजिए वो नीचे है किडनी के, तो वो फ्लश आउट नहीं होगा, अगर ऊपर है वो तो गिरने का चांस है, चंद्र प्रभावटी ले सकते हैं।
0: जी सर, इसी के साथ मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि हम इससे पहले बात कर रहे थे क्रैश डाइट की, आपने बताया कि कैलोरीज इनटेक को एकदम से कम नहीं करना चाहिए, तो सर ये कैसे मालूम हो कि कितनी कैलोरीज किस वजन वाले के लिए सही है? अगर वजन कम करना है तो उसमें कितनी कटौती जायज है?
2: देखिए, जो एवरेज इंडिविजुअल है उसको 1500 से 2000 किलो कैलोरी तो मिनिमम चाहिए। जो आपकी रूटीन एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, तो उनको थोड़ा 500 और ज्यादा, मतलब 2500 तक जाता है, तो मान लीजिए किसी को 1500 और 2000 के बीच में है उनका इनटेक, अगर वो कम करना चाहता है तो वो 1200 तक या 1500 तक ला सकते हैं, वो 500 तक नहीं ला सकता। फॉर एग्जांपल, 2 रोटी सब्जी दोपहर में और 2 रोटी सब्जी शाम को, वो आपको 10 से 1000-1200 आपको अमाउंट होगा। अब ब्रेकफास्ट आप 200-300 और जोड़ लीजिए तो वो बन रहा है 1500, वो आपके रूटीन एक्टिविटी में ही वो निकल जाएगा।

0: अब उसको भी आप कम करेंगे आपको थकावट होगी
1: और उसको फिर लॉन्ग टर्म ले जाना भी मुश्किल
0: रहेगा, मुश्किल होगा
1: जी। सर इसी के साथ डिनर स्किप करने का भी बहुत कल्चर है आजकल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: डिनर एक्चुअली स्किप मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, डिनर आप अर्ली करिए, मतलब जनरली लोग 10 बजे 11 बजे खाने की आदत है दिल्ली में, आपने देखा होगा क्योंकि लोग पहुंचते ही जो 9:30 to 6 वाले हैं 8 बजे पहुंचते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर कुछ टीवी देखते हैं, फिर 10-11 बजे खाना खाते हैं, वो ना खाए। उससे अच्छा है जब भी आप घर पहुंचेंगे तो आप लाइटली लाइट खाना लीजिए, चाहे एक रोटी लीजिए, लाइट फूड इज ऑलवेज एडवाइजेबल।
1: और सर बिजी शेड्यूल की हम अभी बात कर रहे थे, एक कॉलर ने भी हमसे पूछा था कि उसमें क्या होता है जब शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है तो हम खाना बनाने के लिए और उसे खाने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो आयुर्वेद हमें क्या उपाय देता है, ऐसी कौन सी डाइट्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कम समय में एक अच्छी डाइट को तैयार भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं?
0: सवेरे आप महाराजा की तरह खाइए, आयुर्वेद यही कहता है, सवेरे जितना हो सके आप ज्यादा लीजिए, दोपहर में उससे भी कम और रात को बिल्कुल कम लीजिए। तो सवेरे आप अगर रोटी भी लेते हैं, दो लेते हैं, तो उसकी जगह 4 लीजिए। और घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, घी लगा सकते हैं सवेरे, क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं, दोपहर में आपका खाना बन नहीं पा रहा है, तो आप उससे आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिल्कुल ना खाए
1: जी।
0: नियमित रूप से 2-3 बार आप खाना ही पड़ेगा आपको
1: जी। तो रेडी टू ईट वाले ऑप्शंस पर ना जाएं,
0: हाँ
1: ताजे और
0: ताजे
1: सैलेड्स को यूज कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, हेलो।
2: नमस्कार डॉक्टर।
1: नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? मैं पालन से बात कर रहा हूँ
1: जी। अपना नाम बताइए।
2: कृष्णलाल
1: जी, अपना सवाल पूछिए सर।
2: मेरा सवाल यह है कि मुझे रात को 3-4-5 बार इंजेक्शन के लिए उठना पड़ता है
1: जी,
2: नींद खुल जाती है, मूड ड्राई हो जाता है।
1: सर उम्र उम्र कितनी होगी आपकी?
2: मेरी 70 जी।
1: अच्छा,
2: सुबह और रात को उठना पड़ता है जी। और एक ये सांस लेटने के बाद सांस मतलब जल्द खांसी बहुत आने लगती है, ये तो काम आएगी। और खाना मैं रात को शाम के टाइम एक गिलास सूप लेता हूँ, चुकंदर टमाटर गाजर का, और खिचड़ी खाता हूँ रात में और एक रोटी।
1: सर क्या शुगर की प्रॉब्लम है आपको?
2: शुगर की खाली पेट तो मेरा 107 होता है और खाने के बाद 180 हो जाता है
1: जी।
0: उनको शुगर की समस्या कह रहे वैसे है, और रात को उठते 3-4 बार ये कह रहे हैं। हो सकता है इनको प्रोस्टेट का भी समस्या हो, क्योंकि इस उम्र में प्रोस्टेट बढ़ता है, तो प्रोस्टेट क्या करता है, वो पेशाब को जो है ना पूरा एवैक्यूएट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा जरा रह जाता है, फिर वो इरिटेट करता है, फिर दोबारा उठ के फिर जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए या तो उसका वेट कराना पड़ेगा, वेट कितना है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से इलाज शुरू होगी
1: जी। एक और सवाल आया है हमारे पास, नीदरलैंड से आया है रविंद्र पाठक, आशा पाठक जी का। बता रहे हैं कि डायबिटीज और थायराइड की प्रॉब्लम है, एज है 61 और वेट है 49, तो क्या ये वेट ठीक है या नहीं? इसके लिए शायद इन्हें हाइट भी बतानी चाहिए थी, बट सर क्या सजेस्ट करेंगे?
0: जैसे वैसे लग रहा है कि अंडरवेट ही होंगे, अंडरवेट है तो ये थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि शुगर भी है और एक बताया क्या
1: थायराइड
0: भी है, तो वो हाइपो है कि हाइपर है वो पहले पता लगाना जरूरी है। हो सकता है हाइपर हो इनको, तब वेट कम होता है उसमें भी, अगर शुगर के कुछ कंडीशंस में भी वेट कम होता है तो इसकी जांच होनी चाहिए
1: जी। सर एक और सवाल है, रणबीर कुमार जी जमशेदपुर से पूछ रहे हैं कि इनके भाई के लिए ये पूछना चाह रहे हैं, 33 साल उम्र है और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया है कि यूरिनरी ब्लैडर काम नहीं कर रहा है, ब्लैडर में एक पाउच एक्स्ट्रा बन गया है, तो यूरिन डिस्चार्ज में भी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आयुर्वेद क्या कुछ राय देता है?
0: ये मुझे लगता है सर्जिकल की तरफ जा रहा है, तो इनको सर्जरी में ही दिखाना ठीक रहेगा।
1: ड्रमस्टिक्स ना मिले तो सहजन की पत्तियां क्या इफेक्टिव होंगी?
0: बहुत अच्छा सवाल किया है, बिल्कुल, ये साउथ में खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, पत्ते खा सकते हैं ड्रमस्टिक या सहजन।
1: तो सर सहजन की तरह और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं या कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में शामिल कर लेने भर से ही फायदा पा सकते हैं?
0: चौलाई बहुत लोग नहीं खाते हैं, चौलाई एक अच्छी चीज है, यहाँ मैंने कम देखा है, साउथ में खाते हैं, चौलाई एक अच्छी चीज है, पालक बढ़िया चीज है, जो भी सीजनल आपको मिल रहा है वो सब खा सकते हैं आप
1: जी। बिल्कुल सर आगे बढ़ें और उससे पहले एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे सर कोई पसंदीदा गाना हो आपका, जरूर हम सुनेंगे उसे।
0: हाँ बहुत सारे गाने हैं, मगर मुझे एक गाना बहुत पसंद है जो शैलेंद्र जी ने लिखा है, जिसको हम कविराज भी

0: बोलते हैं, ये शायद अनाडी मूवी का है, सब कुछ सीखा हमने ना
1: वाह,
0: सीखी होशियारी,
1: बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो चलिए
0: शंकर जयकिशन जी के वो म्यूजिक है।
1: जी,

0: अगला सवाल ले लेते हैं। आनंद सिंह जी पूछ रहे हैं, 30 साल इनकी उम्र है और 76 किलो इनका वजन है, पूरा दिन सुस्ती और कमजोरी महसूस करते हैं। श्रावस्ती यूपी से इन्होंने ये सवाल भेजा है।
1: 30 साल उम्र है,
0: 76 वजन है।
1: हाइट लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हाइट थोड़ा सा हायर साइड लग रहा है मुझे, 76 में भी लिखा नहीं है। तो इनको जनरली क्या है, रूटीन टेस्ट में ये पता लगेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उन्होंने ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं है, तो कहना मुश्किल है
0: जी। सर आहार की हम बात कर रहे थे, तो विरुद्ध आहार, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, इसकी परिभाषा आयुर्वेद में किस तरह से दी गई है, और जाने अनजाने में हम ऐसे कौन से फूड आइटम्स को एक साथ खा लेते हैं जो हमें नुकसान देते हैं?
1: एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा कि शायद पूरे जितने भी जो वर्ल्ड के मेडिकल सिस्टम्स है उसमें शायद आयुर्वेद में ही सबसे एक्सटेंसिवली मैं कह सकता हूँ विरुद्ध आहार के बारे में बताया था। उन्होंने उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्या बीमारियां हो सकती है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो भी बताया। फॉर एग्जाम्पल, मछली के साथ दूध जो लोग नहीं खाते हैं, अंडे के साथ भिंडी लोग खाते हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो जनरली नहीं खाते,
0: नहीं खाना चाहिए।

0: हाँ नहीं नहीं नहीं खाते भी है और खाना भी नहीं चाहिए, और गर्म और ठंडे चीज़ लाइक गुलाब जामुन और आइसक्रीम लोग खाते हैं आजकल। जो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना, एक्सट्रीम्स को आप कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ज़्यादातर स्किन डिसीजेस होंगे और कुछ अलग लिवर किडनी और भी बहुत सारी बीमारियां होने का संभावना है।
1: जी सर, किस तरह की बीमारियां या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर विरुद्ध आहार हमारी डाइट में है?
0: सबसे पहले तो डाइजेशन में ही असर पड़ेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होते नहीं है जनरली। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो डाइजेशन से ही 100 बीमारियां पैदा होते हैं। आपका एसिडिटी शुरू हो जाएगा, फिर ब्लोटिंग होगा, उसके बाद आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। वो अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका लिवर के कुछ पार्ट्स खराब हो जाएंगे, वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, तो ये सब विशेष साइकिल बनेगा।
1: जी, सतीश कुमार जी ने एक सवाल भेजा है। उम्र है 64 साल और वजन है 91 किलो। रोहिणी दिल्ली से भेजा है सवाल कि कमर में दर्द महसूस करते हैं, MRI करवा रखा है और डिस्क बल्ज बताया है, नस भी दबी हुई है, क्या सजेस्ट करेंगे सर?
0: ये इसमें जनरली क्या है, जब ओवर वेट होता है तो एक्चुअली एब्डोमेन बल्ज होता है। जैसे एब्डोमेन बाहर की तरफ पुल करेगा, आपका जो स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो नॉर्मल कर्वेचर है वो डिविएट हो जाएगा। जैसे ही डिविएट होगा, दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है, जैसे कान होता है हमारा, उसका जो टेक्सचर आपने देखा वो मुलायम होता है, वैसे एक कार्टिलेज होता है, उसको डिस्क बोलते हैं। वो उस एरिया से, क्योंकि कर्वेचर बदल गया, तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके वजह से सूजन होगा। फिर उसके बाद आपका नस में भी वो प्रॉब्लम शुरू होगी, तो उसके लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट वो करा सकते हैं। कुछ पंचकर्मा टेक्निक्स हैं, वो कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है इधर सरिता विहार में, उधर खेड़ा डाबर में एक चरक हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट का, वहां जाके करा सकते हैं।
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ, मुझे पूछना है कि वर्षा ऋतु चल रही है
1: जी
2: तो वर्षा ऋतु में क्या आहार विहार होना चाहिए, मतलब क्या ना खाना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं, धन्यवाद।
0: जी अच्छा अच्छा सवाल है। वर्षा ऋतु में सबसे पहला जो है फ्रेश फूड और जो गर्म खाना है वो खाना चाहिए, और दूसरी बात यह है स्टेल फूड, जो रखा गया खाना या रात को फ्रिज में जो रखते हैं हम लोग, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और बहुत देर से बाहर रखा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए।
1: अच्छा, फ्लैक्स सीड्स कौन सी ऋतु में खाने चाहिए? ये सपना जी का सवाल है सर।
0: फ्लैक्स सीड्स को हम लोग तीसी बोलते हैं, अतसी है उसका नाम, तीसी भी बोलते हैं, उसका लड्डू भी बनते हैं। विंटर्स में सबसे बढ़िया है, और इस समय अवॉइड करें और समर्स में थोड़ा अवॉइड करें।
1: जी, और सर इसी के साथ वेट मैनेजमेंट पर हम लौट कर आते हैं एक बार। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो सजेशंस मिलते हैं लोगों को वो कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने के मिलते हैं, जैसे दाल और सब्जियां तो लेनी है उसमें, लेकिन कार्ब्स छोड़ने हैं, रोटी चावल को छोड़ देना है पूरी तरह से। कई तरह की डाइट्स इस वक्त कल्चर में हैं, तो आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है?
0: इस बारे में आयुर्वेद ने कभी नहीं कहा, वो हमेशा संतुलित आहार ही कहा है,
1: जी
0: जिसमें आपका फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और प्रोटीन की मात्रा भी हो। प्रोटीन आपको बेसिकली जो वेजिटेरियन हो तो दाल में मिलते ही हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं बहुत सारे, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का भी इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया एक खाना है।
1: और सर अगला सवाल जुड़ा है वाटर इनटेक से। हमने बात की कि कितना जरूरी है वाटर इनटेक, लेकिन कितना, कब और किस तरह से उसको हमें लेना चाहिए?
0: ये बहुत बढ़िया सवाल है, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। एक मेरे यहाँ पड़ोसी है, वो सवेरे उठते हैं 2 लीटर पानी पहले पीते हैं, उसके बाद ही सारा काम करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कमजोरी है। मैंने जो बोला उसी में उसका आंसर है। 2 लीटर आप पानी पियेंगे, उसके साथ साथ आपके जो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो बाहर निकल गए। तो उसका मतलब यह है कि आप पानी पीजिए विथ रेगुलर इंटरवल्स। जैसे आपने 1 ग्लास 250 ml होता है उसमें, 200 से 250, आपने एक बार पिया, फिर 2 घंटे के बाद लीजिए, फिर उसके 2 घंटे के बाद लीजिए, और जब जरूरी है तब उसको थोड़ा बहुत ज्यादा लीजिए, जब जरूरी नहीं है उसको कम कर दीजिए। जैसे विंटर्स में कम जरूरत पड़ती है, समर्स में और ये बारिश में ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो 2 से 2.5 लीटर आप पी सकते हैं, मगर इकट्ठा नहीं, एक साथ नहीं पीजिए, उसको इंटरवल्स में लीजिए।
1: सर स्किन से रिलेटेड एक सवाल आया है, इनकी वाइफ है राज रानी जी, इनका नाम है, एज 68 साल बता रहे हैं।

0: रोहिणी से सवाल है कि नोज पर एक निशान हुआ था और हार्पिस कोई बीमारी इन्हें डायग्नोस हुई है, तो इसका कोई इलाज है?
1: हर्पिस एक वायरल डिसीज है जिसमें आपको नोज में उन्होंने बताया नहीं कहां से कहां तक, और जनरली एक पैटर्न होता है जो नीचे नस होता है वो फॉलो करता है, वो सीवियर पेन होता है उस समय, अब तो पेन नहीं रहा होगा उनको, ये कह सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं जो लगाने से उसमें अगर कोई डिस्कलरेशन हुआ है वो हट सकता है, मगर जो हर्पिस है वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आया होगा और निकल भी गया होगा।
0: ओके सर, बालों की देखभाल कैसे करें, आयुर्वेद इसके लिए क्या सुझाव देता है? शिव जी का सवाल है ये मेरठ से।
1: बालों के लिए सबसे पहला जो है, खाने में ही तेल बहुत सारे हैं जो नेचुरल तेल होते हैं, सर पे लगाने से, तेल लगाने से अगर बाल उगते तो सबके पास बाल होना चाहिए था। तो आप जितने भी डाइट है वो सप्लीमेंट्रीज आपके खाने में ही है, फॉर एग्जाम्पल आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे चीजें हैं जो आपको चाहिए वो आप खा सकते हैं, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स है वो लीजिए, घी लीजिए, दूध आप ले सकते हैं, अश्वगंधा एक चूर्ण है आयुर्वेद का वो ले सकते हैं, ये सब करने से बाल की जो हेल्दीनेस है वो बरकरार रहेगा, तेल लगाने से नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आयुर्वेद की बताई कुछ जड़ी बूटियां भी अब आपसे जानना चाहेंगे जिनके रोजमर्रा सेवन से हम कई मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं, या अगर वेट मैनेजमेंट की भी बात करें, डायबिटीज की बात करें, तो एक कुछ कॉमन ऐसी चीजें जरूर आपसे जानना चाहेंगे जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए।
1: इस ऋतु के लिए मैं बताऊंगा जिसको डाइजेशन के प्रॉब्लम है, एक मेडिसिन आती है हरड़ जी। हरड़ का चूर्ण आता है जिसको हरित के बोलते हैं, वो चुटकी भर आप एक बार लीजिए दिन में, आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इस ऋतु में, दो महीने के जो भी है अभी अगस्त में खत्म ही हो जाएगा, वो बढ़िया चीज है। बाकी अश्वगंधा एक रूट है बेसिकली, वो आप दूध से आप ले सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो त्रिफला चूर्ण 1 से 3 ग्राम ले सकते हैं। एक शंखपुष्पी है जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो शंखपुष्पी एज ए सिरप आती है वो ले सकते हैं, ब्राह्मी है वो भी ले सकते हैं, ये सारे रेगुलरली इजीली अवेलेबल मेडिसिन से हर जगह मिल जाएंगे।
0: जी बिल्कुल, चाय कॉफी की आदत से भी सर ज्यादातर लोग परेशान हैं, तो आयुर्वेद इसका क्या रिप्लेसमेंट बताता है हमें?
1: आयुर्वेद चाय और कॉफी के बारे में जिक्र तो मेरे हिसाब से नहीं किया होगा, बाकी जो डिकॉक्शंस के रूप में बहुत सारे दवाई या दवाई जैसे दिखने वाले चीजें बताए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी गर्मी का एक षडंग पानी करके, ये आपको आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, षडंग पानी एक पाउडर है, इसमें आप 1 चम्मच उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के उबाल के वो लीजिए, वो आपको रिफ्रेशिंग बिल्कुल लगेगा, ये हर जगह मिल जाएगा इस मौसम के लिए। बाकी विंटर्स के लिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, वो मेडिसिन के रूप में ही लेना चाहिए, उसको रूटीनली ना ले।
0: सरोज मल्होत्रा जी साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर सर मेरी एज 70 है, 70 साल है, शुगर फास्टिंग में रहती है 130, क्या ये ज्यादा है, कितनी होनी चाहिए और कितना परहेज करना चाहिए इन्हें इस स्थिति में?
1: इसके साथ साथ अगर वो पोस्टप्रांडियल पीपीबी अगर मैडम लिखती तो थोड़ा समझने में अच्छा रहता। 130 बहुत ज्यादा नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपने जो भी एक्सरसाइज कर रहा है या खाने में जो भी आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं वो लेते रहिए, और थोड़ा चलने की कोशिश करें अगर हो सके तो।
0: जी सर, खास तौर पर अगर शुगर की हम बात करें, डायबिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि चीनी का ऑप्शन क्या लें, कुछ लोग गुड़ को प्रेफर करने लगते हैं, धागे वाली मिश्री को प्रेफर करने लगते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? और सर शुगर का जो ये है पॉइंट्स हैं, जो शुगर का मेजरमेंट है वो कहाँ तक नॉर्मल है और किससे ऊपर घबराने की जरूरत है?
1: जनरली क्या है, शुगर में हम लोग दो चीज देखते हैं नॉर्मली, वो एक है खाने से पहले खाली पेट जिसको बोलते हैं, और खाना खाने के बाद पोस्ट प्रांडियल जिसको बोलते हैं, एक होता है फास्टिंग खाने से पहले और पोस्ट प्रांडियल। ये फास्टिंग जो है 100 के आसपास, 110 मैक्सिमम इसके आसपास होना चाहिए, और जो पोस्ट प्रांडियल है वो 146 के करीब होना चाहिए, मगर ये सही पैरामीटर नहीं है। इसमें HbA1c करके एक टेस्ट होता है, वो आपको वैल्यू बताएगा 3 महीने का एवरेज, साथ साथ उसको भी कराना ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक दिन का आपका जो शुगर वैल्यू है वो बताता है, बाकी जो HbA1c है वो आपको पूरे 3 महीने का क्या एवरेज है वो बताता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है HbA1c, आपको एवरेज देखना है कि वो कितना है। जनरली वो 5.5 के आसपास है तो ठीक है।

0: उससे ऊपर 6 से अगर ऊपर जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए।
1: तो फिर शुगरी आइटम पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है।
0: शुगरी आइटम पूरी तरह कभी बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा। कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हमारे बॉडी के लिए शुगर चाहिए, थोड़ा बहुत शुगर ले सकते हैं, बाकी चीजें ज्यादा ना ले। जो बहुत सारी चीजों में शुगर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड़ का भी, अब ऐसा नहीं कि गुड़ आपने ज्यादा खा लिया तो शुगर सही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जो उसको एक लिमिट तक ही लेना चाहिए, और शुगर बिल्कुल बंद करना भी बहुत आपको नुकसान पहुंचाएगा।
1: जी बिल्कुल, बस रिफाइंड फॉर्म में ना हो।
0: हाँ, रिफाइंड
1: उसका ध्यान रखें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है सभी लिसनर्स को भी आपकी इस जानकारी से फायदा होगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज की रेडियो डॉक्टर की कड़ी को हमें यहीं पर समेटना होगा और आपसे कहना होगा अलविदा। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सेहत के लिए लापरवाह मत बनिए, जरूरी जानकारी को अपने साथ रखिए और खुश होने के साथ साथ स्वस्थ भी रहिए।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 392 हो गई है। आपदा में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज हो गए हैं। 1000 से ज्यादा लापता लोगों में 390 भारतीय पर्यटक भी शामिल। भारत ने नेपाल से अपने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने कहा, नेपाल बाढ़ का बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। वित्त मंत्री सीतारमण शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। सरकार ने प्याज की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 अभियानों में 76 किलोग्राम मेथमफेटामाइन गोलियां जब्त की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अमरीका अपना रुख बदलता है और दबाव बनाना छोड़ देता है तो अमरीका के साथ कूटनीतिक संबंध फिर शुरू हो सकते हैं। और श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच 2रा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत ने 1-0 से श्रृंखला जीती। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: जी हाँ, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो यह दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार,
नियमित व्यायाम, सही खानपान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना

सकता है और ये किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: नमस्कार। हफ्ते के पांच दिन सुबह की भागदौड़, काम का प्रेशर, टेंशन, ट्रैफिक, किसी का ऑफिस या फिर किसी का स्कूल या फिर किसी की यूनिवर्सिटी, फिर अचानक कैलेंडर पर जाती है नजर तो देखता है ओह टुडे इज फ्राइडे और दिल कहता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। सो अल्फा जैन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रोग्राम है अल्फा जैन। तो भाई इससे पहले कि हम प्रोग्राम में कुछ बात करें आपके साथ, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं रक्षाबंधन की। हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन बहुत ही प्यारा सा ये त्योहार है, भाई और बहनों को ये जो त्योहार है समर्पित है। और अच्छी बात यह है कि जो भाई बहन का प्यार है वो हमेशा बना रहता है, बचपन की नोकझोंक से लेकर बुढ़ापे तक। जी हाँ, यही होता है प्यार भाई और बहन का। और जब भाई अपनी बहनों को छेड़ते हैं तो वाकई बड़ा ही मजा आता है।

जी हाँ, बड़े उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। और आज कह सकते हैं वही आज फ्राइडे भी है। और फ्राइडे सिर्फ वीक का आखिरी वर्किंग डे ही नहीं होता, बल्कि एक एहसास होता है थोड़ा मुस्कुराने का, दोस्तों से मिलने का, यानी ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा खुद को वक्त देने का, यानी थोड़ा खुद से मिलने का। आज दुनिया वाकई बहुत तेजी से भाग रही है। हम सब ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से हम कनेक्टेड भी रहते हैं? सैकड़ों कॉन्टेक्ट्स हैं आपके मोबाइल में भी और मेरे भी। इंस्टा पर भी हमारे हजारों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन कितना हम एक दूसरे को जानते हैं? जिनके नंबर ही हमने अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं, उनको कब से हमने फोन नहीं किया? भैया आज तो रक्षाबंधन है, तो भाई बहनों का मिलना लाजमी हो जाता है। और जो लोग काफ़ी दूर रहते हैं उनकी बात अलग नहीं अलग होती है, लेकिन जो लोग एक ही शहर में हैं, कोशिश रहती है कि वो आज के दिन एक दूसरे से मिल लें। लेकिन अगर मैं इसके अलावा बात करूँ, तो क्या हम अपने रिलेटिव से, अपने भाई बहनों से मिल पाते हैं? नहीं ना। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि जब भी वक्त मिले, आपको थोड़ा भी वक्त मिले, अगर वीकेंड है, आपके पास टाइम है, तो आप अपने दोस्तों के साथ साथ अपने रिलेटिव से भी ज़रूर मिलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनाब वो भी अपने ही होते हैं। और जब बात भाई और बहनों की आती है, तो यकीन मानिए एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बचपन की यादों के साथ जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बस समझ लीजिए कि जिंदगी बेहतरीन और बड़ी ही खूबसूरत हो जाती है।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
4: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल दिल से दिल तक, और हम आपके साथ बात कर रहे हैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, अगर हम बात करें अपनी जिंदगी की, तो भाई हमारी सबकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर होता है। सुबह आंख खुलते ही फोन, रात आंख बंद करने से पहले भी फोन, नोटिफिकेशन आते ही तुरंत हमारा जो हाथ होता है वो फोन की तरफ बढ़ जाता है। कभी सोचा है कि हम सभी फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये जो मोबाइल फोन है जो शायद इस वक्त भी आपके हाथ में ही होगा, ये हमें

संडे आज हम इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पर हमारा सिर्फ और सिर्फ यही काम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, कोई फिल्म नहीं देख पा रहे हैं, तो हम अपना ज़्यादातर वक्त जो होता है स्क्रीन पर गुजार देते हैं। तो मैं एक छोटा सा आज फ्राइडे चैलेंज लेते हैं, आज कम अज़ कम एक घंटा, जी हाँ सिर्फ एक घंटा बिना फोन के हम गुजारेंगे और किसी दोस्त से आमने सामने बात भी करेंगे। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है, बहुत ज़रूरी कोई फ़ोन आना है या आपको करना है, तो आपको इस्तेमाल फ़ोन का उस वक्त तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ रुक कर सोचने की ज़रूरत है। एक घंटा बिना फोन के किसी दोस्त के पास जा सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, और नहीं तो भाई अपने घर वाले हैं ना, उनके साथ बैठिए, अपने टेरेस पर जाइए, बताइए ज़रा कब से नहीं गए हैं आप, म्यूज़िक सुनिए, या बस कोई नहीं भी है तो एक कप अच्छी सी चाय बनाइए और खामोश बैठकर अपने बारे में सोचिए और चाय की सिप लीजिए। क्योंकि ज़िंदगी दोस्त सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती, ज़िंदगी हमारी स्क्रीन के बाहर भी होती है। लिहाजा आज फ्राइडे है, ज़रा सा रुक कर, ज़रा सा सोच कर अपने बारे में ज़रूर सोचिए और अपने आप से मिलने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम सब के लिए दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा खुद से मिलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम बाहर ऐसा जाने की सोचते हैं कि अपने आप से ना मिलकर न जाने कहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा थमिए, मेरे साथ रहिए।

बिल्कुल, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, तू तू ही है। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं इस वक्त यहाँ जेंजीज़ की। बिल्कुल, जेंजी जो बहुत कुछ सोचते हैं ज़िंदगी में, न जाने उनकी कितनी स्कीम्स होती हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं देखती हूँ अक्सर के प्रेशर होता है उनके ऊपर, करियर का, मार्क्स का भी उनके ऊपर प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, फ्यूचर का उनके ऊपर प्रेशर होता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई बार, जैसे कि मैं देखती हूँ अक्सर के जो जेंजी हैं वो बड़ा प्रेशर्स में रहते हैं। अगर खास बात ये भी नज़र आती है कि कई बार कुछ लोग कंपैरिजन भी करने लग जाते हैं, यानी कंपैरिजन का जो प्रेशर होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा दुख देने लग जाता है। कहते हैं ना अक्सर, अरे उसको तो जॉब मिल गई, वो तो हमसे आगे निकल गया, वो तो फलां जगह घूमने चला गया, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा याद रखने वाली बात ये है दोस्तों, खासतौर से जेंजी, कि हर इंसान की जो जर्नी है, जो उसका सफर है उसकी जिंदगी का, बिल्कुल अलग अलग होता है। हमारी जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। कभी कभी आपको पता है, धीरे चलना भी प्रोग्रेस लेकर आता है। जी हाँ, याद कीजिए बचपन की उस स्टोरी को, है ना, टॉर्टॉइज और रैबिट की स्टोरी। यहाँ मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन कभी कभी धीरे चलना भी हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हमारी कामयाबी है, वो भी लेकर आता है। बल्कि अपने आप से हमें कहना चाहिए कि मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, वहीं से मैं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी आप यकीन मानिए, अगर आप कोशिश करते हैं तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और फिर संडे, यानी हमारे पास होगा काफी वक्त अपने बारे में सोचने का, अपनी जो आदतें हैं उनके बारे में सोचने का, या फिर हम कितना स्माइल कर सकते हैं इसके बारे में भी सोचने का, क्योंकि दोस्त स्माइल बहुत जरूरी है। जब आप हंसते हैं तो भाई ये यकीन मानिए कि आपका चेहरा देखकर दूसरा भी जरूर मुस्कुरा सकता है। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, प्रेशर को कम कीजिए और जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद

0: हैदराबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: जी हाँ, दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और बात हो रही है आपके साथ इस वक्त अल्फा जैन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और फ्राइडे जब आता है दोस्तों तो बहुत सारी बातें हम सोचते हैं और ये भी हम सोचते हैं कि आखिर अब इस वीकेंड पर हमें करना क्या है। बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। वैसे अगर मैं आजकल की बात करूं तो ऐसे बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सैटरडे संडे भी टाइम नहीं होता, क्योंकि आजकल जो ऑफिस का एक अलग ही सिनेरियो बन चुका है, कई बार सैटरडे और संडे भी ऑफिस जाना पड़ता है ना। अब देखिए ना, हम भी तो अगर कोई भी दिन हो हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ ही जाते हैं। ये तो भाई हमें अच्छा लगता है क्योंकि दिन कोई भी हो लेकिन मुलाकात आपसे हो रही है तो हमें और क्या चाहिए, है ना। आपसे ढेर सारी बातें हो जाती हैं, अच्छा म्यूजिक सुन लेते हैं, और क्या जिंदगी में और क्या चाहिए, यही तो है बस। तो भाई अगर मैं ये बात करूं कि भाई जो रिश्ते हैं उनमें भी बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, लेकिन कई बार यूं भी है कि फ्राइडे जब आता है तो लोग अक्सर पार्टी करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर मेरी अगर आप पर्सनल राय लेना चाहेंगे, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगी कि फ्राइडे का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं है, यानी छुट्टी का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं है, पूरा हफ्ता हमने किया काम और क्यों ना अब थोड़ा सा हम अपने आप से बात करें, खुद से मिलने के बारे में सोचें, खुद से मुलाकात करें, कुछ नहीं तो आराम करें और वो काम करें जो हमें अच्छा लगता हो। अगर आपको टीवी देखना पसंद है, आपको फिल्में देखना पसंद है तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप अपनी पसंद के मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे आजकल देखा जाए तो ये बहुत कम हो गया है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपके हाथ में कोई किताब होगी तो उससे अच्छा वक्त कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उस किताब में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और जो पर्सनालिटी हमारी किताब पढ़ने से पहले होती है वो बाद में नहीं होती। लेकिन हाँ, किताब अच्छी होनी चाहिए, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो भाई आप किसी से बात कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, अपने भाई बहनों से मिल सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप इनमें से भी कुछ नहीं करना चाहते तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि हर वक्त प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है, आप इंसान हैं, कोई मशीन थोड़ी ना है। लिहाजा आप अपने हिसाब से ज़िंदगी को गुजारना सीखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी के साथ थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि जनाब भीड़ में अगर ज़्यादा रहे तो ख़ुद भी गुम हो जाओगे। लिहाजा थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए और ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखिए। फिलहाल मेरे साथ रहिए और गीत संगीत का ये जो खूबसूरत कार्यक्रम है इसको आप एंजॉय कर सकते हैं।

तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। अरे भाई, अपने आप को भी देख लीजिए, अपने आप को भी जान लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। आज फ्राइडे है, क्यों ना हम एक छोटा सा मैसेज सबके लिए कि भाई अपनी जिंदगी को हम सिर्फ एक डेडलाइन की तरह नहीं बनाएंगे। काम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, करियर भी जरूरी है, लेकिन आपकी खुशी भी बेहद जरूरी है। आपका सुकून बहुत जरूरी है और आप खुद भी बहुत बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज थोड़ा कम स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा ज्यादा बात कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए और साथ में थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा कम भागिए और थोड़ा ज्यादा जी लेने की कोशिश कर लीजिए जनाब, क्योंकि जिंदगी दोस्त बहुत प्यारी है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपने बारे में जरूर सोचिए, एक बार रुक कर, थोड़ा सा ठहर कर।

तो दोस्तों, फ्राइडे तो फिर आएगा, लेकिन आज का फ्राइडे वापस नहीं आएगा। इसीलिए इसे सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख मत बनने दीजिए, इसे एक खूबसूरत याद बनाइए। किसी दोस्त को कॉल कीजिए, घर वालों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए, और सबसे ज्यादा जरूरी वो ये कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। बिना प्रेशर के जिंदगी को गुजारना सीख लीजिए, फिर देखिए जिंदगी किस कदर मुस्कुराएगी। फिलहाल चलती हूँ, फिर मिलने के वादे के साथ अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, और हाँ, एक बार फिर आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।

5 बज चुके हैं और लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन की देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 538 हुई। आपदा में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस बाढ़ की त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिक या तो संपर्क से बाहर हैं या लापता बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की सीमा में फंसे 96 अन्य भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से सुरक्षित रूप से नेपाल पहुंच चुके हैं और उन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 अभियानों में 76 किलोग्राम मेथामफेटामीन गोलियां जब्त की हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अगर अमरीका अपना रुख बदलता है और दबाव बनाना छोड़ देता है तो अमरीका के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में मूसलाधार वर्षा

के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सिटलाइज, ये शो जहां हर शाम दिल्ली थोड़ी और रोशन हो जाती है। मेरा नाम है शैली भाषा अंजलि, वेलकम टू सिटलाइज।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट। सुबह से ही सिलसिला भाई बहन के इस बहुत ही प्यारे बहुत ही पवित्र रिश्ते की आप सभी को शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। उम्र भर की यादों से बना बंधा ये खूबसूरत रिश्ता, इसका त्योहार हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी।

Yes, indeed, you're tuned into Akashwani Rainbow. Akashwani पर ये शो है सैटेलाइट्स, जिसमें इस सांझ के पहर शहर की बातें होती हैं और माना कि शहर की गति तेज है, सड़कों का जो शोर है, ट्रैफिक की कतारें हैं, लेकिन इस तेज रफ्तार में क्या धैर्य छोड़ दिया पीछे आपने? लाल बत्ती पर 2 मिनट रुकना मुश्किल लगता है, अपनी बारी का इंतजार करना बहुत भारी लगता है, ऐसा है क्या? थोड़ा सा आकलन करके देखिएगा, क्योंकि शहर को थोड़ा और स्मार्ट बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी से पहले थोड़ी सी नई आदतों की जरूरत है। मानते हैं इस बात को सैटेलाइट्स में। मैं हूं शैली भाषांजलि।

आज का दिन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही खास दिन है। भाई बहन का पर्व तो है ही रक्षाबंधन, उनके विश्वास का, एक साथ खड़े होने का ये पर्व तो है ही, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत ही खास तिथि है। चार अलग अलग पर्व और परंपराएं एक साथ जुड़ रही हैं। रक्षाबंधन के साथ साथ नारली पूर्णिमा है आज, समुद्र और वरुण देव की आराधना से जुड़ी। विशेष रूप से जो तटीय क्षेत्र है ना, इस दिन समुद्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपरा है। और भी बताती हूँ इस खास दिन के बारे में, जुड़े रहिए हमारे साथ सैटेलाइट्स में। सांझ के इस पहर में दिल्ली थोड़ी सी और जगमगा उठती है आकाशवाणी के रंग में।

आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और सिटी लाइट्स में हमने आज की तिथि की विशेषता के बारे में कुछ बातें की। जी हाँ, रक्षाबंधन तो है ही, नारली पूर्णिमा भी है, लेकिन साथ साथ श्रावणी उपाकर्म है। कई लोग परिचित नहीं है इसके बारे में, लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा का एक अटूट हिस्सा है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करना आवश्यक समझते हैं। वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण अवसर है, जहां यज्ञोपवीत बदला जाता है, अध्ययन, संस्कार, आत्मचिंतन, इसका संकल्प लिया जाता है। और चौथा संस्कृत दिवस, हमारी उस प्राचीन भाषा को सम्मान देने का दिन, जिसमें भारतीय ज्ञान, दर्शन, साहित्य, चिंतन, इन सब की एक समृद्ध परंपरा सुरक्षित है। बिल्कुल, चार पर्व, चार अलग परंपराएं, लेकिन लगता है कि संदेश कहीं ना कहीं एक है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, रिश्तों के प्रति सम्मान, ज्ञान के प्रति श्रद्धा और अपनी जो संस्कृति है ना, उसके प्रति जुड़े रहने का एक अटूट संकल्प। त्योहारों की यही खूबसूरती है, सिर्फ उत्सव मनाना नहीं सिखाते बल्कि याद दिलाते हैं वेर हैव वी कम फ्रॉम एंड व्हाट शुड वी टेक अहेड। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सांझ के शो सिटी लाइट्स में आपके साथ हूँ।

5:29 हमारे स्टूडियो की घड़ी में वेलकम बैक टू सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट्स में शहर की बात होती है तो शहर के प्रति एक नजरिया ये भी कि शहर हमें बहुत कुछ देता है, चाहे वो रोजगार हो, अवसर हो, पहचान हो, सपनों के पीछे दौड़ना हो, और बदले में शायद एवज में थोड़ी सफाई, थोड़े अनुशासन, धैर्य, संवेदनशीलता। तो ये तो हो गई एक अच्छे नागरिक बनने की बात सैटेलाइट्स में। लेकिन एक अच्छे कार्यक्रम की बात बताती हूँ, उत्तराखंड लोक महोत्सव। रोहिणी के रामलीला मैदान में 25 अगस्त से शुरू हुआ है और 14 सितंबर तक चलेगा ये महोत्सव, जिसका नाम है उत्तराखंड लोक महोत्सव। यानी वहां की संस्कृति, लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य, परंपराओं, इन सब का उत्सव है। बहुत सारे कलाकार हैं, इतनी सारी धुनें हैं, पारंपरिक नृत्य है, वेशभूषा भी अलग है, और साथ में बहुत सारी परंपराएं एक साथ देखने को मिलेगी।

के इस बीतते पलों में रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से आपसे जुड़ी हूं मैं शैली भाषांजलि। 5:34:30 हो चुके हैं, पल तो बीतते चले जा रहे हैं, इसीलिए आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। तरह सोचिए,

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि भारत में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक, 8th ऑफ सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखों की रोशनी किसी और की जिंदगी में उजाला कर सकती है, इसी सोच को पुख्ता करने के लिए आइए इस नेत्रदान पखवाड़े पर हम सब जागरूक हो जाएं। एक सोच हो, एक संकल्प हो, एक बातचीत हो कि हमारे बाद भी हमारी आंखें किसी की दुनिया को रोशन करें।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सिटी लाइट्स में आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि। और जाने से पहले जरूर ये मेंशन करना चाहूंगी कि नेपाल से जो आई हैं तस्वीरें प्रकृति का एक प्रचंड स्वरूप और इंसानी बेबसी दोनों का एहसास कराती है। नेपाल के उन सभी परिवारों के लिए हमारी

संवेदनाएं, हमारी प्रार्थनाएं. वी आर इन ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु आर स्टेपिंग अप द एफर्ट्स फॉर देम. इस कठिन घड़ी में जो भी मदद कर रहे हैं, एंड आवर हैंड्स आर फोल्डेड इन प्रेयर्स.

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

छह बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से बचा लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कमी नहीं है, उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। राजस्व आसूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 अभियानों में 76 किलोग्राम मेथफेटामाइन गोलियां जब्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा का अनुमान। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

6:27 27 हिना मौज का आदाब, तो कबूल कर लीजिए हुजूर। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स के साथ हाजिर हूँ। नंबर तो आपको पता ही है जिस पर आपको मैसेज करने हैं, टॉपिक बताते हैं बाद में, लेकिन पहले नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। एक बार फिर बता देती हूँ 9868107070। ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप का जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। और एक

फिर से आप सबका स्वागत करने को दिल चाह रहा है इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम बात करेंगे खूबसूरत से रिश्ते पर जो है भाई बहन का, क्योंकि आज है राखी का त्यौहार। बहुत लोग सुबह सुबह इसको सेलिब्रेट भी कर चुके होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे, और ये इंजॉयमेंट आपका आपके बचपन के साथ कैसा रहा है इस पर आज हम बात करेंगे। बचपन की वो खूबसूरत यादें याद कीजिए आज हमारे प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। आकाशवाणी FM रेनबो पर हिना मौज है आपके साथ। मैसेज भेजिए बचपन से रिलेटेड वो सारी बातें, वो सारी मुलाकातें और वो सारे किस्से जो आपको याद आते हो आज के दिन। बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ, ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए।

6:13 और 31 सेकेंड हुए हैं। बात शुरू करते हैं वो खूबसूरत और हसीन नाते की, जो हर बहन भाई का होता है। ये खूबसूरत सा रिश्ता जो आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन के नाम से। ये ऐसा बंधन है जिसके लिए एक बहन और भाई दोनों ही एक दूसरे के लिए इतना कनेक्टेड फील करते हैं दूर होने के बावजूद भी। जब बहन

नहीं विदा होकर चली जाती हैं तो उनको आज के दिन खास तौर पे अपने भाइयों का इंतज़ार रहता है कि उनकी कलाई पर राखी बांधेंगी और उनको मिलने के लिए वो बेचैन रहती हैं, क्योंकि एक बार ससुराल जाने के बाद लड़की का अपने मायके की तरफ बार बार आना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उसे निभानी पड़ती हैं और वो जिम्मेदारियां भी घर वाले बताकर भेजते हैं कि आपको ये जिम्मेदारियां निभानी हैं और हमारी लाज रखनी है, और वो लाज रखते रखते बहुत सारी चीज़ें उसकी पीछे छूट जाती हैं। लेकिन आज का दिन ख़ास तौर पर जब बहन और भाई मिलते हैं और एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हैं और एक दूसरे के साथ ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और आज के दिन मिलना और एक दूसरे के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करना बहुत ही स्पेशल होता है हर बहन भाई के लिए। आप सबकी ज़िंदगी में भी वो दिन होगा जब आज एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, और वो वक्त था जब आप साथ रहते थे, अलग अलग तरीके की शरारतें करते थे आज के दिन, और कैसी कैसी खेलियां एक दूसरे के साथ होती थीं, कौन कौन सी शरारतें होती थीं, किस तरीके से बहनें अपने गिफ्ट मांगा करती थीं और किस तरीके से अपने भाइयों पर अपने आप को इम्पोज करके और ये जताया करती थीं कि भाई हमें तो यही चाहिए। इस तरीके की सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे रहीं और किस तरीके से ये बचपन में आपको सेलिब्रेट करते थे आप ये त्यौहार, ये ज़रूर मुझे बताइए। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं राखी का त्यौहार और उससे जुड़ी बचपन की यादों से रिलेटेड। मैसेज मसाला मिक्स में 9868107070 हमारा नंबर है और इस पर मैसेजेस हमारे आने भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है नरेंद्र सोनी जी ने देवीगढ़ पटियाला से, कहते हैं गुड इवनिंग, शुभ संध्या हिना जी। शुभ संध्या आपको भी। हमारे बचपन की यादें ऐसी हैं कि मुझे एक कहते हैं याद है कि मैंने अपनी बहन को मिठाई की जगह गुड़ खिला दिया था, वो भी आटे में लपेट कर, और उसे कहा था कि ये सफ़ेद वाली मिठाई है, तो वो समझ कर खा गई। और फिर क्या हुआ होगा उसके बाद भी तो आप कुछ शेयर करते। बहरहाल ये भी एक मजाक वाली बात है कि भाई ऐसे भी शरारतें बहन भाई आपस में जब करते हैं वो सब चीज़ें एक वक्त के बाद जब आप मेच्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं तो बहुत याद आती हैं। और ये अगला मैसेज है जमशेदपुर से, मेरे तीन भाई हैं और एक सिस्टर है जमशेदपुर में। हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरे घर से घर पे सभी आ जाएं, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएं और वहीं पर रक्षाबंधन मनाया जाए। आज भी वैसे ही हम मिलकर मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई बहनों का प्यार एक अलग ही टाइप का प्यार होता है और ये प्यार कुदरती हमें मिलता है ऊपर वाले की तरफ से। इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ। ये लिख रहे हैं नया पारा भिरई से बसंत कुमार ठाकुर। सरोज कुमार भी इनके साथ हैं। मेरे संग बहन नहीं है, मेरी सगी बहन नहीं है, मगर बचपन से लेकर आज तक हमारे गांव की लड़कियां भाई के रूप में मुझे मानती हैं और मेरी कलाई में राखी बांधी जाती है और मैं सगी बहन ही समझता हूँ उन्हें। बहुत अच्छी बात है। और ये रिश्ता देखिए कुदरती होता है, वो बात अलग है, लेकिन जब आप किसी को अपने आप भाई या बहन बनाते हैं तो फिर उसकी भी बात कुछ अलग ही होती है। अगला मैसेज हमारे पास है हिना मौज जी, आदाब। आदाब सभी बहन भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो बचपन में बड़ी बहन से लड़ना और फिर उसका प्यार आज तक याद आता है, ये हमें लिख रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज फरहीन, फरहाना फरीहा ताहिरा। ये सारे लोगों ने मिलकर हमें मैसेज भेजा है और कहते हैं कि हर एक त्यौहार बेशुमार खुशियां लेकर आता है, क्यों ना हम इन खुशियों को अपने दामन में समेट लें। बिल्कुल सही बात है, खुशी अगर मिले तो उसको समेटना ही चाहिए, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैसेज मसाला मिक्स में आपको प्यार भरा आदाब, रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो, मुबारक हो। और ये हैं कहाँ से, ये हैं कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और इन्होंने हमें
मैसेज लिखा था ये खूबसूरत सा। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कैलाश शर्मा गुरुग्राम से। बचपन में राखी के त्यौहार की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि बचपन में बहुत बड़ी बड़ी राखियां आती थीं। छोटी छोटी

राखियों की बजाय एक ही राखी पूरी कलाई को कवर कर देती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें सबसे जो पसंद आती थी वो थी घड़ी वाली राखी। मैं अपनी बहन से कहता था कि मेरे लिए तो बस घड़ी वाली राखी लाना, और उसको पहन के बहुत खुश होता था और सबको दिखाता था। वो आज भी याद है, हमें बड़ी खुशी होती थी, प्रसन्नता होती थी। कैलाश शर्मा जी ने बहुत खूबसूरत से मैसेज लिखा और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे बचपन में भी हमने देखा कि राखियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, बहुत खूबसूरत, भरी भरी फूलों जैसी होती थी, और उनको हम खूब इन्जॉय किया करते थे बांधकर। खैर, राखी का त्यौहार चाहे छोटी राखी के साथ आए या बड़ी राखी के साथ आए, वो तो इन्जॉय करने वाला दिन ही होता है, ख़ासतौर पे बहनों के लिए। और बहनों को तो बहुत सारी गिफ्ट्स भी तो मिलती हैं, और बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो अपने भाइयों के लिए भी गिफ्ट ले जाती हैं, सिर्फ लेती ही नहीं हैं, देती भी हैं।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मैसेज मसाला मिक्स सुन रहे हैं आप हिना मौज के साथ, और आज रक्षाबंधन पर हम बात कर रहे हैं बहन भाई के उस खूबसूरत रिश्ते की जो आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, और बचपन की वो खूबसूरत यादें जो भाई बहन एक दूसरे के साथ बिताकर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो यादें आज भी याद आती हैं। उन सब यादों को समेटने की, टटोलने की कोशिश है आज हमारे इस प्रोग्राम में। 9868107070 हमारा नंबर है, और जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा दीजिए। कृष्ण वंजनी, नीलम स्वाति और किशु शामिल हुए हैं रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, और कह रही हैं गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। रक्षाबंधन के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं, और आपका भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। कहते हैं कि छोटे थे जब हमारा ध्यान राखी बांधने पे बहुत ही अच्छा लगता था, और मतलब बचपन में ये कहना चाह रही हैं कि राखी बांधने इनको बहुत अच्छा लगता था, और मिठाई तो कम मिलती थी उस वक्त, ऐसा होता था कि गजक और मूंगफली की जो पट्टी आती है उसको खाकर और खिलाकर हम लोग जो है बहुत अच्छे से उसको इंजॉय कर लिया करते थे। सच बात है, बचपन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब नहीं रही जो उस वक्त हुआ करती थीं। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से शामिल हुई हैं, कहती हैं गुड इवनिंग, राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को राखी का त्यौहार बहुत अच्छा हम सबको लगता है, और सभी त्यौहार अच्छे लगते हैं, इसमें भाई बहन हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और रक्षाबंधन जो है वो खूबसूरत बहन भाइयों का त्यौहार है। इसमें देखिए, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ झगड़ा तो होता ही है, और बहन भाइयों में तो सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है जितना मैं जानती हूँ। बहुत सारी चीज़ों पर झगड़े हो जाते हैं बचपन में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मम्मी पापा से छुपकर एक दूसरे को दे भी दिया करते हैं कि कोई बात नहीं आप ले लो, मम्मी को बताएंगे नहीं, पापा को नहीं बताएंगे। और इस तरीके की चीज़ें भी हम करते हैं कि जब हम एक दूसरे का साथ बिल्कुल बेलॉस होकर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहां पर हमारी एकदम घमासान लड़ाई हो जाती है, और भाई बहन का रिश्ता ही कुछ अजीबोगरीब है जो ऊपर वाले ने बनाया है। एक दूसरे के लिए बिल्कुल इस तरह तैयार रहते हैं, एक दूसरे को इस तरह समझते हैं जैसे हम अपने आप को खुद समझते हैं, और ये रिश्ता ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत, इतना नायाब हमें अता किया है, उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अगला मैसेज देखते हैं किसका है। आकाशवाणी एफएम रेनबो नई दिल्ली में मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम, आज का टॉपिक, अच्छा इन्होंने पूरा जो है बहुत अच्छे से टॉपिक वगैरह सब लिख कर फिर आगे की बात लिखी है। कहते हैं मुझे राखी से संबंधित

एक घंटे की या एक घटना की याद आती है कि वो ये है कि मैं जब 12 वर्ष का था तो मैंने अपनी कक्षा में पढ़ने वाली कोई लड़की है जिसका नाम इन्होंने लिखा है, अपनी बहन बनाया था और मैं उससे हर वर्ष राखी बांधता था। ये घटना आज भी मुझे बहुत याद आती है। रक्षाबंधन पर्व की आपको हार्दिक बधाई। देखिए ये है नियमित, अच्छा नियमित श्रोता लिख रहे हैं, ये हर्षवर्धन जी हैं मध्य प्रदेश से। हर्षवर्धन जी आपने ये लिखा, मैं जितना मैसेज से समझ पाई हूँ शायद अब आप उनको राखी नहीं बांध पा रहे हैं, ये आपका संपर्क जो है उनसे टूट गया है। तो मैं दुआ करूंगी कि जो आपने अपने दिल से बहन बनाई थी वो आपको दोबारा से मिल जाए अगर ऐसा हुआ है तो, और अगर आप नियमित तौर पे उनको रक्षाबंधन पर राखी बांधते आए हैं तो ये आपका सिलसिला जो है ताउम्र यूं ही चलता रहे, क्योंकि ये खूबसूरत सा बंधन जब आप किसी से बांध लेते हैं तो उसको तोड़ना या छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और इस मुश्किल से कोई ना गुजरे यही दुआ रहती है हमारी। गंजुनवारा से शमसुल कमर राही कहते हैं, बात उन दिनों की है कि जब मैं 8वीं का छात्र हुआ करता था, उस वक्त मेरी एक मुंह बोली बहन शीतल हुआ करती थी। हम साथ साथ स्कूल जाते थे और सारे त्यौहार साथ मनाते थे, और चाहे वो राखी का पर्व हो या फिर ईद का, हम सब एक इकट्ठे मनाते थे। उसके पापा का ट्रांसफर होने के बाद हम दूर हो गए, और जब से राखी का त्यौहार आता है मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी, सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि आपको आपकी बहन दोबारा से कहीं मिल जाएं और कहीं ऐसा संपर्क आपका एक दूसरे से हो जाए कि आपकी ये जो खूबसूरत सा रिश्ता है उसकी डोर दोबारा कहीं बंध जाए। मेरी बहन मुझसे बहुत बड़ी हैं, हमारे बीच का शरारत वाला पल मुझे याद नहीं। उसकी शादी हो गई है, हर बार की तरह ससुराल से आकर उसने आज जो हमें राखी बांधी। और ये हैं शुभकामनाओं के साथ रंजीत कुमार मंडल, सिकड़ी अररिया बिहार से इन्होंने शमूलियत की है, शिरकत की है, और ये कह रहे हैं कि ये खूबसूरत सा त्यौहार जो है वो इस तरह से मनाते हैं। त्यौहार किसी भी तरह मनाया जाए, चाहे वो आपके घर आए या आप उनके घर जाएं, ये हसीन खूबसूरत नायाब त्यौहार जो है ये हमें मिला है और ये हमारे नसीब में आया है, यही हमारे लिए बड़ी बात है, और इसको हमें सेलिब्रेट करने के लिए जहाँ जाना पड़े जाना चाहिए। मैडम जी नमस्कार, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार कह रहे हैं कि प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज आपकी आवाज़ अच्छा। जजाकल्ला, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी आवाज़ के लिए, आपको आपको पसंद आई, हालांकि बहुत आज प्रॉब्लम हो रही है। नमस्कार, दिल्ली शहर मोरी गेट से ये शामिल हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आज रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी सुनने वालों को भी इन्होंने बधाई दी है। तो जी आपकी तरफ से हमारी जो बधाई है वो हमने पहुंचा दी है। हैप्पी रक्षाबंधन। मोहम्मद इम्तियाज़ एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से शामिल हुए हैं, सभी रेनबो परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो मैंने पूछा वो तो बताइए, बचपन की कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है रक्षाबंधन की, जो आज आप याद करते हैं और सेलिब्रेट करते टाइम आपको लगता है कि काश वो बचपन दोबारा से लौट आए और हम वैसी ही शरारतें दोबारा करने लगे बहन भाइयों के साथ, क्योंकि ये खूबसूरत सा फूलों की मानिंद रिश्ता हमेशा यूं ही फलता फूलता रहे, यही दुआ करते हैं आज के दिन।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
7: ठीक है।
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो HR खर्चा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स में हिना मौज के साथ हैं आप। 6:48:12 हुए हैं और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनमें भाई बहनों की प्यार की झलक साफ देखने को मिलती है। एक मैसेज हमारे पास ये खूबसूरत सा आया है, देखें किसका है। ये है शांति नगर सोनीपत से सिमरन मुखी, अनीता मुखी, सुदर्शन मुखी कहते हैं कि आदाब, सादर नमन, नमस्कार। मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे साथ बने रहिए यूं ही इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। कहते हैं हमारे बचपन की सबसे बड़ी याद है भाई बहनों का ब्लैक एंड वाइट ग्रुप फ़ोटो। बिल्कुल सही कहा आपने, वो वक्त, वो दौर वाकई बहुत हसीन था। आजकल तो हर फ़ोन में कैमरा है और सेल्फी खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी कितनी नायाब और कितनी इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी, ये तो उस वक्त के लोग ही बता सकते हैं। रक्षाबंधन की ढेर सारी

मुबारकबाद के साथ। गाज़ियाबाद से पूजा कॉलोनी से कपिल यादव जुड़े हैं और कह रहे हैं मेरी सगी बहन तो नहीं है पर मुस्कान खान एक जो इनकी बहन बनी हुई थी वो इनको राखी बांधती थी और कहते हैं कि हमेशा हमने एक साथ त्यौहार मनाए और राखी तो बहुत दिल से हम मनाते थे और हर साल बड़े प्यार से वो मुझे राखी बांधती थी। अब वो परिवार यहाँ से चला गया है, पता नहीं कहाँ, पर उनकी राखी आज भी मुझे याद आती है। जहाँ भी हूँ मेरी बहन मुस्कान खान कहने लगे तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दिल से तुम्हें याद करता है, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि शुभकामनाएँ दुआएँ यही सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में और वो आप अपनी बहन तक पहुँचाते रहिए। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि हैप्पी रक्षाबंधन और गुड इवनिंग के साथ इन्होंने ये खूबसूरत सा छोटा सा मैसेज हमें भेजा है बस। लेकिन मैं इस मैसेज के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो आपको हमने पूछा वो अगर आप और बताते तो हमें ज़्यादा खुशी होती और ज़्यादा अच्छा लगता। इसके अलावा बहुत सारे पैगामात हमें विश करने के लिए और जितने सुनने वाले हैं उन सबको विश करने के लिए हम तक पहुँचाए जा रहे हैं और आ रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं कि हम ये खूबसूरत सा त्यौहार जो आज हमने मनाया इसमें क्या स्पेशल और कर सकते थे या अगले साल और क्या कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी बातें और बहुत खूबसूरत सी यादें हमेशा बनानी चाहिए किसी भी त्यौहार को लेकर। हमेशा ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं और वो वक्त वक्त पर याद करना और उनको जीना बड़ा अच्छा सा लगता है। ये हमारे पास मैसेज आया है राधे राधे मैम, राधे राधे जी। मेरा भांजा भी आया है आदर्श प्रजापति, ईश्वर चंद्र प्रजापति दिल्ली बवाना से कह रहे हैं। तो लेकिन आपने हमें ये तो नहीं बताया कि राखी का त्यौहार आपने कैसे मनाया और बचपन में आप कैसे मनाते थे, बचपन की कौन सी ऐसी याद है जो आपको याद आती है। कुछ लोग तो बस इस तरह से मैसेज कर रहे हैं कि बस नाम और सलाम एक वर्क़े सादा पर, हाय किस वक्त में ख़त उसने लिखा होगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: छः बजकर 57 मिनट 42 सेकेंड हुए हैं, यानी आप सब लोगों को टाटा कहने का वक्त आ चला इस प्रोग्राम में। लेकिन 8 से 9 में रहूँगी आपके साथ म्यूज़िक मस्ती में, मेरे साथ एंजॉय करना मत भूलिएगा। बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ।

0: 7:33 this Friday evening. And yes, we're going to take a quick break over here right now. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती?
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: Alrighty, there we go. That was nice, nice cute track over there. I think they call This Is Love. I think they call This Love by Elliot James Rhee. Alrighty, beautiful track indeed. Released in July 2024, and this was his debut single over here, which was quite a hit indeed. Okay, we're gonna take a quick break over here right now. Don't go anywhere, we'll be right back.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष

भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

8 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से बचा लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितम्बर तक भेजे जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

तो जी 8:55 हिना मौज फिर हाजिर है वादे के मुताबिक म्यूजिक मस्ती के साथ। ये है म्यूजिक की मस्ती जो आप एंजॉय करेंगे आकाशवाणी FM रेनबो पर हिना मौज के साथ। तो एक बार फिर से स्वागत है इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जो कि आपको नाचने पर मजबूर कर देगा, ये वादा रहा।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

म्यूजिक मस्ती में हिना मौज के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। 8:15 हुए हैं दोस्तों। जब कहते हैं कि जब म्यूजिक की धुन जो होती है वो दिल को छूती है तो कदम अपने आप थिरकने लग जाते हैं, और कभी भी कोई भी धुन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी कोई बीट हमें झूमने पर मजबूर कर देती है। और ये कार्यक्रम जिसका नाम है मस्ती म्यूजिक की, तो जी इस मस्ती में आज हम झूमेंगे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। इस प्रोग्राम में इन ट्रैक्स के साथ एंजॉय करेंगे, तो एक और प्यारा सा ट्रैक आपके लिए।

इन डांस नंबर्स को सुनते हुए एंजॉय करते हुए ये नहीं लग रहा आपको कि डांस सिर्फ शरीर की हरकत नहीं है बल्कि अपने जज्बातों को व्यक्त करने का खूबसूरत अंदाज है? खुशी हो, प्यार हो, उत्साह हो या फिर दोस्तों के साथ मस्ती, हर एहसास को डांस अपनी अलग एक भाषा दे देता है और साथ में जब म्यूजिक हमें थिरकाता है तो बस मजा ही कुछ अलग हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, डांस नंबर्स आपको भी डांस फ्लोर पर लाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बढ़ा दीजिए अपने रेडियो का वॉल्यूम और महसूस कीजिए संगीत की हर धुन को हमारे यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो के प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती के साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

तो जी उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे। वक्त हो चला है 8:27 और 38 सेकेंड। म्यूजिक मस्ती चल रहा है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ। सुन रहे हैं आप ये प्रोग्राम। दोस्तों कहते हैं जहाँ शब्द कम पड़ जाएं वहाँ संगीत और नृत्य अपनी कहानी कह देते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के ये खूबसूरत से प्रोग्राम को हम एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक और प्यारा सा ट्रैक आप तक पहुँचाते हैं। इससे पहले बात करते हैं उस उम्मीद की जो हमें बांधते हैं ये गाने, ये संगीत। ये उम्मीद के साथ साथ हमें मजा भी देते हैं और हमें एंजॉय करने का मौका भी फराहम करते हैं। तो एंजॉय करने के लिए एक और प्यारा सा ट्रैक हो जाए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

8:54। तो दोस्तों आज के इस डांस और म्यूजिक का सफर बस इतना ही। याद रखिए, जिंदगी में खुश रहने के लिए कभी कभी बस एक अच्छी धुन और कुछ पल खुलकर झूमना ही काफी होता है। तो जी मुस्कुराते रहिए, संगीत सुनते रहिए और अपने कदमों को यूं ही थिरकने दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी वादे के साथ। आप सबसे विदा लेती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो। लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। नेपाल तिब्बत सीमा पर विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक भेजे जा सकते हैं। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई और भारतीय ग्रैंड मास्टर R. प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये थे आकाशवाणी रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

जी हाँ, आज शरारत तो बहुत हुई है ना घर में, इतनी रौनक थी, इतनी मस्ती थी। और जब भाई बहन आकर बैठते हैं और पुराना जमाना, बीता दौर और अपनी बचपन की शरारतों को, अपने बीते वक्त को याद करते हैं, तो फिर मज़ा तो बहुत आता है ना। तो मुझे लगता है कि ये मज़े का माहौल बरकरार रहना चाहिए, और आप सबको मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई मैं दे देता हूँ। मैं कौन हूँ? अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, मैं याद दिला देता हूँ। मेरा नाम विकास है, मुझे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की रेनबो पर, और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो प्रोग्राम जिसमें हम करते हैं बातें उनकी, जो जिनके लिए बस ये कहा जा सकता है कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, फूल आ गया। अंग्रेजी वाला कहिए या हिंदी उर्दू वाला कहिए, फूल आ चुका है आपके बीच में, और आप सबके दिल के वो तार छेड़ने के लिए आया है यहाँ, जिनके बाद आपको मोहब्बत का बुखार ना हो जाए तो फिर कहिएगा, ठीक है? तो आप और हम मिलकर बैठकर यहाँ आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आपकी याद आती रही में याद करते हैं उसे जिसके लिए बस ये कहा जा सकता है कि हमने उसको इतना देखा, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आँखों से

सारी बात तो किसकी की है? सारी बात हमारी इस तमन्ना की ही है कि काश कोई लड़का हमें प्यार करता या काश कोई लड़की हमें प्यार करती। आय हाय, ऐसे मतलब जब कोई ऐसी लाइन छिड़ जाती है ना, आप पहुंच जाते हैं उसी जोन में, अपने पुराने वाले जोन में, अपने उस जोन में जहां एक ही बात अब हम कह सकते हैं कि दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। और याद आ ही जाती है उसकी जिसे हम बहुत बहुत बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं, और उसी को याद करने के लिए, उसी से जुड़ने के लिए, उसी के बारे में अपने अपने जज्बात एक दूसरे के साथ बांट लेने के लिए हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं आकाशवाणी के रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ विकास, और आपसे यही कहने आया हूं कि आपकी याद आती रहे। इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो पर। आपको बताया मैंने, हमारा पता आप जानते ही हैं, दिल्ली हमारे में हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो एकदम फिक्स, यानी 102.6, और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर हम आपको मिलते हैं। और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप हमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनते हैं, तो मैसेजेस तो आपके आ ही रहे हैं। जहाँ भी, जैसे भी, जिस भी माध्यम से, जिस भी फ्रिक्वेंसी पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आपको पुनः एक बार फिर से रक्षाबंधन के आज के पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और याद करते रहिए उसे, जिसके लिए ये गाना आपके दिल से कभी कभार निकल ही जाता होगा, है ना? कौन सा? के गा रहे हैं, सुन लीजिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए

0: थिरुवनंतपुरम तक जाती है।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
0: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

एक के बाद एक के की आवाज ऐसी है जो एकदम नश्तर की तरह दिल में उतर जाती है, भीतर तक चीरती हुई चली जाती है। लेकिन आज मैं जिसे अब तक इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूं, अभी तक जिनकी आवाज मैंने नहीं सुनी है, एक काम करते हैं, पहले उनकी आवाज सुनते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, मैं हूं आपके साथ विकास, आकाशवाणी के रेनबो पर। स्टे ट्यून। फिलहाल राजा को रानी से प्यार हो गया है।

ये प्यार भी बड़ी कमाल की चीज है, जब इंसान को हो जाती है तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि हमारे आसपास फूल खिलने लगते हैं, वायलिन बजने लगते हैं, जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी भी अक्सर छोटी लगने लगती है और इंसान बस उसी हसीन ख्वाब के साथ मशगूल रहता है, उसी हसीन जज्बात के साथ अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है ना। लेकिन मैं अपनी कहानी बताऊँ आपको, मैं किसी को बड़ा मिस कर रहा था और उसे जब मिस कर रहा था तो मिस करते करते मेरे हाथ में जेपी गंगवार साहब की किताब आ गई। जेपी गंगवार साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी भी है उसके बारे में, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ, लेकिन कब बताऊँगा मैं आपको बात बताऊँगा, और उससे पहले मैं आपको उदित नारायण साहब की आवाज़ में एक और बेहतरीन गाना सुना देता हूँ, ठीक है? फिर आएंगे, लौट कर आपको बताएंगे क्या लिखा है जेपी गंगवार साहब ने।

और एक और बात नहीं हो सकती, मैं बताऊं क्या? वो बात यह है कि अगर किसी शख्स का ताल्लुक आपके सुकून से हो जाए तो फिर आपको कहीं और सुकून आ जाए, ये भी हो नहीं सकता। इसीलिए तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मेरे हाथ में जब जेपी गंगवार साहब की किताब आई तो मुझे उसकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगा कि मैं जब भी आपसे मिल लूंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा, तो बैठकर आपको ये बात सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि मुझको तेरी गलियों की हर चीज हंसी लगती है, मुझको तेरी गलियों की हर चीज हंसी लगती है, बड़े खूब नजारे हैं, मखमल की जमी लगती है। अब आती नहीं है तू हमदम पहले की तरह खिड़की पर, अब आती नहीं है तू हमदम पहले की तरह खिड़की पर, सब कुछ बेहतर है लेकिन तेरी बस यही कमी लगती है। और जब ऐसी कमी किसी शख्स की हमें लगने लगती है तो ऐसे ही हालात को जज्बात देने के लिए और ऐसे जज्बात को जुबा देने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम आकाशवाणी का आपकी रात आती रही। आपको किसी की याद आ रही है तो याद कीजिए और मन मुस्कुराइए, क्योंकि

अक्सर ऐसा होता है कि मन ही मन मुस्कुराने के अलावा उस सुकून का कोई और एक्सप्रेशन भी नहीं होता, ठीक है? इसलिए अगर कोई कहे, आप जब मुस्कुराएं और कोई कहे तो यूं हंस कर टाल दीजिएगा, जैसे इस गाने में टाला गया है, ठीक है? ऐसे

0: अरे आप चिंता मत कीजिए, आप हंसते रहिए ऐसे ही, क्योंकि आपके नाम लेने वाला हूँ जिन्होंने मैसेजेस भेजे हैं। सलीम अख्तर साहब, रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमें सुन रहे हैं, हेलो कह रहे हैं, और इसके बाद हमें कौन कह रहा है नाम, निखिल हमको कह रहे हैं, और इसके अलावा हमें सुनील कुशवाहा, आयुष आर्यन कुशवाहा परिवार की तरफ से सभी को राम राम कही जा रही है, आपको भी राम राम जी। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हमें शांति नगर सोनीपत से सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमें रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कौन कौन सुन रहा है उनके नाम आपको बता दूं, किशन मंजनानी, नीलम, स्वाति और किशु हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए, आपकी याद आता है इस प्रोग्राम में, आपको प्यार भरा नमस्कार। आदा भरजो ये हमें कह रहे हैं गन्नौर से, आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और हम आपको उनको कह रहे हैं शुक्रिया, धन्यवाद। हमें सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं पंकज जी अमरावती महाराज से, और हमारे सारे गाने उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। रक्षाबंधन त्यौहार की बधाई भी हमको दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार के संतानी अकोला महाराज से हमको सुन रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि 90s के आपके गाने बहुत मज़ेदार हैं, बहुत आनंद आ रहा है उनको सुनकर। जी यही गाना इसीलिए हम बजा रहे हैं ताकि आपको आनंद आए। रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से, और हमें बहुत सारे दोस्त सुन रहे हैं, सौरभ अनिजा भी हमको सुन रहे हैं गाज़ियाबाद से। सौरभ बाबा शुक्रिया आपका, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही आप हमें सुनते रहिए, जितना भी वक्त है आपके साथ मिलकर ज़रूर बड़ा आनंददायक बिताएंगे, और उसके बाद अगले घंटे में आपके साथ सजाएंगे रंगे महफिल। ठीक है, कहीं जाने का नहीं, यही रहने का।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हमारे हृदय के भाव जुड़ें प्रभु से और हम सब करें आराधन। आपके लिए आकाशवाणी ला रहा है आराधना चैनल।
1: अम्बे चरण कमल है तेरे।
0: शीघ्र ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

जी हाँ, ये आकाशवाणी का रेनबो प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही, और इस प्रोग्राम में विकास अब आपसे ले रहा है विदा इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे, और जो बात लता जी और कुमार सानू मिलकर कह रहे हैं ना, आप मेरे लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्या करना है आज ये बता दीजिए ना। मिलेंगे हम आपसे रंगे महफिल में एक घंटे के अंतराल के बाद, ठीक है।

सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल

0: और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में

देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें लगभग 20% कम हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के व्यो आनंद योजना शुरू करने जा रही है। इसमें ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्गों को खाली समय में इंडोर खेल और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का माहौल मिलेगा। और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में भारत के वेल्लर सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से हो रहा है। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

जगदीप साहब की गजल नहीं पहेली है ये, और पहेली है जिसका जवाब हम सब जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सिर्फ खुशी हो और गम ना हो, क्योंकि सचमुच दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहां सिर्फ खुशियां हों और कहीं मातम ना होता हो। जिंदगी है, जिंदगी में हर तरह का रंग होता है, और ऐसे ही जिंदगी के तमाम रंगों के साथ, खुशियों से लेकर गम तक, तमाम जितनी बातें, जितने जज्बात, जितने एहसास हैं, उन सबको यहाँ इस प्रोग्राम में जगह दी जाती है जिसका नाम है रंग महफिल। साथ में गजलें, गीत और ऐसे अल्फाज, ऐसे नगमात जो हम सब की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं छेड़ते चलते हैं, हमारी सब की ज़िंदगी के साथ उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है, है ना। तो इस प्रोग्राम में विकास आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत अभिनंदन करता है, और आपको ये कहना चाहता है कि आपके साथ की वजह से ही FM रेनबो की ये रंग महफिल इतनी रंगीन है। अपने साथ को, अपनी मोहब्बत को, अपने एहसास को हमारे साथ बनाए रखिएगा। और फिलहाल एक बहुत खूबसूरत ख्याल पिछली गज़ल में था, और एक और बेहतरीन ख्याल इस गज़ल में भी है। सुमन राय कुछ कह रहे हैं।

है ना कमाल की बात, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने आईना रखना, क्योंकि ये सच है, हम दूसरों से नाराज होना बखूबी जानते हैं, जब चाहे मौका ढूंढ लेते हैं किसी से भी कोई भी नाराजगी पा लेने का, लेकिन जब हम वैसा ही कुछ करें तो हमें लगता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है ना। इसलिए किसी से नाराजगी हो, किसी से कोई गिला हो, शिकायत हो, कोई भी ऐसी बात जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हमारे साथ कर देते हैं और फिर हम नाराज़ हो जाते हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि क्या कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो छोटी मोटी बातों को क्यों दिल से बांध कर रखना है, आगे बढ़िए और ज़िंदगी को खुशी खुशी जीने के तमाम मौक़ों की तलाश कीजिए, बजाय इसके कि हम नाराज़ होते फिरें, है ना। क्योंकि हमें सब मिल जाते हैं, हर तरफ भीड़ मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते जिनसे हम बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं, जिनसे हम मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं, है ना। इसलिए कद्र करना सीखिए लोगों की।

इतनी बेहतरीन गजल के बाद एक बेहतरीन बात आपसे कहने के लिए लेकर आया हूँ मैं। ये किताब मेरे हाथ लगी है, जेपी गंगवार साहब इसके लेखक हैं और किताब का शीर्षक है, टाइटल है, मैं तुम में कैद परिंदा हूँ। और उसकी एक पेज नंबर 42 पर एक बहुत ही बढ़िया बात है कि वो कहते हैं कि उनकी नज़रों में छुपा है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, उनकी नज़रों में छुपा है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, कौन कहता है कि वो रहते हैं मुझसे खफा, दिल ही दिल में सोचते हैं मुझसे मिलने के लिए, चोरी चोरी देखते हैं वो मुझे लाखों दफ़ा, याद करते हैं वो शायद तो आती हैं मुझे हिचकियाँ, दूर से ही क्यों ना हो पर मिलती है मुझको वफ़ा। और ऐसी वफ़ा आपकी जो है वो मुझे भी मिला करती है। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं देखता हूँ कि आपके मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुँच रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए। ये बात अलग है कि हम इस प्रोग्राम में ज़्यादा मैसेजेस लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वक्त मिला तो मैं ज़रूर आपसे कोई ना कोई बातें जो है वो करूँगा और आपकी बातों को सब तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल एक और बेहतरीन सी गज़ल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कहानी है प्यार की, सुना रहे हैं पंकज उदास। विकास के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल आकाशवाणी के रेनबो पर।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

फिल्म हिमालय की गोद और मुकेश साहब की आवाज़, और इस आवाज़ इस गीत में जो एक सवाल है उसका जवाब कुछ यूं दिया जा सकता है कि तुम खुली हवा में उड़ते हो, मैं तुम में कैद परिंदा हूँ। तुम खुली हवा में उड़ते हो, मैं तुम में कैद परिंदा हूँ। तुम किसी और पे मरते हो और मैं तुम्हारी खातिर जिंदा हूँ। मेरा तुम्हारा मेल ही क्या, कुछ दिन का ही तो नाता था। तुम बड़ी हवेली की शहजादी, मैं छोटे घर का बाशिंदा हूँ। भूल गया था प्यार में पड़ के, है मेरी औकात ही क्या, ऐसी हिमाकत कर बैठा जो आज तलक शर्मिंदा हूँ। ऐसी हिमाकत कर बैठा जो आज तलक शर्मिंदा हूँ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

क्या शानदार गजल है नगीर साहब तो हैं, और उनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनके अल्फाज सब बहुत बेहतरीन, कमाल के। और इसी से मुझे याद आया कि चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते हैं कि किस राह गुजर के हम हैं, चलना ही होगा अब तो, चलने की बारी है, क्योंकि वक्त और ये घड़ी इशारा कर रही है कि अब आपसे विदा ले ली जाए। रात के 11:54 हो चुके हैं और अब कुछ एक जमा हमारे खाते में 6 मिनट हैं आपके साथ बिताने के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे अब आने वाली दूसरी एक बेहतरीन गज़ल जो मैंने हरिहरन साहब की आपके लिए एकदम तैयार करके रखी है उसके बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर करूँगा कि कोशिश की कि आपके लिए अच्छी प्लेलिस्ट बनाई जाए, कोशिश की कि आपके साथ अच्छी बातें की जाएँ, कोशिश की कि आपका कुछ गम अगर हो कहीं तो उसे भुलाने में मददगार बने, कोशिश ये भी की कि अगर हो सके तो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का हम एक छोटा सा हथियार, एक औजार बने। तो अगर इस कोशिश में हम कामयाब हुए हों तो ज़रूर अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपनी मोहब्बत दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले महीने, कब कहाँ कैसे वक्त ज़रूर बताएगा, मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, और हाँ हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, बाय बाय।

एफएम मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें

लगभग 20% कम है। देश की औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रगति के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2020 परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के बयो आनंद योजना शुरू करने जा रही है। इसमें ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्गों को खाली समय में इंडोर खेल और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का माहौल मिलेगा। और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकस से हो रहा है। ये थे रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त कुसुम। और लीजिए अब सुनते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आकाशवाणी रेनबो इंडिया पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूं।

एफएम मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इसमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें लगभग 20% कम हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रगति के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से हो रहा है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में हुए FIH महिला हॉकी विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को 50 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला एशिया कप का 10वां संस्करण आरंभ हो गया है। ग्रुप 1 के मैच में

थाईलैंड ने हांगकांग की महिला टीम को 6 रन से हरा दिया है। ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। और लीजिए, अब समय है बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम का, और वो है सुहानी रात।

0: વાણી આકાશવાણી
1: રોજ સુબહ સવેરે 7 થી 9 કી મુલાકાત, થોડી ગપશપ, થોડી કામ કી બાત, રેનબો કી સોગાત, હર રોજ જુડીએ હમારે સાથ. Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 aapke liye.
2: Koyal si teri boli.
3: Aye haye.
2: Tere chhi nazar mein hai jadoo.
3: Are besure gaane kyon suna rahi ho mujhe?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें लगभग 20% कम है। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ गई है। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतें लगभग 20% कम है। देश की औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु तेरी
1: हाय।
0: तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
4: नमस्कार, प्रस्तुत है FM मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय

ने कहा है कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 84 विषयों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 4000 से अधिक अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। भारत के वेलविन सेंथिल कुमार ने पीएएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्थानीय खिलाड़ी हंगरी के बालाज फारकश को सीधे गेम में 3-0 से हराकर ये ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला एशिया कप का 10वां संस्करण आरंभ हो गया है। ग्रुप ए के आरंभिक मैच में थाईलैंड ने हांगकांग की महिला टीम को 6 रन से हरा दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के विरुद्ध करेगी। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल से अब आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम आराधना में, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत।